ये आकाशवाणी है FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 अगस्त वर्ष 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। आज शाम 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी। महिलाओं के लिए प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम महिला जगत 5:30 पर। शाम को 6:05 पर फिल्म संगीत का आप आनंद उठा सकेंगे और 6:20 पर होगा लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। शाम 7 बजे समय रहेगा कार्यक्रम खेती बाड़ी का और 7:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। रात्रि 8 बजे होगी संसद समीक्षा और 8:15 पर सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल से के तहत। पर सुनिएगा विविधा कार्यक्रम में एक झलकी ये तेरा घर ये मेरा घर। रात्रि 9 बजे दर्द भरे गीत आप सुनेंगे और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे। बात करें आज सुबह के कार्यक्रमों की तो आज सुबह 9:10 पर सुनिएगा रामचरित मानस गान। 9:20 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना होगा और 9:40 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीत। सुबह 10 बजे का समय रहेगा गाने पुराने जमाने के और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए तराने नए। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज चार महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। इनमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और खान खनिज संशोधन विधेयक शामिल। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आह्वान किया। राज्य में बारिश का दौर जारी। तीन दिनों तक पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान। और श्रीगंगानगर के बसंत कुमार मेघवाल ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक, केरल नाम परिवर्तन विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकर बही से जुड़े साक्ष्य के लिए कानून बनाना और इसे मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप करना है। कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 भी सदन में विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। उदयपुर में ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये बैठक रखी। बैठक में सदस्य देशों के प्राधिकरणों के प्रमुखों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और तेजी से बदलते बाजारों में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष रवनीत कौर ने डिजिटल बाजारों और उभरती तकनीकों से जुड़ी चुनौतियों के बीच सदस्य देशों के निरंतर सहयोग और ज्ञान साझा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी नवीकरणीय ऊर्जा, बाजार, सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान में निवेश और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। कल बेंगलुरु में उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने निवेश, उद्योगों के विस्तार और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य की औद्योगिक नीतियों, बेहतर बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और कुशल मानव संसाधन से निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। बैठक में निवेशकों ने राजस्थान में नई विनिर्माण इकाइयां लगाने और मौजूदा उद्योगों के विस्तार में रुचि दिखाई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में राजस्थान फाउंडेशन के विभिन्न चैप्टर्स के अध्यक्षों और प्रवासी राजस्थानियों से संवाद किया। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से प्रदेश की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेश से जुड़े सभी मामलों में प्रवासियों को हर संभव सहयोग दे रही है।
1: हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $350 बिलियन और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन तक पहुँचाने का संकल्प लिया है। इसी सोच के साथ हमने कारोबारों को सुगम बनाने के लिए अनेक पहल की हैं। एमएसएमई के लिए कंसेंट टू ऑपरेट के लिए अधिकतम समय सीमा 120 दिन से घटा करके 30 दिन और बड़े उद्यमों के लिए 60 दिन कर दी है। अब प्रदूषणकारी वाइट कैटेगरी उद्योगों की सूची को 104 से बढ़ा करके 877 कर दिया है। निवेशकों की सुविधा के लिए राज्य की सिंगल विंडो प्रणाली राज्य निवेश द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विस्तार कर इसे और मजबूत बनाया जा रहा है।
0: प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज विभिन्न जिलों में तिरंगा रैलियां निकाली जाएंगी। रैलियों के जरिए लोगों को घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बारां में जिला कलेक्टर कार्यालय से तिरंगा बाइक रैली निकलेगी। इसमें जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल होंगे। सवाईमाधोपुर में पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और स्थानीय स्तर पर तिरंगा रैलियां निकाली जाएंगी। वहीं करौली में आज दोपहर में तिरंगा रैली प्रस्तावित है, इसमें विद्यार्थी और आमजन हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार आज जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग तथा शेखावटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने बताया कि आज से 12 अगस्त के दौरान दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में 14 और पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटों में जयपुर, नागौर, दौसा, बालोतरा, बाड़मेर और डूंगरपुर सहित कई स्थानों पर मध्यम तो कहीं तेज बारिश हुई। राजधानी जयपुर में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में आज सावन माह के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश के संयोग से आज के दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना और अभिषेक का दौर जारी है। इस अवसर पर प्रमुख शिवधामों में विशेष आयोजन दिन को और पावन बना रहे हैं। सवाईमाधोपुर में शिवाड़ के घुश्मेश्वर महादेव सहित प्राचीन शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। पाली में सोमनाथ मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। भरतपुर के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं। जैसलमेर के रामदेवरा धाम में लोक देवता बाबा रामदेव के प्रसिद्ध वार्षिक भादवा मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिमी राजस्थान के मिनी कुंभ कहे जाने वाले इस मेले में देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा की समाधि के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि मेला अवधि के दौरान पूरे मेला क्षेत्र के साथ संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जाएगी।
2: हर साल की तरह हम अपना जो जाता है, जहां भीड़भाड़ वाली जगह में ट्रैफिक सेफ्टी है, जो रात को पैदल यात्री आते हैं उन सबके लिए जाप्ता अपना जो है वो डिप्लॉय करेंगे। रात को जो यात्री जाते हैं उनके बैग्स पे रेडियम स्टिकर्स जो लगाने हैं वो हम लगाएंगे। हमारे सीसीटीवी जो वहाँ कैमराज हैं उनकी मदद से हम जो भीड़ भाड़ है उसको मॉनिटर करेंगे। सादे वस्त्रों में महिला पुलिस और जो पुलिस के अन्य जवान हैं उनको भी डिप्लॉय करेंगे। तो ऑल इन ऑल हमारा ये पूरी तैयारी रहेगी कि जो मेला है वो जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए सुरक्षित रहे और उनके जो दर्शन है वो सुगम और यादगार।
0: अमेरिका के यूजीन शहर में खेली जा रही अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतकर चैंपियनशिप में भारत को दूसरा पदक दिलाया। बसंत कुमार मेघवाल ने 2.21 मीटर की ऊंचाई पार कर रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही वे विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 19 वर्षीय बसंत कुमार मेघवाल श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी करते हुए 2.21 मीटर की ऊंचाई पार की। वर्तमान में बसंत नौसेना में कार्यरत हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बसंत कुमार मेघवाल को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस खेल प्रदर्शन से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज 4 महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। इनमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और खान खनिज संशोधन विधेयक शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आह्वान किया। राज्य में बारिश का दौर जारी, तीन दिनों तक पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान। और श्रीगंगानगर के बसंत कुमार मेघवाल ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। श्रोताओं, सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकई की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाएं। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थीं। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायुवेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगे।

सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्रोता भी सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। श्रोताओं 9:20 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति अनुराधा पौड़वाल के स्वर में।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: आइए अब सुनते हैं सुखविंदर सिंह की गाई ये भक्ति रचना।

लीजिए, अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए अनिल बावरा की गाई ये भक्ति रचना, जिसे संगीत दिया है सुरेंद्र कोहली ने।

तूने माँ के गर्भ में रो रो रुदन मचाया, इस कष्ट से छुड़ा दो भगवान से फरमाया। भगवान के कानों में रोने की आवाज आई, गर्भ से बाहर करके दुनिया तुझे दिखाई। उपकार करके माने तुझको अपने गले लगाया, जब साल हुआ पूरा तो जन्मदिन मनाया। 5-7 साल में खेला कूदा की लड़ाई, जब आई उम्र 13 की कर दी तेरी सगाई। 16 साल के अंदर तेरा ब्याह रचाया, पति पत्नी का प्यार आनंद से मनाया। जब हो गई गृहस्थी तो और रंग आया, अपने को भूल बैठा ना प्रभु का ख्याल आया। जब आ गया बुढ़ापा तो कोई ना बात माने, यूं कहने लगे बच्चे बूढ़ा लगा सताने। अपनी करनी पर क्यों सर पटकता है,

श्रोताओं, गैर फिल्मी गीत में अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण का गाया गाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम में सुनवाते हैं अभिजीत का गाया ये प्यारा सा गाना।

FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। और इस कार्यक्रम

कार्यक्रम में सबसे पहले आज सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म आरजू से। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

0: जाइए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और

0: क्यों नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
0: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: लीजिए अब सुनिए फिल्म दो बदन का ये गाना, जिसे गाया है आशा भोसले ने, संगीत दिया है रवि ने और गीत लिखा है शकील बदायनवी ने।

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा।

0: क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल और आप सुन रहे हैं गाने पुराने जमाने के। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं वर्मा मलिक ने।

सुनिए फिल्म दो झूठ का ये गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है एम जी हसमत ने।

0: बारिश तेज है, अरे अरे अरे भीग जाएंगे, अरे मैंने कहा बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे।
1: श्रोताओं आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं फिल्म मेरे सनम का ये गाना, जिसे गाया है आशा भोसले ने, संगीत दिया है ओपी नैयर ने और गीत लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने।

श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति, फिल्म पत्थर के सनम से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

जाता है। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के ठीक 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारा कार्यक्रम गाने नए तराने नए, और ये है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमा सोनी का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गाना हमने लिया था फिल्म बार बार देखो से। इसे गाया अमर आशी बादशाह और नेहा कक्कड़ ने। गीत लिखा अमरीक सिंह और कुमार ने। संगीत

लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए फिल्म सत्यमेव जयते का ये गाना, जिसे गाया है आतिफ असलम और तुलसी कुमार ने। गीत लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है रोचक कोहली ने।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं फिल्म बदलापुर का गाना, जिसे गाया है आतिफ असलम ने। इस गीत को लिखा है दिनेश विजय प्रिया सारिया ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

गाने नए तराने नए, इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म सनम रे का ये गाना, जिसे गाया है अरमान मलिक, पलक मुच्छाल और अमाल मलिक ने।

लीजिए श्रोताओं, आप सुनते हैं फिल्म बागी का ये गाना, जिसे गाया है अरमान मलिक, श्रद्धा कपूर और अमाल मलिक ने। गीत लिखा है संजीव चतुर्वेदी ने और संगीत दिया है अमाल मलिक ने।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए फिल्म बधाई हो का ये गाना जिसे गाया है गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ ने. संगीत दिया है तनिष्क बागची ने और गीत लिखा है मेलॉड ने.

0: मणके।
1: लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति, जिसे हमने लिया है फिल्म संजू से। इसे गाया है सोनू निगम, सोनू निगम, सुनिधि चौहान और रोहन। रोहन ने गीत लिखा है पुनीत शर्मा ने और संगीत दिया है रोहन ने।
2: प्राण प्रिय

0: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के ठीक 11 बज रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको ले चलते हैं आकाशवाणी मुंबई और सुनवाते हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
1: उनकी यादों के
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

0: रंग तरंग
1: रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। आप सभी को हमारा सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले शिव शंभु इस एल्बम का गीत सुरेश वाडकर की आवाज में, नवाब आरजू के बोल, नटराज दस्तीदार का संगीत है।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग।
1: इश्क की ये शम्मा अपने दिलों में।
0: मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाजें, शब्दकार सुदर्शन फाकिर और संगीत है भूपिंदर सिंह का। एल्बम ये प्यार का मौसम है।
2: इश्क का मतलब लोग ना समझे, ये

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तलत अजीज की आवाज है, शब्दकार तस्लीम फाजिल, संगीत मोहम्मद अशरफ का, एल्बम ये मिलन ख्वाब सा।

रूप कुमार राठौड़ और साधना सरगम की आवाज़ों में गुलजार का लिखा हुआ गाना, उस्ताद अमजद अली खां का संगीत एल्बम वादा।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अन्य

0: आ रही हैं महबूबा महबूबा महबूबा विविध भारती पर सुंदरा सोनिए सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: श्याम अनुरागी के बोल चार्ल्स श्रीनिवासन का संगीत विस्पी की आवाज एल्बम तेरी मर्जी

है ना, वैसा ही संसार का चेहरा, किसी को अपना बना

0: ये आवाजें थी साबरी ब्रदर्स की, शब्दकार निदा फाजली, संगीत आदेश श्रीवास्तव का एल्बम तरकीब।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अगला गाना आपको सुनवाते हैं तन्हा दिल, इस एल्बम का गाना, आवाज, गीत और संगीत शान का।

रंग तरंग कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सपना अवस्थी की आवाज में परदेसिया एल्बम का ये गाना। गीत और संगीत है पी के

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की आवाजें, मदन पाल के बोल, जय विजय का संगीत। एल्बम का नाम है मोहब्बत हो गई।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी एनके प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य

0: मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। अभी समाचार मिला है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलक महाराजन अरुमुंग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको परवरिश फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: चलती का नाम गाड़ी इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत एस डी बर्मन का।
1: बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे।

0: चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

अंतराल का समय पूरा हो चुका, अब आपके लिए लेकर आए हैं पड़ोसन फिल्म का गाना, किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: हम असत जात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: क्यों ठीक है

जो आवाज लगाए चोटे कर दूंगा। तज्जम तकजम तकनम तकदम तत्संगित तक्तरिगन तक्तजम तकजम तकनम तकरम तत्संगित।

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋರೆಗಲ್ಲ ಜೇ.

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पे रहना या घोड़ा बोला या चतुरा बोला गा
1: एक चतुर नार कर।

पड़ोसन फिल्म का ये गाना आपने सुना। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में जो गाने आप सुन रहे हैं, अगर उन पर आपने गौर किया होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज के कार्यक्रम में या तो पुरुष आवाजों में जो युगल गीत हैं वो, या तीन पुरुष आवाजों में जो गाने हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं। बैजू बावरा फिल्म का गाना उस्ताद अमीर खान और पंडित डीवी पलुस्कर की आवाजों में। लीजिए अब सुनिए शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

Aja dava tamana mero jo mage aja dava tamana sare ma

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तो तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये है मासूम फिल्म का गाना, भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडकर की आवाजों में, गुलजार के बोल, संगीत आरडी बर्मन का।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये समझौता फिल्म का गाना मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अन्य

0: आ रही हैं विविध भारती पर।
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे।

0: चटर्जी सेल्यूलॉइड के सितारे 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का, फिल्म का नाम शोले।

सागर फिल्म का गाना आइए सुनते हैं, किशोर कुमार और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। जावेद के बोल संगीत है आरडी पर मन का।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम उजाला।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आदमी और इंसान, ये फिल्म का नाम, महेंद्र कपूर, बलबीर जोगिंदर और साथियों की आवाजें, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत है रवि का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे को लेकर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक पेश किए गए। बाद में विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित पड़ी। राज्यसभा में भी नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेलो इंडिया की गरिमा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। भारोत्तोलक मीराबाई चानू से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी विजय भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से भी इस अवसर पर उपस्थित थे। भारत ने 23 जुलाई से इस महीने की 2 तारीख तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में 4th स्थान हासिल किया है।

0: भारतीय खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते। आज विश्वभर में शेर दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्यजीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि वन अधिकारियों, संरक्षणवादियों, स्थानीय समुदायों और इस प्रजाति की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे लोगों के समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने सभी से प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने और ये सुनिश्चित करने के संकल्प को दोहराने का आग्रह किया कि एशियाई शेर की दहाड़ आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि शेर हमारी समृद्ध जैव विविधता, प्राकृतिक संतुलन और वन्यजीव विरासत का महत्वपूर्ण आधार है। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए भावी पीढ़ियों को संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। सीकर और झालावाड़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। नीमका थाना में 90 मिलीमीटर, मनोहर थाना में 80 और शाहबाद में 50 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बरसात की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। 10 और 11 अगस्त को कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। बारिश का दौर 13 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान है। इसके बाद 14 अगस्त से पश्चिमी और 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बारिश में कमी आने की संभावना है। दूदू में आज RUIDP संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के पांचवें चरण के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर पंचायत समिति सभागार में ये संवाद कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जनप्रतिनिधियों, पूर्व पार्षदों, अधिकारियों, प्रबुद्ध जन और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव और फीडबैक लिए जाएंगे। दूदू शहर में करीब 2,78,00,000 रूपये की लागत से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, विरासत संरक्षण और पर्यटन विकास से जुड़े कार्य प्रस्तावित हैं। पाली जिले के 3 आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन मिला है। CMHO डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि राजूला कला, लुणावा और भारूंदा के स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये प्रमाणन मिला है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी मुंबई और सुनवाते हैं विविध भारती, देश के सुरीले धड़कन।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सजने संवरने की प्रक्रिया या सजने संवरने का जो जज्बा है उसको कितनी खूबसूरती के साथ इस गाने में बयान किया गया। गीत और संगीत ये रविंद्र जैन का है तो उनकी तारीफ तो हमें जरूर करनी होगी। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि पुरुष भी श्रृंगार करने से पीछे नहीं है, बालों में स्टाइलिश जेल, चेहरे पर हर तरह के मेकअप, मसाज, फेशियल, अच्छे कपड़े, और क्यों ना रहें, जब नायिका सजेगी तो नायक को भी सजा रहना चाहिए। असल में तो नायक ही नायिका को सजाता संवारता है, इसकी नायिका सुंदर दिखे और नायिका भी इसलिए सुंदर होना चाहती कि नायक उसकी खूब खूबसूरती का व्याख्यान करे। ये प्यार और समर्पण का एक रूप है। जी हाँ, सजना संवरना ये सभी का अधिकार है। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि आज आपकी जो इबारत है, मेरी धर्म पत्नी पर कल ही सार्थक हुई जब हम बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के बाद श्रीनगर कश्मीर में डल लेक में शिकारे में हम बैठे थे, जहां धर्म पत्नी ने कश्मीरी सलवार कुर्ता पहना था, बिंदिया, काजल, पायल, कश्मीरी चुनरी आदि साधनों का श्रृंगार किया हुआ था। श्रीनगर का शाम का मौसम तो सुहाना था ही, मैं शिकारे में ये गीत भी गा रहा था, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। वाह क्या बात है, कितना सुनहरा वो वातावरण रहा होगा। और आपने इसको पूरी एकदम डिटेल जानकारी आपने दी है, धन्यवाद आपका। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि आज हमारे बीच परिपूर्णता के लिए श्रृंगार रस में सजे गीतों की माला होगी। जिस प्रकार सावन के आने से प्रकृति धीरे धीरे अपने को संवारने लगती है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पूरे शबाब पर है, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे सभी बड़े खुश नजर आते हैं, नारी मन भी इन्हीं सावन के पूरे सोलह श्रृंगार में रची बसी होती है। और कुछ गीतों का इन्होंने जिक्र किया है। एक साथी हमारी लिख रही है कि सजना संवरना हमें हमेशा

से अच्छा लगता है, शायद इसलिए नहीं कि कोई हमें देखे, बल्कि इसलिए कि आईने में खुद को देखकर मन थोड़ा मुस्कुरा दे। सावन आए, हरी चूड़ियां खन के माथे पर बिंदिया सजे और बालों में गजरा महके, तो लगता है जैसे छोटी छोटी खुशियों ने आकर हमें फिर से थोड़ा सा संवार दिया हो। जी हाँ, ये बड़े मुद्दे की बात है कि सजना संवरना ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने मन के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम आईने में देखते हैं, अपने आप को खूबसूरत देखते हैं, तो मन वाकई में प्रफुल्लित हो जाता है और आत्मविश्वास भी मन के अंदर आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। मौसम सुहाना हो तो सजना भी अच्छा लगता है। जुदाई फिल्म का ये गाना है, और हाँ, ये जो सौदागर फिल्म का ये गाना है, पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया। आपके जवाब हम तक पहुंच गए, उसके लिए धन्यवाद। और अब जुदाई फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया, ये आप हमें बता सकते हैं।

जितेंद्र और रेखा पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि आजकल तो पुरुष वर्ग भी पीछे नहीं, 16 श्रृंगार में से कुछ श्रृंगार तो वो भी सजना सवरना करते ही हैं, पीछे नहीं है वो। और एक एक साथी ये लिख रहे हैं कि सावन में तो हर कुंवारी लड़कियां भी सजती है, पर शादी के बाद हमारे जमाने में बहू को इतना ज्यादा सजना संवरना पड़ता था, भारी साड़ी, उसके पल्लू, सिंदूर और उतनी ही भर भर के हाथ में चूड़ियां, हर समय सज धज के रहना, और उसके बाद जब रोटी बनाते समय या काम करते समय उन चूड़ियों से इतनी दिक्कत होती थी कि बाद में धीरे धीरे आदत हो जाती है। सजती संवरती है आजकल की लड़कियां भी, बहुएं भी, पर उनका स्टाइल हमारे जमाने से अब बहुत भिन्न हो गया है। साड़ियों की जगह सलवार सूट, रंगीन चुनरिया हो गई है, चूड़ियों की जगह एक एक कड़े हो गए हैं, झटपट वाली मेहंदी हो गई है, और एक दिन मिलकर सावन मिलन पूरा हो गया, पूरा सावन संपन्न हो गया। एक साथी लिख रही है कि मेरी बात करूं तो पहले मैं भी इतनी फैशन में नहीं रहता था, लेकिन वाइफ के कहने पर अब मैं सुधर गया हूं। चलिए, अच्छी बात है कि आप भी थोड़ा सज धज कर रहते हैं। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि नारी की खूबसूरती उसके श्रृंगार और व्यवहार दोनों पर निर्भर रहती है। अगर वह कितना भी श्रृंगार कर ले लेकिन उसका व्यवहार परिवार और समाज में उचित नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए दोनों का सामंजस्य बना रहना बहुत जरूरी है। ये जो आपने बात कही है ये लाख टके की बात कही है। जी हाँ, श्रृंगार अपनी जगह जरूरी है लेकिन व्यवहार की सुंदरता भी उतनी ही आवश्यक होती है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपकी सुंदरता भी देखी जाएगी और उसे पसंद किया जाएगा, लेकिन आपने बहुत श्रृंगार किया, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन व्यवहार ठीक नहीं है तो आपकी वो सुंदरता किसी काम की नहीं रह जाएगी। एक हमारे साथी ने यह बात लिखी कि ज्योतिष शास्त्र में हरा रंग बुद्धि और संतुलन के कारक हैं, बुध ग्रह से जुड़ा है। हरा श्रृंगार करने से मानसिक शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जी, हमारा जो अगला गीत है ये हरे रंग से संबंधित है और इसीलिए हमने आपकी ये बात अभी इस वक्त पढ़ी है। पढ़ना तो हम आपकी सारी बातें चाहते हैं। आप हमें बताइए कि सावन के महीने में हरे रंग का इतना महत्व क्यों है, क्या महत्व है इसका? हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग की चुनर और बाकी भी जो श्रृंगार के साधन हो उसमें ज्यादातर जो है हरे रंग का चुनाव किया जाता है, तो इस बारे में आप हमें बताइए। और जिन लड़कियों की अभी नई नई शादी हुई है और वो अपने ससुराल से मायके आई है तो वहां से ससुराल से भी कुछ उनके लिए तोहफे भेजे जाते हैं, उसमें भी हरी रंग की चूड़ियों का चुनाव खास तौर पर किया जाता है, तो इस बारे में भी आप हमें बताइए। चलिए, अब हरे कांच की चूड़ियां इस फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गीतकार और संगीतकार कौन है ये आप हमें बताइए। बिस्वजीत और नैना साहू पर फिल्माया गया ये गाना।

हरे कांच की चूड़ियां इस फिल्म का गाना सुना, शैलेंद्र का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आप श्रृंगार की बातें कर रही हैं, कभी हमारी पत्नी साथ थी तो हमें इस सावन में मेघों बिजलियों बरसात को देखते थकते नहीं थे, उसके साथ भीग भी जाते थे। आज ये हरियाला सावन हमें घर में बंद रहने को मजबूर कर रहा है क्योंकि वो चूड़ी बिंदी वाली नहीं रही। क्या कहें इस बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारे साथी की ये बात है कि जब पति शाम को थका हुआ घर पर आता है तो घर पर पत्नी इंतजार करती है, अगर पत्नी सजी संवरी मिलती है तो अच्छा लगता है, सारी थकावट और परेशानी समाप्त हो जाती है और फिर शुरू होती है श्रीमती जी की फरमाइश, जो कि उनका हक है। एक साथी लिख रहे हैं कि सावन के महीने में हरा रंग प्रकृति के सौंदर्य, सुख समृद्धि और भगवान शिव के प्रति अटूट शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सावन में हरे रंग का बहुत महत्व है। और एक साथी ये लिख रही है कि सावन के महीने में हरा रंग प्रकृति में प्रेम, सौभाग्य और भगवान शिव की उपासना से जुड़ा है, बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली छा जाती है और हरा रंग जीवन में नई शुरुआत, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं से भगवान शिव को प्राकृतिक वातावरण और बेलपत्र प्रिय है, हरा रंग प्रकृति का रूप है, इसलिए इसे पहनकर भक्त शिव के प्रति अपना प्रेम और भक्ति प्रकट करते हैं, इसलिए नारियां हरे रंग से श्रृंगार करके भोलेनाथ की पूजा करती है। धन्यवाद आपका। और हाँ, एक साथी ने यह बात लिखी कि क्षेत्रवार सजने संवरने की प्रथा अलग अलग है, यानी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां के कुछ अलग रिवाज होते हैं, सजी संवरी जो स्त्रियां हैं वो अलग अलग उनका जो रूप होता है वो दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि माथे की बिंदिया में सपनों की चमक, आंखों के काजल में अनकहे जज्बात है, चूड़ियों की खनक में बसी है यादें, पायल के रुंझुन में दिल की सौगात है, नारी जब स्नेह और मुस्कान से श्रृंगार करती है तो केवल उसका रूप नहीं संवरता, उसके साथ घर, आंगन, रिश्ते और कई बिखरे हुए एहसास भी खिल उठते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि सावन हरेक के लिए मनभावन होता है, धरती साथ श्रृंगार करके हरी भरी बन जाती है, उसी तरह महिलाएं हरी भरी साड़ी और हरे कांच की चूड़ियां पहनकर सज धज कर उनके मुख

निखार आता है। उसी तरह विविध भारती भी प्रसारण तरंगों पर निखार आ जाता है और गीत बज उठता है। चांद जैसे आकाशवाणी के मुखड़े पर विविध भारती जैसा सितारा नहीं भूलेगा, मेरी जान नहीं भूलेगा। जी आप मत भूलिए, याद रखिए विविध भारती का ये कार्यक्रम सुनते रहिए। विविध भारती के और अन्य कार्यक्रम भी है, उन्हें भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहाँ करते चलते हैं कि जो नई नई बेटियों की शादियां हुई है और वो अपने ससुराल से मायके आई हैं, तो ससुराल से कुछ भेंट उनके लिए भेजी जाती, उसे क्या कहा जाता है और उसमें खास तौर पर क्या होता है जो उन बेटियों के लिए, नई शादी जिनकी हुई है, जिनका पहला साल है, ये पहला सावन है, तो उनके लिए भेजा जाता है, तो इस बारे में आपके यहाँ क्या रिवाज है और क्या भेजा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इस बारे में आप हमें बताइए। चलिए गैम्बलर फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, नीरज के बोल है, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

और अगर हम सजधज के ना आए तो क्या करेंगे आप, शामिल नहीं करेंगे हमें? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ज्यादा सजना तो हमें पसंद नहीं है, पर चूड़ी बिंदी बहुत प्रिय है। बिंदी तो हमने लगाना आप छोड़ दी है क्योंकि अब हम बिंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ सजना संवरना ये हर स्त्री का अधिकार है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। धन्यवाद आपका। और हमने आपसे सवाल किया था कि जिन बेटियों की अभी शादी हुई है उनके लिए क्या भेजा जाता है ससुराल की तरफ से, तो हमारे एक साथी ने लिखी है कि हम लोगों के यहाँ उसे सावनी कहते हैं, जिसमें राखी, रुमाल, कपड़े, श्रृंगार सामग्री और मिठाइयाँ भेजी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि श्रावण में समूची धरती की वर्षा ऋतु के परिणाम से अपने प्रसव धर्मी गुण से हरी भरी चादर ही ओढ़ लिया करती है, फिर ऐसे में हरे रंग का प्रयोग कोई क्यों ना करे। और एक साथी ने लिखा है कि साल होने पर जो तोहफा भेजा जाता है उसे शगुन कहा जाता है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि हरा रंग सृजन का प्रतीक है, सावन में धरती और पर्जन्य का मिलने से नव चैतन्य, हरी फसल, पेड़ पौधे, फूलों फलों का सृजन हो जाता है, इसलिए व्रत वैकल्य में भी हरा रंग शुभ माना जाता है और हरे रंग का श्रृंगार किया जाता है। जी धन्यवाद आपका। चलिए एक सवाल तो हमने आपसे किया था और कि क्या भेजा जाता है, लेकिन हमने जहां तक हमारी जानकारी है उसके अंदर एक लहरिया भी भेजा जाता है। लहरिया किसे कहते हैं? लहरिया कौन कौन से प्रदेशों में इसका ज्यादा उपयोग होता है और लहरिये में कौन से जो रंग है वो प्रधानता लिए होते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो हमें बताइएगा। और अब सावन को आने दो, इस फिल्म का गाना, येसुदास की आवाज, राजकमल का संगीत, कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया आप बताइए हमें।

अरुण गोविल और जरीना वहाब पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे साथी की बात है कि जिस कपड़े पर तिरछी लाइंस बनी हो उसे लहरिया कहते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि राजस्थान में नवविवाहिता बहू के लिए लहरिया भेजा जाता है, वह मुख्यतः पचरंगी या रानी कलर में होता है और उसके साथ श्रृंगार का सामान, लहरिए का चूड़ा और घेवर मुख्य रूप से भेजे जाते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि पति पत्नी का जो आपस का प्यार होता है वही सच्चा श्रृंगार होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ इसे सावनी कहते हैं और इसमें न्यूली मैरिड जो लड़कियों के लिए नई साड़ी, चूड़ियां और पूरा सुहाग का सामान, खिलौने, मिठाइयां और छोटे भाई बहनों के लिए भी कपड़े लाते हैं और मेरी बेटी के लिए भी सावनी अभी आएगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि ससुराल से आने वाला उपहार जो हमारे यहाँ आता है उसे हरियाली कहते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि पहले सावन पर दुल्हन को, चाहे वो मायके में हो या ससुराल में, भेजे जाने वाले सामान को हमारे यहाँ संधारा कहते हैं। इसमें एक खास मिठाई, फिरनी और घेवर, तीन रंगों से बना झूले के लिए रस्सा, कपड़े, बर्तन और एक दो आभूषण भेजे जाते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि शादी के बाद पहले सावन या हरियाली तीज पर सिंजारा, नवविवाहिता स्त्री के मायके से जो उपहार भेजा जाता है उसे कहा जाता है, उसे सिंधारा हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। जी हाँ, लहरिया के बारे में हमने बात की, खासतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इसे पहना जाता है और विभिन्न रंगों में ये होता है और बहुत सारे रंगों की लाइनें, आड़ी तिरछी लाइनें होती है और इस तरह से वो लहरिया सावन के महीने में मुख्य रूप से पहना जाता है और बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। चलिए अब हम अगला गाना आपके लिए लेकर आए हैं, दो रास्ते फिल्म का गाना, लता जी की आवाज से, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

दो रास्ते फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी हमारी लिख रही है कि मौसम कोई भी हो, त्योहार कोई भी हो, इस सवाल सदियों से सभी के मन में रहता है कि स्त्रियां इतना क्यों सजती है। घर में कितना भी काम धाम हो, वे सजने के लिए वक्त निकाल ही लेती है। स्त्रियों के अधिकार के अलावा एक मुख्य तथ्य यह है कि सजने से स्त्रियों में आत्मविश्वास की एक अलग अनुभूति प्रकट होती है। सलीके से लगाया गया काजल, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी में स्त्रियों का सौंदर्य निखर कर सामने आता है। सादगी के सौंदर्य में नहाई हुई किसी स्त्री को देखिए, वे नेह में नत और विनीत लगती है। किसी भी मौसम में नेह की तरह बरसती हुई स्नेह और संवेदना के रस में सिंचित नारी का असल सौंदर्य यही है। जी हाँ, सादगी का भी अपना आकर्षण होता है। ये सवाल हम आपसे करने ही जा रहे थे। सजना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन सादगी का भी अपना आकर्षण होता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं ये हमें बताइएगा। चलिए, अगला गाना परिणीता फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज और अरुण कुमार मुखर्जी का इसमें संगीत है। गीत किसका है ये आप हमें बताइएगा। कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये भी बता सकते हैं।

भरत व्यास का लिखा हुआ ये गाना है और मीना कुमारी पर फिल्म आया गया है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज तो गानों की हरियाली ही हरियाली है जी, एक के बाद एक अपने लिस्ट तो सुपर हिट है, बहुत आभार विविध भारती का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हर एक स्त्रियों को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, बिंदिया काजल कजरा गजरा पायल मेहंदी चुनर हरी हरी चूड़ियां ये सब पहनकर अपने आप खुश होती है और सोचती है साजन भी जरूर कहेंगे कि तेरी बिंदिया रे और कजरा लगा के गजरा सजा के ये वो कहेंगी जी। धन्यवाद आपका। चलिए अब मधु फिल्म का गाना हम आपको, देखिए हमने सोचा था कि कौन सी फिल्म का गाना है ये आपसे पूछेंगे लेकिन हमने ही बता दिया, मधु फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, नक्श लायलपुरी के बोल है, संगीत किसका है आप बताइए।

एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि लता मंगेशकर द्वारा गाया गया धानी चुनर मोरी हाय रे मधु फिल्म का ये गाना एक कालजयी गीत है। नक्श लायलपुरी द्वारा रचित इस फिल्म में चुनरी के माध्यम से यौवन और प्रेम की चंचलता को दर्शाया गया है। रोशन का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज इस क्लासिक को और भी मनमोहक बना देती है। एक साथी लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में श्रावण महीने से त्यौहार शुरू हो जाते हैं। पहले के जमाने में स्त्रियां 9 गज की साड़ियां पहनती थी, बाद में वो 5 गज पर आ गई है। सज धज कर त्योहार में हर्षोल्लास के साथ वो शामिल होती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक फूल चार कांटे इस फिल्म का गाना है, मुकेश की आवाज है, शैलेंद्र की

सुनील दत्त और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना एक साथी की ये बात कि हमारे शहर में बरखा रानी बड़े प्यार से धरती का साथ सिंगार कर रही है और सुरीला सफर में हम नारी के आंतरिक और बाह्य साथ सिंगार की बातें कर रहे हैं, उस पर सुंदर से गीत सुन रहे हैं। ऐसी प्यारी अनुभूति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि सजने संवरने के लिए तो शहरों में आज पार्लरों की बाढ़ सी आ गई है, घर पर सस्ती महिलाओं का अब मन कहां भरता है, काम से फुर्सत मिलते ही बैग टांग कर पर्स लिए एक हाथ में मोबाइल और आज जा पहुंचती शहर के व्यस्ततम पार्लर में और नख से शिखर तक पूरा मेकअप कराकर ही लौटती है। वे ये जो पतिदेव हैं बड़े नाराज हमें लग रहे हैं, तो श्रृंगार जरूरी है लेकिन सीमाएं तय करना भी बहुत जरूरी है। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना अभिमान फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत किसका है आप बताइए।

अभिमान फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसमें बहुत खूबसूरत सा जो ये संगीत है ये एसडी बर्मन का संगीत है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख करके भेज दिए हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे बिल्कुल साथ साथ रहे, हर बात का आपने जवाब दिया और खूबसूरत आपके कमेंट्स थे और आपने ये भी लिखा कि गीत आपको पसंद आए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारी मुलाकात होगी। आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए मंजू द्विवेदी को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, कई बार जो बात हम अपनी जुबान से नहीं कह पाते वो हम संकेतों में या इशारों में व्यक्त करते हैं। कई बार हमारे संकेत स्पष्ट नहीं होते तो समझने वालों को उलझन हो जाती है या अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। मानव तो मानव, पशु पक्षी तक संकेतों में बातें करते हैं। मधुमक्खियां तो नृत्य के संकेत से अपना संदेश देती हैं। हम लोग भी तो इशारों में न जाने अपने दिल की कितनी बातें कह जाते हैं। तभी तो सुप्रसिद्ध मध्यकालीन कवि बिहारी लाल नायक नायिका के इशारों भरे प्रयासों के लिए कहते हैं, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनों ही सब बात। सच में इशारों की भाषा अनूठी होती है।

0: हूँ।
1: भाषा के अतिरिक्त इशारों से हम अपनी भावना को और स्पष्ट एवं प्रभावशाली बना देते हैं। कई बार सर को हिलाकर या हाथों के इशारों से हम कई बातें बिना बोले भी स्पष्ट कर देते हैं। कहते हैं आंखें हमारे मन का दर्पण होती हैं, और इसीलिए आंखों के इशारों का क्या कहना। आंखों के विभिन्न प्रकार के संकेतों से हम क्रोध, घृणा, प्रेम, हर प्रकार की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। कई बार तो दो दिलों का रिश्ता भी मासूम से आंखों के इशारों से ही तो शुरू होता है।

0: दुनिया संकेतों या इशारों से भरी हुई है। जिंदगी को सही ढंग से जीने के लिए हर प्रकार के इशारों को समझकर उसके अनुसार काम करना ही तो समझदारी है ना? कवि की कविता हो या जिंदगी में कुदरत का इशारा या ट्रैफिक सिग्नल का लाल हरी पीली बत्तियों का इशारा, इसलिए इशारों को सही ढंग से समझना भी तो जरूरी है।
1: बाजू।

कहते हैं समझदार को इशारा ही काफी होता है, यानी समझदार लोग थोड़ी सी बात से ही पूरी बात समझ लेते हैं। इशारों को समझकर जीवन को बेहतर बनाना भी एक कला है। इशारों से मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति को पूर्णता मिलती है। आज का त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका

0: एक स्टेटमेंट चाहते हैं, हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एकरूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
2: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
1: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
3: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सब का राइट है, सत्याग्रह हम सब की ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
1: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। नविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं।

0: और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने

0: आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। तीन अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का जो पहला गाना है तूफान और दिया। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, संगीत है वसंत देसाई का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये मीरा भजन आपने सुना, संगीत वसंत देसाई का, फिल्म का नाम तूफान और दिया। और अब श्रीमती 420 इस फिल्म का गाना आपको हम सुनवा रहे हैं। गीता दत्त की आवाज़, जानेसार अख्तर के बोल, संगीत है ओपी नैयर का।

0: जी है, मजा ये जी पे जी है, तू मुस्कुराए जा।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: सुंदरा सोनिए सुंदरा
0: 12 अगस्त

0: दिन में और रात में 11 बजे।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अब जो गीत आपके लिए लेकर आए हैं ये लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में शतरंज फिल्म का गाना है। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है सी रामचंद्र का।

रंगीन रातें, ये फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। केदार शर्मा के बोल, संगीत है रोशन का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: राजहट फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

लीजिए अब सुनिए सीआईडी फिल्म का गाना गीता दत्त की आवाज में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं, पॉकेट मार फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और साथियों के आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत है मदन मोहन का।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना अब आपको सुनवाते हैं। पटरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत, शंकर जयकिशन का।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमें कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सखी सहेली कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी
2: और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या हाल चाल है?
1: देखिए, हम किसी से जब बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है आजकल। और ये हालचाल पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है,
2: बहुत जरूरी बात है। और आजकल ऐसे हो रहा है मंजू जी,
1: हाँ?
2: कि ये बात जो है ना, ये युवा के ना पीछे भी छूटता जा रहा है।
1: अच्छा,
2: कि लोग मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए, इतने झुके रहते हैं कि वे हालचाल पूछना भी भूल रहे हैं।
1: बहुत गलत बात है ना।
2: तो हालचाल पूछते रहना चाहिए, फिर आपस में हो या फिर बुजुर्गों का हो।
1: हाँ बिल्कुल, सभी का हालचाल पूछ लेने से क्या होता है कि सामने वाले के मन में भी एक बात आ जाती कि हाँ, मेरी परवाह करने वाला कोई है। और जब ये बात बुजुर्गों के संदर्भ में आती है तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप उनके बारे में जानते रहिए, उनके हालचाल के बारे में जानते रहिए, और अगर उन्हें कोई समस्या है तो बड़े प्यार से उसे सुलझाइए, क्योंकि आखिर वे हमारे घर के

0: बुजुर्ग हैं, यानी हमारे घर की नींव हैं, और अगर हम उनकी चिंता नहीं करेंगे, उनकी परवाह नहीं करेंगे, उनकी कद्र नहीं करेंगे या उन्हें सम्मान नहीं देंगे, तो ये बहुत गलत बात होगी।
1: और ऐसा है ना, हर किसी को इस अवस्था से गुजरना है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम बुजुर्गों की परवाह करेंगे, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो देख के वो भी बुजुर्गों की परवाह करना सीखेंगे।
0: हाँ।
1: अगर हम उनके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं तो यही हमारे साथ भी हो सकता
0: हाँ।
1: है।
0: आज सीढ़ी के जिस पायदान पर बुजुर्ग खड़े हैं, कल हम भी उसी पायदान पर खड़े होंगे। तो इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए आज हमने विषय चुना है कि बढ़ती उम्र और बुजुर्गों का हठीलापन। तो ये हट वाली जो बात है, तो ऐसा नहीं कि सभी में होती है, लेकिन कई कारण होते हैं इसके पीछे,
1: जिसके पीछे वो हटेले हो जाते हैं।
0: शारीरिक अवस्था भी होती है और बाहर के भी बहुत सारे कारण होते हैं। आसपास का वातावरण हो सकता है, आसपास के लोग हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती, कोई भी कारण हो सकता है। तो उन कारणों का आज हम विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा
1: कथा सुधा, जिसका सारे श्रोतागण, सारी सखियां इंतजार कर रहे हैं, 33 भाग 1, इसे हम सुनेंगे। और व्यंजन,
0: ये तो एक बहुत ही एक मुख्य हमारा जो कहते हैं सेक्शन हो सकता है या होता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि खाना पीना सभी को पसंद होता है। तो आज कौन से व्यंजन हम खिलाएंगे?
1: पश्चिम बंगाल के व्यंजन में बसंती पुलाव और संदेश, ये इसे सौंदेश भी कहते हैं।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: में बनाने वाले हैं या इसकी रेसिपी जो बनाने वाले हैं, तो इसके बारे में आप बिल्कुल सजग रहिएगा कि किस, देखिए एक व्यंजन होता है लेकिन रेसिपी जो है बहुत अलग तरह से, अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से बनाई जाती है। उसका स्वाद भी जैसे जैसे हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अलग होता
1: बदलता
0: चला जाता
1: है। और उसकी जो उसकी मिट्टी की खुशबू है ना, वो उस व्यंजन में नजर आती है ना।
0: लेकिन विविध भारती एक ऐसा मंच है कि जहाँ पर हर क्षेत्र के श्रोता इसे सुनते हैं और अपने अपने क्षेत्र के बारे में वो बताते हैं कि वहाँ इसे किस तरह से बनाया जाता है, कब खाया जाता है, इसका रंग कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, इसकी सुगंध कैसी होती है।
1: तो हम श्रोताओं से कहेंगे आप भी लिखकर भेजिए कि आपने ये बसंती पुलाव या सौंदेश बनाया है या नहीं बनाया है। और अगर नहीं बनाया तो बनाने वाले हैं क्या, या फिर जिनके घर में बनता है तो वो लिखकर भेजिए। साथ ही बुजुर्गों वाली जो बात कही हमने, तो आपके घर में बुजुर्ग है क्या और किस तरह से उनका हट होता है, कभी बाल हट की तरह भी होता है उनका हट, तो आप उनका हट पूरा करते हैं या नहीं, इस तरह से कमेंट्स हमें जरूर लिखकर भेजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार है।
0: बिल्कुल, फिलहाल हमें गीत का इंतजार कर रहे
1: सुनते हैं।
3: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
4: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
3: लेकिन कब, कैसे
4: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

0: सोनाली, गाना हमने सुन लिया और अब कथा सुधा का वक्त हो गया है। तो आज की जो कहानी है तेतर, इसका पहला भाग हम सुनेंगे। इसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने कुछ बातें लिखी है कि ये जो शब्द है तेतर, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में लिखा है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि तेतर महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध मार्मिक कहानी है, जो 3 पुत्रों के पश्चात पैदा होने वाली कन्या और उससे जुड़े समाज के अंधविश्वासों पर आधारित है। और कहानी का परिचय और मुख्य बिंदु कथानक, तीनों बेटों के बाद घर में बेटी यानी कि तेतर का जन्म होता है, तो उसके बारे में जो बातें हैं, बहुत मान्यता है उसके बारे में ये कहानी है। हमारे श्रोताओं ने ये जानकारी हमें लिख करके भेजी है, सुन लें अपन।
1: सुनते हैं। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। कहना न होगा कि प्रेमचंद ने अपने समय के समाज में जो कुछ भी देखा उसका हूबहू सजीव चित्रण भी किया, जो आज के समय में हमें रास्ता दिखाने का भी काम करता है। लड़कियों के जन्म को लेकर बनी हुई मानसिकता और घोर निराशा व चिंता को देखते हुए एक लेखक ने इस कहानी के माध्यम से सभी को आगाह करने का प्रयास किया है। तेतर नाम की कहानी में लेखक ने 3 लड़कों के बाद जन्म लेने वाली लड़की का उल्लेख किया है, जिसे पहले से ही हमारे पुरुष प्रधान समाज में एक आफत और चिंता के रूप में देखा जाता है। कहानी में मुख्य रूप से समाज में एक तेतर लड़की को लेकर फैले हुए अंधविश्वास पर चोट की गई है, जो कहीं न कहीं हमारे बीच के कुछ लोगों द्वारा प्रसारित किया जाता है और इस अंधविश्वास को पुख्ता करने के लिए तरह तरह का स्वांग किया जाता है। जो व्यक्ति इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता उसे भी इन अंधविश्वास से भरे समाज में डर लगने लगता है। जैसे कि कहानी में लड़की का पिता, जिसका नाम दामोदर है, वो इन अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता, पर कहीं न कहीं वो भी अपनी माँ की बातों से थोड़ा घबराया हुआ था। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपको सुनवा रहे हैं इस कहानी का पहला भाग।
2: आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। 3 पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ महा अनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो, ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था, आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे।

0: पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती, या माता को, या अपने को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने।
1: अरे कलमुही है कलमुही, न जाने क्या करने आई है यहां। अरे किसी ऐसे के घर जाती जिसके औलाद नहीं है तो उसके तो दिन फिर जाते।
0: दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे।
2: अम्मा तेतर वेतर कुछ नहीं, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है, ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो अम्मा, नहीं तो लोग कहेंगे तीन बेटे हुए तो कैसे फूली फिरती थी, एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया।
1: अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को, मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण तो उसी में समाया हुआ है। तेतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ, तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कहां उठता है।
2: अम्मा इस कष्ट के निवारण का कोई तो उपाय होगा।
1: उपाय बताने वाले तो बहुत तेरे हैं, और पंडित जी से पूछो कोई ना कोई उपाय बता ही देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं है। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुठ्ठियां गर्म हुई, यहां जो सिर पर पड़ना था वो पड़ ही गया, अब टके के रह गए पंडित जी, जजमान मरे या जिए उनकी बला से, उन्हें दक्षिणा मिलनी चाहिए बस। लड़की तो जरा देखो दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है ये, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक। कलमुही नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही, ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। हाँ
0: दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी ना थे, लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले,
2: अम्मा तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो, गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ है वो तो होगा ही।
1: क्या बताएं, जी तो हुलसता ही नहीं, लेकिन करूं क्या।
2: अम्मा गाना न होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं, कि हो जाएगा, अगर इतने सस्ते में जान छूटे तो न कराओगा ना।
1: अब बुलाए लेती हूं बेटा, जो कुछ होना था वो तो हो ही गया।
0: इतने में सौर में से पुकार कर लक्ष्मी ने कहा,
3: अम्मा जी, ओ अम्मा जी, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का कोई काम नहीं है।
1: भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी, 12 ही दिन हैं, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, ये ना करूंगी वो ना करूंगी, देवी क्या है देवता क्या है, मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी, तो अब चुप से बैठी क्यों नहीं रहती हैं। मेमे तो तेतर को अशुभ नहीं मानती, और सब बातों में जब मेमों की बराबर करती हैं तो इस बात में भी करें, कहो चुप बैठी रहें। और सुनो लक्ष्मी, जाओ जरा गाने वालियों को बुला लाओ, और हाँ सब जगह न्योता दे दो, और पड़ोस में भी कहती जाना। हाँ

0: सवेरा होते ही लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा,
1: बड़ी अम्मा बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ बताइए ना।
2: अरे लड़की तो हुई है बेटा।
1: क्या? ओहो हो, पैजनिया पहनकर छुन छुन चलेगी? जरा मुझे दिखा दो दादी जी, थोड़ा दिखा दो ना।
2: अरे तो क्या शोर में जाएगा है, पागल हो गया क्या? चल बाहर चल, लड़के नहीं जाते अंदर।
0: लड़के की उत्सुकता न मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला,
1: अम्मा अम्मा जरा बच्ची को मुझे दिखा दो, एक बार दिखा दो अम्मा।
3: कहाँ जाते हो, बच्ची भी सोई है, चलो बाद में आना।
1: बच्ची को मुझे दिखा दो, जरा दिखा दो, गोद में लेकर देखूंगा।
0: लक्ष्मी ने कन्या उसे दिखा दी तो वहां से दौड़ता हुआ वो अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें जगा जगा कर खुशखबरी सुनाने लगा।
1: अरे छोटू सुनो, अरे छोटू सुनो, उठो उठो। अरे मैं अभी गुड़िया देखकर आ रहा हूँ।
4: हमको भी लिखाओ भैया, नन्ही सी होगी?
1: अरे बिल्कुल नन्ही सी, एकदम गुड़िया जैसी है। गोरी तो ऐसी कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। ये लड़की तो मैं लूंगा।
4: हम भी देखेंगे, हमको भी लिखाओ।
1: देखा कैसी सुंदर है,
4: कैसा मन का कैसा है, देखो ना भैया, हमको भी दिखाओ। नहीं नहीं, हमें तो हम भी देखेंगे।
1: खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े आतिशबाजी, क्या मजा आएगा,
4: बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
0: मंझला और छोटा ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वो मनोहर दृश्य आंखों के सामने है। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे।
4: फूल आया भी होंगे, फिर सारे फूल होंगे, हम भी फूल लेंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, कितनी सुंदर है।
0: छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना, सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए, दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात ये थी कि अब की उसकी छाती में दूध ही नहीं उतरा। यूं भी उसे देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहां तक कि दूध उतर ही आता था, पर अब की ये आयोजनाएं न की गई। फूल से बच्ची कुम्हलाती जाती थी, मां तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हां लक्ष्मी कभी चुटकियां बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वो आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस ना पड़ता था। बड़ा बेटा सिद्धू बच्चे को बाहर ले जाकर खिलाने के लिए बार बार जिद करता तो मां उसे झिड़क देती।

0: तीन चार महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुप चुप की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वो ना रोती थी ना हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वो माता की ओर मुंह भी ना फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहां कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई।
1: अरे बच्चे, कितनी प्यारी है गुड़िया। इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
0: उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुंग करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए।
1: अरे यहाँ क्यों ले आए, पड़ी रहने दो ना वहीं पर। ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, अब आगन कहीं की, रात दिन तो प्राण खाती रहती है, अब मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए।
2: अरे बस भी करो, मैं से बाहर ले जाता हूँ।
0: दामोदर दत्त उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उसके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी, पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वो चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
2: सिद्धू सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला, लाओ तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही से बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
0: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा, आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक केसावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: सोनाली, हमने बरखा फिल्म का ये गाना सुन लिया और उससे पहले हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी तेतर उसका पहला भाग भी सुन लिया। अगला भाग हम जरूर सुनेंगे अगले सोमवार के दिन, लेकिन अभी
1: अब ब्रेक लेते हैं।
0: हाँ

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और हम फिर से हाजिर हैं सखियों से बातचीत करने के लिए। और अब अपने विषय पर आते हैं, उससे पहले तुम कुछ कहना चाहती हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है
0: हाँ
1: मंजू जी कि इस समय मेरी धर्मपत्नी और मैं स्वयं डल लेक के सामने श्रीनगर के होटल के रूम में आनंद ले रहे हैं और अपने शहर अजमेर से लगभग 1,500 किलोमीटर दूर ये हमारी दीवानगी विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। जो सुबह सुरीला सफर जो प्रोग्राम चल रहा था ना, तब भी हमारे इन्हीं श्रोता का फोन आया, मैसेज आया था, और उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बात लिखी थी कि वो घूमने गए हैं और वहां पर जो नजारे हैं उसके बारे में लिखा था। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह के अपडेट्स जो है वो हमें देते रहते हैं। और आज हमारा जो विषय है बुजुर्गों में बढ़ता हठीलापन, इसके बारे में भी हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखी है। पहले कुछ बात हम अपनी यानी जो हम कहना चाहते हैं वो करते हैं कि कहा जाता है कि बचपन और बुढ़ापा जीवन के दो ऐसे पड़ाव होते हैं जहां व्यक्ति को सबसे अधिक स्नेह, धैर्य और अपनापन चाहिए होता है। फर्क केवल इतना ही होता है कि बचपन की जो जिद होती है वो मासूमियत भरी होती है, लेकिन बुढ़ापे की जो जिद होती है वो कई बार हट का रूप ले लेती है। यानी बच्चों की जिद तो हमें समझ में आती है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे हैं जिद तो करेंगे, लेकिन वही जब बुजुर्ग व्यक्ति करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं इन्हें ये कैसे हट कर सकते हैं,
1: क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। वैसे मंजू जी आज के समय में ये शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है कि हमारे पिताजी या माताजी बहुत जिद्दी हो गए हैं, लेकिन यदि इस व्यवहार के पीछे के कारणों को अगर समझा जाए तो पता चलता है कि उनका हठ केवल स्वभाव नहीं बल्कि परिस्थितियां, अकेलापन और भावनात्मक असुरक्षा का ये परिणाम हो सकता है।
0: तो हमें इन कारणों को जानने के बारे में सोचना चाहिए या जानना चाहिए। तो हठीलापन वो स्थिति होती है जब व्यक्ति अपनी बात, अपनी आदत या अपने निर्णय पर अड़ जाता है और दूसरे के विचारों को स्वीकार करने

0: में उसे कठिनाई महसूस होती है। बुजुर्गों में ये जो व्यवहार, ये अक्सर उम्र, अनुभव, स्वास्थ्य और बदलते सामाजिक परिवेश के कारण दिखाई देते हैं। यानी कारण कोई भी हो सकता है,
1: बहुत सारे कारण होते हैं।
0: हाँ, हमें समझना पड़ेगा।
1: अब जैसे बदलते समय में ये जो स्वीकारना है, इस बदलते समय में खुद को यानी उसके हिसाब से ढालने, इसमें उन्हें कठिनाई आ सकती है। और जिस समाज में उन्होंने जीवन बिताया, आज वही समाज पूरी तरह बदल चुका होता है। नई तकनीक है, नई सोच है, नई जीवन शैली है और नई पारिवारिक मूल्य उनके लिए सहज नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल। और जैसे कि इसके बारे में अगर हम एक उदाहरण दें, तो हमारे घर में कोई भी बुजुर्ग हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, ससुर, कोई भी हो सकते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि पूरा परिवार जो है वो रोज एक साथ बैठ करके भोजन करे। लेकिन होता क्या है कि आजकल जिस तरह से नौकरी लोग कर रहे हैं और उनका समय बहुत ज्यादा होता है, नौकरी का, पढ़ाई है या अलग अलग समय के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार टूट रहा है। जबकि अगर वास्तविकता की तरफ अगर हम नजर डालें, तो यही कहा जा सकता है कि दिनचर्या सबकी अलग अलग है, तो परिस्थितियां कुछ बदल गई हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है उनके हठीलेपन का।
1: पर हम एक उसमें बीच का एक रास्ता चुन सकते हैं कि भाई ठीक है, दादाजी का मन है, उनकी इच्छा है, तो हम हफ्ते में एक बार या दो बार तो हम कर ही सकते हैं।
0: हाँ, जब
1: कोशिश
0: संभव
1: तो
0: हो।
1: कर ही सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: तो होता यूं है कि लोग खाना खाने बैठे हैं, उस वक्त भी उनका ध्यान नहीं होता है कि खाने में नमक ज्यादा है या कुछ कम है या कुछ है, वो तो उस मोबाइल देखते हुए खाते हैं।
0: हाँ, और या तो टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए, जबकि पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, पूरा परिवार साथ में बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करते हुए भोजन करते थे, तो उसमें सुख दुख का बंटवारा भी हो जाता था। सब अपने मन की बात कहते थे, दिन भर क्या हुआ उसके बारे में एक विश्लेषण होता था, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक तरीका था जो अभी भी होना चाहिए। लेकिन जब नहीं होता है तो कई बार बुजुर्ग लोगों को ये बात ठीक नहीं लगती है,
1: तकलीफदायक हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और एक बात है मंजू जी, कि आजकल ना सम्मान थोड़ा सा कम देने लगे हैं लोग, कि पुराने जमाने में हमारे जो दादाजी हुआ करते थे, वे अपने पिताजी को या उनके दादाजी को बहुत सम्मान देते थे, उन्हें महत्व देते थे। हर काम में कोई भी बड़ा या छोटा काम करने से पहले उनकी सलाह ली जाती थी। पर आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि जैसे ना कि खुद की जैसी इच्छा हो उसी तरह से व्यवहार करे। पर बुजुर्गों को थोड़ा सा अगर मान सम्मान दिया, उनसे पूछ परख लिया, अगर उनसे सलाह ले ली, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। फिर ऐसी बात अगर उन्हें इस तरह से उन्हें शामिल नहीं किया गया तो वे नाराज हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जमाने में कैसे बुजुर्ग बैठकर आपस में पूछते थे, परखते थे, फिर कोई घर का निर्णय लेते थे। आजकल तो हमें सब काम होने के बाद में पता चलता है कि भी नया घर खरीदा जा रहा है, या फिर कोई शादी विवाह का मामला है, या फिर कोई अन्य मामला है, बच्चों के एडमिशन की भी बात हो तो भी अरे हमें तो पूछा भी नहीं कि एडमिशन भी हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें ना बुजुर्गों को थोड़ी
0: चुभ जाती
1: हो सकती है।
0: बिल्कुल। और पहले के जमाने की तुम बात कर रही हो, तो जो बड़े लोग होते थे ना, एक बार अगर उन्होंने कह दिया कि ये होना है, यही होगा, तो हमारे जो पिताजी थे वो उनकी बात को बिना सोचे समझे मान लिया करते थे। लेकिन अब शायद थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं और लोग ये सोचते हैं कि नहीं, नए जमाने या नई तकनीक या नए जो चाल चलन या जो तरीका जो है चलन में जो तरीका है, उसके बारे में शायद बुजुर्गों को इतना पता ना हो, तकनीक बहुत कुछ बदल गई है तो हमें क्या करना है ये हमें ही ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है। शायद इस सोच की वजह से भी हम पूछते नहीं हैं उनसे, और ये भी एक कारण है कि ये उनके मन में कुछ इस तरह की भावनाएं पैदा करते हैं बुजुर्गों के मन में, कि अरे अब हमारी तो कोई आवश्यकता ही नहीं बची, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। और फिर वो अपने महत्व को शायद ये चाहते हैं कि हमारा भी कुछ महत्व बताने के लिए भी हो सकता है, ये एक कारण कि उनमें हठीलापन आ जाए
1: और कभी कभी रूठ भी जाते हैं।
0: बिल्कुल। तो उन्हें मनाना ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। गीत सुन लें, यहाँ
1: सुनते हैं गीत।

0: मंजू जी, हमारे एक सखी ने लिखा है, मैं इस समय बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हूँ। इस समय यहाँ 12:05 हुए हैं, इंडियन टाइम से 3.5 घंटे पीछे हैं।
1: क्या
0: कितना
1: बात
0: अच्छा लगता है
1: है।
0: ना।
1: हाँ, समय कोई भी हो, लेकिन अगर आप विविध भारती सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी आनंद की बात
0: बात
1: है।
0: है।
1: चलिए, हमारा जो विषय है उस पर हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के मोबाइल और डिजिटल युग में सबसे बड़ा बुरा हाल जो है वो उम्र दराज और बुजुर्गों का है। जो कभी समाज के ऊपरी पायदान पर होते थे, उसे आज समाज कोई पूछता भी नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जीवन का अनुभव उनके पास होता है और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले समाज और परिवार के सभी बड़े काम जिन वडिलों को पूछे, वडिल यानी बड़े लोगों से पूछे बिना
0: बुजुर्ग।
1: नहीं होता था, आज उनको पूछा नहीं जाता है। तो ये गलत है। अगर आप किसी भी घर में ऐसा होता है
0: तो वो
1: तो ये
0: गलत
1: नहीं
0: है
1: होना चाहिए।
0: जी। एक साथ ही लिखते हैं मंजू जी कि मैं भी 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, मुझमें कोई हठीलापन नहीं है। घर के सभी सदस्य मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं उन सभी की खबर ख्याल रखता हूँ। सुबह विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करने चला जाता हूँ। इन सभी के अलावा विविध भारती फेसबुक पेज से कई श्रोता मित्र, उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, और उनके लिए विविध भारती के लिए यही कहता हूँ कि तेरे पास आकर मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए नहीं, जिंदगी की हर घड़ी के लिए गम जाने किधर चला जाता है पता ही नहीं
1: क्या
0: चलता।
1: बात है। जिंदगी के प्रति हमारा जो नजरिया होता है ना,
0: जी,
1: वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: सकारात्मक होना चाहिए।
1: बिल्कुल। शारीरिक अवस्था चाहे कुछ भी हो, चाहे हम जवान हो या ढलती उम्र हो या बुढ़ापा हो, लेकिन जब हमारा नजरिया सही होता है तो जो शारीरिक परिस्थितियां हैं उनमें भी कुछ तो बदलाव आ ही
0: आ
1: जाता
0: ही
1: है।
0: जाता है यानी, और है ना, छोड़ देने की आदत कि ठीक है उनके हिसाब से चलो, या फिर है ना कि हर चीज को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है।
1: हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी उम्र इतनी बड़ी है तो परिस्थितियों में बदलाव आना स्वाभाविक बात है। उन परिस्थितियों से अगर थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाए, अपने नजरिए को थोड़ा बदल दिया जाए कि हाँ, ये बदलाव तो होगा ही, हमारे जमाने में ऐसा होता था लेकिन इस जमाने में ऐसा हो रहा है, तो हमें भी इस समय के अनुसार चलना है। ये अगर सोच थोड़ी सी कर ली जाए तो भी बहुत सारी परेशानियों से हम बचे रह सकते हैं।

0: की समस्या को समझने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए कि जैसे कई बार होता है कि उम्र के हिसाब से हमारे जो सिर के बहुत सारे अंग होते हैं वो थोड़े से मंद पड़ने लग जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लग जाती है, भूलने लगते हैं। तो इस तरह के जो बदलाव आते हैं उससे भी ये समस्या होती, हमें ऐसा लगता है कि हड्डीलापन है, जबकि ऐसा वो करते नहीं है, बल्कि ऐसा हो जाता है कि वो अपनी एक बात से चिपक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो हड्डीलापन कर रहे हैं। तो हमें इन बातों को समझना होगा।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की जिद से निपटने के उपाय, धैर्य से सुने, उनकी बातों को काटे नहीं, उन्हें महसूस कराए कि उनकी राय क्या में महत्वपूर्ण क्या है, सम्मान दे, उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए, आदेश देने के बजाय प्यार से सुझाव दे, सक्रिय रखे उन्हें, सैर, योग या पारिवारिक गतिविधियों में शामिल करे।
0: बिल्कुल, एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बुजुर्गों का हठीलापन कोई बीमारी नहीं बल्कि उनके जीवन के इस पड़ाव की एक पुकार है, जो अपनों का साथ और सम्मान चाहती है, उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय उनके इस व्यवहार को धैर्य और प्रेम से संभालना ही एक परिपक्व समाज और परिवार की पहचान होता है। तो ये बहुत सारे श्रोताओं ने बातें लिखी है, और भी कोई बात अगर तुम्हारे पास है तो तुम पढ़ के बता सकती हो हमें।
1: जी, एक साथी लिखते हैं कि बढ़ती उम्र में बुजुर्गों में हठीलापन आना एक बहुत ही मुख्य समस्या है, आम समस्या है। मुख्य कारणों में बढ़ती उम्र तो है, इसके चलते मुख्य कारणों में स्वतंत्रता खो देने का डर होता है, शारीरिक या संज्ञात्मक कमी, डिमेंशिया के कारण पराधीन होने का मनोवैज्ञानिक डर बना हुआ रहता है, जिसके कारण हमें उनमें बच्चों की तरह हठीलापन का एहसास होने लगता है, खासकर जब बढ़ती उम्र में उनकी उपेक्षा होने लगती है तब उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, प्यार से समझाकर उनकी भावनाओं का सम्मान करें।
0: बिल्कुल, अब हम संगीत का भी सम्मान करते हैं, एक गीत सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: फिल्म अगर देखी हो ना, तो इसमें जो ये गाना है ना, दादी अम्मा मान जाओ, तो दादी के जो पोते होते हैं वो किस तरह से बड़े प्यार से दादी अम्मा को मनाते हैं, तो वो वाकई में देखने लायक है।
1: और ऐसे ही अगर दादी को या दादा को मनाया जाए तो दादी या दादा रूठेंगे ही नहीं, बिल्कुल से मान जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही प्यार और ऐसा ही सम्मान उनके प्रति होना बहुत आवश्यक है। अब कुछ खाने पीने की बातें हो जाए।
1: हाँ, आज हम
0: देखिए,
1: पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले हैं।
0: हाँ, जो बसंती चावल और सौंदेश की हम बात कर रहे हैं, एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बसंती चावल पंजाब के बहुत सारे प्रांत में बसंत पंचमी के दिन बनाया जाता है, जिसमें बासमती चावल को घी में पकाते हैं और उसमें केसर, ड्राई फ्रूट और चीनी का सिरप मिलाकर बनाते हैं। और मैंने अपने पड़ोसी के घर ये खाया है और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सौंदेश तो खाने के लिए मिठाई की दुकानों से मिल जाता है, बंगाली सहेली के घर पर बहुत सारे हमने बंगाली व्यंजन खाए हैं।
1: एक ने सौंदेश की रेसिपी लिखकर भेजी है हमारे एक साथी ने। इसकी सामग्री और तैयारी, तो दूध 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेना है, चीनी 3 से 4 बड़े चम्मच लेना है, इलायची पाउडर छोटा आधा चम्मच और नींबू का रस या सिरका 2 बड़े चम्मच दूध को फाड़ने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: बनाने के लिए छेना बनाए, दूध को उबाले, फिर गैस बंद कर दे और नींबू के रस या सिरके में थोड़ा सा पानी मिलाकर धीरे धीरे दूध में डाले ताकि वे आराम से फट जाए। अब पानी निकाल ले। अब फटे हुए दूध को सूती कपड़े में छान ले और साफ पानी से धोकर अतिरिक्त पानी निकालकर उसे निचोड़ ले। अब उसको अच्छे से मैश करना है, उसको मसलना है। छेने को प्लेट में निकालकर हथेलियों से 7 से 8 मिनट तक चिकना होने तक मस ले। अब इसको पकाना है। इसमें अब पकाने के लिए इसमें पीसी चीनी डालना है मसलने के बाद में, और इलायची पाउडर मिलाए और मिश्रण को पैन में धीमी आंच तक 3 से 4 मिनट तक नरम होने तक पकाए और ठंडा करें। और इसे आकार देना है। हाथों में घी लगाकर मिश्रण की छोटी छोटी लोइयां बनाएं और मनचाहा आकार देकर पिस्ता से या फिर काजू या फिर बादाम से सजा दे।
0: बिल्कुल सही बात तुमने कही है कि किस तरह से सजाया जाए। लेकिन सोनाली, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि पहले के जमाने में चाहे कोई त्योहार आए या कोई पर्व हो, कोई उत्सव हो, तो घर में ही सारी मिठाइयाँ बनती
1: बनाई
0: थी।
1: जाती थी,
0: हाँ, और वो बड़ी स्वादिष्ट भी लगती थी और कई कई दिनों तक हम उसे खाते थे,
1: खाते थे।
0: स्वाद मुंह से जाता ही नहीं था। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि बनाने का समय ही नहीं है तो बस बाजार से ले आओ और खा लो।
1: और फ्रिज में रख दो।
0: हाँ, फ्रिज में रख दो। तो इसकी बजाय हम कभी कभी ये बनाने की अगर कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि घर की बनी हुई जो मिठाइयाँ होती है उसका स्वाद एकदम
1: कुछ
0: अलग
1: अलग
0: होता
1: ही
0: है।
1: होता है।
0: और शुद्धता की भी तो बात है ना, हमें पता है कि हमने कौन कौन सी सामग्री इसके अंदर मिलाई है, किस तरह से बनाया है। और अगर घर में बनता रहेगा तो ये जो रेसिपी है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये
1: ट्रांसफर होती है।
0: ट्रांसफर होती रहेगी। अन्यथा अगर आगे हम नहीं बनाएंगे तो आगे वाली
1: पता
0: पीढ़ी
1: ही
0: को तो
1: नहीं
0: पता
1: चले।
0: ही नहीं चलेगा कि इन पर्वों पर, इन उत्सवों पर क्या बनता था हमारे घर में और कैसे बनाया जाता है। तो ये भी एक बात है ना।
1: और जब हम घर में बनाते हैं तो अच्छे हाइजीन का ध्यान रखते हैं,
0: हाँ।
1: साफ हाथ धोकर फिर हम ढक कर रखते हैं फिर उसमें कुछ कीड़ा ना लग जाए, इसलिए हम कितना ध्यान रखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये
0: और
1: ध्यान रख के बनाना बहुत जरूरी
0: हाँ,
1: है।
0: और पहले के जमाने में तो मैंने ये भी देखा है कि जब ये ऐसे पर्व उत्सव आते थे तो अपने घर में क्या बना है, एक प्लेट भर के हम अपने पड़ोसियों के और रिश्तेदारों के घर भी देने के लिए जाते थे, और वहां से भी प्लेट
1: उनके
0: भर के
1: आते
0: आता
1: थे।
0: था, तो हमें ये पता चलता था कि वहां क्या बनता है और उनकी उसी जो मिठाई है उसका स्वाद वहां का कैसा है। अगर हमें ऐसा लगता था कि नहीं, ये हमारे स्वाद से ज्यादा अच्छा है, तो हम कोशिश करते थे कि
1: वैसा
0: वैसा
1: बनाया,
0: बनाया जाए।
1: यानी संस्कृतियों का भी आदान प्रदान पहले हुआ
0: बिल्कुल
1: करता था।
0: होता था। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि घर में इस तरह की रेसिपी बनाना
1: बहुत
0: चाहिए हमें।
1: जरूरी।
0: चलिए, बसंती पुलाव किस तरह से बनाया जाए, हमारे श्रोता ने ये बात लिख करके भेजी है। तो बसंती पुलाव एक पीले सुनहरे रंग का सुगंधित मीठा सा चावल का व्यंजन है। बसंती नाम इसके सुंदर पीले रंग से जुड़ा है। इसे विशेष अवसरों, पूजा और पारिवारिक समारोहों में बनाया जाता है। मुख्य विशेषताएं उन्होंने लिखी कि आमतौर पर सुगंधित चावल का इस्तेमाल किया जाता है। घी, हल्दी या केसर से इसका आकर्षक रंग और खुशबू आती है। इसमें किशमिश और काजू जैसे मेवे डाले जा सकते हैं। इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता आदि मसाले इसकी सुगंध बढ़ाते हैं। और बंगाली भोजन में इसे अक्सर आलू की या दम या अन्य सब्जियों के साथ परोसा जाता है। और बसंती पुलाव की खासियत यह है कि इसमें मीठे और मसालेदार स्वाद का एक सुंदर संतुलन मिलता है। ये बात इन्होंने लिख करके भेजी है। और अगर इसकी रेसिपी भी हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है तो वो भी हमें बताना चाहिए।
1: कितना उसमें, यानी 2 कटोरी चावल है तो उसमें कितना तेल लेना है, फिर कौन से खड़े मसाले। मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, पानी कितना डालना है, इस तरह से भी अगर लिख के भेजे ना तो अन्य

0: श्रोता जो घर में सुन रहे हैं उन्हें भी और भी सहूलियत होगी ये बनाने में।
1: बिल्कुल। और यहाँ एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे इन व्यंजनों की इन्होंने बात की कि इसमें गरम मसाले भी मिलाए जाते हैं और मीठा भी स्वाद आता है, तो जो गरम मसाले एक संतुलित मात्रा में मिलाए जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़े हितकर होते हैं। तो पहले के जमाने के जो भी मीठे व्यंजन, चाहे कोई भी और व्यंजन हो, तो उनमें स्वाद के साथ सेहत का भी पूरा खजाना छिपा हुआ था। तो ये इसलिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर में बनाएंगे तो हम इन बातों का भी ख्याल रखेंगे।
0: और है ना,
1: जो
0: घर
1: हमारे
0: में मंजू जी जो बनाए जाते हैं ना मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं, कि जैसे सर्दियों में गोंद के लड्डू सबके घर में बनते ही बनते थे उस जमाने में, फिर अभी बारिश का मौसम आएगा तो अभी मकई आ रही तो मकई के व्यंजन बनते ही थे, क्योंकि हम साल भर उस वक्त सब चीजें नहीं मिलती थी।
1: बिल्कुल। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं।

0: सोनाली, इस गाने में जो एक शब्द है ना, धीरे से तेरा ये मुस्काना, बड़ा प्यारा लगता है। घर में भी जब कोई अच्छी सी कोई मिठाई मम्मी दादी नानी के हाथ से बनती है और वो हमें पसंद हो, तो धीरे से एक मुस्कुराहट हमारे भी चेहरे पर आती है ना।
1: और वो खुशबू है ना, हाँ? वो खुशबू से ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। खाने के पहले, चखने के पहले ही उस खुशबू से जो घर में इतनी खूबसूरत महक आ जाती है ना, कि हमें ऐसा लगता है अरे वाह, आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा हमें।
0: बिल्कुल।
1: और एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि हम जो संदेश है वो हम गुड़ का हमारी सहेली बनाती है।
0: अच्छा,
1: तो आजकल जो हेल्दी ऑप्शन लोग चुन रहे हैं कि शक्कर के बजाय गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उसमें स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं।
0: बिल्कुल। और कहते हैं कि रसोई घर तो एक प्रयोगशाला होती है, जितने प्रयोग करेंगे उतनी नई नई बातें हमें पता चलेगी। चलिए, अब एक बात हमें ये पता चल गई कि कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है, तो अब हमें सखियों सखाओं से आज्ञा लेनी होगी। तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर संजय भदादा से, जो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, यानी ऐसे विशेषज्ञ जो हार्मोन्स, ग्रंथियों और एंडोक्राइन सिस्टम के विशेषज्ञ होते हैं। तो चलिए करते हैं बातें डॉक्टर संजय भदादा से। इनसे बातचीत आपके इस दोस्त यूनुस खान ने ही की है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और इस समय सेहतनामा कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय भदादा, जो चंडीगढ़ के पीजीआई में एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं और इस दिशा में उन्होंने बहुत सारा रिसर्च का काम भी किया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद बुलाने के लिए विविध भारती से।
0: जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जिसका नाम लेना ही बड़ा मुश्किल है, इसका काम क्या है?
1: सो अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगा तो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट या एंडोक्राइन जो ब्रांच है, हार्मोन से डील करती है।
0: जी।
1: और हार्मोन्स एक तरह से एक पदार्थ है जो आपके शरीर में है, जो बहुत सारी ग्लैंड्स इसको सिक्रीट करती है, और ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इसका असर बहुत ही सीरियस होता है। चाहे वो कम हो जाए तो भी उसका असर बहुत सिग्निफिकेंट होता है, और वो जरूरत से ज्यादा हो जाए तो भी उसका असर काफी गंभीर होता है। तो एक तरह से एक बैलेंस होना चाहिए हार्मोन के लेवल में। अगर हार्मोन्स के लेवल का बैलेंस खराब हो गया तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होंगे, और ये बहुत सारे हार्मोन्स है बॉडी के अंदर और नए नए और निकलते जा रहे हैं जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है, साइंस प्रोग्रेस कर रहा है। वैसे वैसे
0: महिलाओं में ये समस्या आमतौर पर ज्यादा देखी जाती है।
1: बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। तो जो हमारे वार्ड में एडमिशंस होते हैं उसमें भी फीमेल पेशेंट्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल पेशेंट्स के।
0: जी डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आने से पहले जब मैं आपसे कुछ बातें कर रहा था तो आपने कुछ दिलचस्प बिंदु उठाए थे अपने अनुभव के, और उसमें हार्मोन्स के जरिए हड्डियों पर होने वाले असर की आपने बातें की, तो हम सब इसे सुनकर चौंक गए। तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना इस कार्यक्रम में वो बातें आप बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, हार्मोन्स आपकी हड्डियों पर सीधे असर करते हैं।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस सवाल का

0: जवाब देने में मुझे बहुत मज़ा आएगा,
1: जी
0: क्योंकि ये जो एरिया आपने चूज़ किया या अपन ने जो चूज़ किया कि कैसे बोन्स हार्मोन्स को अफेक्ट करती है, तो इसके बारे में जो जानकारी, तो सबसे पहले मैं इसमें आपसे और हमारे विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। और सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे महिलाओं में महीना बंद हो जाता है, जिसको हम मीनोपॉज बोलते हैं या महावारी का बंद होना बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स बनता है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल एकदम कम आने लग जाता है, और उसकी वजह से जो कॉमन सिम्टम्स तो महिलाओं में होता ही है कि जैसे चेहरे पे पसीना आना है, घबराहट होना है, मन उदास होना है, ये सारे सिम्टम्स उस टाइम पे होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट बोन्स पे भी बहुत होता है, तो अगर वो हार्मोन का जो एक पर्टिकुलर लेवल चल रहा है, अचानक हार्मोन्स लेवल गिर जाता है, तो उससे बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है, और उससे जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, और ऑलमोस्ट 30 to 40%, 50% महिलाओं को होता है, और वो पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जबकि उस टाइम में उसको इंटरवीन करके उनकी बोन हेल्थ को अपन अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं।
1: क्या ये मुमकिन है कि इस तरह के मरीज पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनकी समस्या की जड़ क्या है और चीजें दूसरी दिशा में चली जाएं?
0: बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और उसका एक रीजन है कि आम पब्लिक को एंडोक्राइन डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं है, और ज्यादा पता है तो उनको यही जानते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब है कि वो डायबिटीज को देखता है, थायराइड डिसऑर्डर्स को देखता है, या मोटापे को देखता है। तो ये एक तीन डिसऑर्डर्स के लिए उनको पता है कि ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बोन्स की देख रेख करते हैं। उसमें जैसे एक हार्मोन का नाम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, एक होता है विटामिन डी, एक होता है और भी कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो तो मैं यहाँ पे बताने का फायदा नहीं, पर ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, और इन दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में जो इनका कैसे बनता है, ये कैसे काम करता है, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो पढ़ाई जाती है, समझी जाती है, वो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट वालों के थ्रू होती है। तो अगर इससे कोई बीमारी होती है तो अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कंसल्ट करेंगे तो वो बीमारी जल्दी से पता चल सकती है, और जल्दी से उसका इलाज हो सकता है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा हो सकता है। पर आम पब्लिक को ये पता है कि ये हड्डी का बीमारी, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको हड्डी का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आप एक बार जरूर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने सुना है या देखा है हमने कि जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के, 4 साल के, या जन्म के तुरंत बाद उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो इस तरह के फ्रैक्चर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हॉर्मोन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो उसका अगर टाइम पे पता चले तो उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। ऐसे एक दूसरा डिसऑर्डर्स होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड की वजह से, जब हार्मोन ज्यादा बन जाता है तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर कैल्शियम ज्यादा बनता है, आपको रीनल स्टोन्स हो जाते हैं, आपको बार बार पथरी बनती है, और आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, पथरी का ऑपरेशन करके निकलवाते हैं, पर आप उसके जड़ में नहीं पहुंच रहे, और उसकी जड़ में नहीं पहुंचने की वजह से कि आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, उसका सही इलाज नहीं हो रहा, तो आपको प्रॉब्लम चलता ही रहता है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है, आपको किडनी डिजीज होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको, जैसे मैंने एक और चीज बता दी एक तरह से, कि आपको बार बार पथरी बन रही तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ये
1: यहां
0: दूसरा
1: मुझे
0: है।
1: एक कंफ्यूजन हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि अब जैसे आपने कहा कि हड्डियों की समस्याएं हैं, तो अब अमूमन क्या होता है कि हड्डियों के डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, तो कैसी परिस्थितियों में व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये पथरी की समस्या है तो मुझे किडनी स्टोन के डॉक्टर के पास नहीं जानी है, ये हड्डियों की समस्या है तो मुझे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, ये डिसाइड कैसे होगा?
0: तो मैं सबसे पहले ही आपको बोलता हूं, अपन एक ही क्वेश्चन में तीन चार आंसर पूछे हैं तो वन बाय वन लेता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको हड्डी के फ्रैक्चर के बारे में।
1: जी
0: तो मैं ये बोलूंगा कि कोई भी फ्रैक्चर जो कि ट्रॉमा की वजह से हुआ है, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, जैसे और किसी वजह से चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बेस्ट डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक सर्जन। वो
1: जो
0: उसके
1: टूट फूट हुई है।
0: टूट फूट हुई उसके लिए जाना, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट का नाम ही हड्डी जोड़ तोड़ विभाग है ना,
1: अच्छा
0: तो उनके पास जाना है। लेकिन सपोज आप बाथरूम में स्लिप कर गए,
1: जी
0: फ्रैक्चर हो गया, या हल्का धक्का लग गया, फ्रैक्चर हो गया, दो सीढ़ी स्किप हो गए, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, या अपने आप फ्रैक्चर हो गया, इन सब के

0: आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो अगर फ्रैक्चर एक्सटेंसिव ट्रॉमा की वजह से हुआ तो आपको जाना है ऑर्थोपेडिक्स के पास, पर जो माइनर ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो रहा है, अपने आप हो रहा है, फैमिली में फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, उसके लिए आपको जाना है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास।
1: बिल्कुल साफ कर दिया आपने
0: बिल्कुल।
1: इस मामले को
0: अब उसके बाद दूसरी बात जो आती है कि आपने पूछा पथरी के बारे में,
1: जी।
0: तो पथरी क्या होता है कि आमतौर पे पथरी 2-4% लोगों को पानी कम पीने की वजह से बन जाती है, पर अगर पथरी बार बार बन रही है, अगर जिंदगी में किसी को पथरी एक बार बन गई ठीक है वो बन सकती है, लेकिन आपको बार बार पथरी बन रही, बार बार दर्द हो रहा है, इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, या आपके यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो आपको ऑपरेशन करके पथरी निकाल रहे हैं, 3 साल बाद फिर पथरी बन गया, इस तरह का तो प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है कि वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि उसका इलाज लेना हो सकता है, लेकिन उसको क्यों बन रहा है उसका कारण जानने के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा।
1: जी, मेनोपॉज की बात चल रही थी और आपने कहा कि कुछ खास लक्षण होते हैं जिनसे हर महिला को उस समय गुजरना पड़ता है। अचानक वजन बढ़ जाना, वाटर रिटेंशन, है ना, ये तमाम चीजें हैं। तो क्या ऐसे समय में ये दौर अपने आप निकल जाता है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मदद लेनी जरूरी होती है?
0: इसका आंसर ऐसा हो सकता है कि बहुत बार जो ये सिम्टम्स होते हैं सभी महिलाओं को एक जैसे नहीं होते हैं,
1: जी।
0: कुछ महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि उनका मेनोपॉज हुआ और निकल गया, तो उनको लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, बट उनके लिए करना है कि अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए। अक्सर अमूमन ये होता है कि हमारे घर परिवार में माताएं बहनें अपने आप को इग्नोर करती है अपनी हेल्थ को, और घर के सब लोगों के हेल्थ का ध्यान रखती है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, पोते ने दूध पिया कि नहीं पिया, लेकिन वो अपने दूध पीने का ध्यान नहीं रखती है, अपना दही खाने का ध्यान नहीं रखती है, अपनी एक्सरसाइज नहीं करती, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर बिना किसी सिम्टम के लिए निकल जाए तो कुछ नहीं करना, अपना एक्सरसाइज चालू रखो, अपना कैल्शियम विटामिन डी का डाइट अच्छा रहो और वजन नहीं बढ़ने दो। लेकिन कुछ लोगों को बहुत मूड स्विंग होता है, अचानक पसीना आ जाता है, घबराहट होता है
1: जी।
0: और ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो इस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होते हैं, तो इस तरह के लोगों को आपको कंसल्ट करना चाहिए विदाउट टाइम वेस्टिंग। जैसे हम हमारे मैं एक इंस्टीट्यूट में काम करता हूं, तो हमारे जो रेसिडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाने के लिए जब बात चलती है तो किसी महिलाओं की हिस्ट्री लेनी होती है, तो मैं उनको पहला एक सवाल पूछता हूं कि उनको उनके महीने के बारे में आप जरूर पूछें कि माहवारी कैसी चल रही है। माहवारी ठीक चल रही है तो उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने का चांस है, इसलिए हम बोलते हैं कि वुमेन्स के अंदर माहवारी रेगुलर होना एक बैरोमीटर ऑफ हेल्थ है। अगर आपकी माहवारी ठीक चल रही है तो आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है, और हमने ऐसा देखा भी हमारे घर परिवार में, बचपन में मम्मी कहती थी कि अरे महीना एक महीना भी चूक गया तो आगे लग गया तो घर वालों को टेंशन रहता है ये क्यों हो रहा है, होना नहीं चाहिए, तो सेम चीज है यहां पे भी। वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिस्ट्री से बहुत सारी डिजीज आपको पता चल सकती है। अगर किसी का महीना गड़बड़ हो रहा है तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर से बहुत कॉमन होता है,
1: तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: जाना चाहिए और बताना चाहिए ये, और बहुत सारी चीजें शक्ल देख के डायग्नोज कर सकते हैं हम।
1: तो इस बारे में बात करेंगे कि शक्ल देख के आप कैसे डायग्नोज
0: बिल्कुल
1: करते हैं।
0: बिल्कुल
1: बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि आप कहीं नहीं जाइएगा।
0: बिल्कुल
1: पहले डॉक्टर साहब से एक गाने की फरमाइश करते हैं, उसके बाद शक्ल देख के कैसे आप मरीज पहचानते हैं ये बात होगी।
0: हाँ, तो हम इसमें माताओं बहनों की बात कर रहे हैं तो एक अच्छा फेमस गाना है, फूलों का तारों का सबका कहना है मेरी एक बहना है,
1: क्या
0: तो
1: बात
0: उसके
1: है,
0: बारे
1: हरे
0: में बात
1: रामा
0: करें।
1: हरे कृष्णा,
0: हरे
1: फिल्म का
0: रामा,
1: ये गीत आनंद बख्शी की बोल, आर डी बर्मन की तर्ज, सुनते हैं ये गाना।

0: रहना है।
1: रुक साहब, ये तो बहन को समर्पित गाना, और आप इस गाने से पहले कह रहे थे कि आप चेहरा देखकर मर्ज भांप लेते हैं, ये तो बड़ी चमत्कारिक बात
2: और
1: है।
2: बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं जब उदयपुर मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएट था तो हमारे प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर सूरवीर सिंह।
1: जी जी
2: तो उनके बारे में ये फेमस था कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने अच्छे डॉक्टर, कि जब मरीज उनके कमरे में घुसता तभी बीमारी बता देते।
1: अरे गजब।
2: तो अब वो
1: ऑब्जर्वेशन
2: ऑब्जर्वेशन उस टाइम हमारा इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि ये कैसे बता देते बीमारी। लेकिन जब मैं एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन किया तो मुझे पता चलता है कि हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हमारी है जो हम बता सकते हैं कि ये मरीज अंदर घुस रहा है, इसको ये बीमारी होने की संभावना है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 100% बता देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन 80% 90% बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी होने की ज्यादा संभावना, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे।
1: जी जी,
2: जैसे अभी आपने एक दो बीमारियां होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस का एग्जाम्पल देता हूँ, बोन की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन जिसको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रॉमा की, और वो ऐसे झुक के चलने लग जाए, आगे झुक करके चलने लग जाए,
1: जी,
2: तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्पाइन का हाइट कम हो गया।
1: अच्छा,
2: उसका स्पाइन का हाइट कम होने की वजह से वो आगे झुक गया, तो ये बीमारी क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। और आपने बहुत बार देखा होगा अपने आस पड़ोस में महिलाएं बहुत झुक जाती है। हम जनरली ये समझते हैं तो उम्र के हिसाब से हो गया, ये कोई बीमारी नहीं है, बट वो एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी की वजह से हो गया।
1: जी,
2: अगर
1: जी,
2: उनका टाइम पे इंटरवेंशन किया जाए तो वो ऐसे नहीं झुकेंगे।
1: जी, कई बुजुर्गों को दिखाई कि उनकी कमर दोहरी हो जाती है।
2: बिल्कुल,
1: पुराने जमाने में
2: ज्यादा होता
1: ज्यादा
2: था,
1: देखा जाता था।
2: और दूसरा बीमारी होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल।
1: जी जी,
2: तो वो हार्मोन जब ज्यादा बनता तो शरीर भारी हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, गोल हो जाता है, और कहीं भी छोटा हल्का चोट लगी तो निशान बनने लग जाते हैं, नील पड़ जाती है। ये सारी बीमारियां आप बहुत बार शक्ल देख के बता सकते हैं इस पर्सन को ये बीमारी है।
1: कॉर्टिसोल तो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस है ना?
2: ये बिल्कुल, कॉर्टिसोल स्ट्रेस का हार्मोन है कि
1: जी,
2: अगर
1: जी,
2: आपका जब भी स्ट्रेस होगा तो ये बढ़ जाएगा।
1: हाँ, तो वो कम हो तब हैप्पी है आदमी।
2: हाँ, वो उसका ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए।
1: जी,
2: जैसे कि मैं इसको लाइन को शायद मैं बार बार जब भी अपना डिस्कशनों को बोलूंगा कि हमारे सारे हार्मोन के लेवल ऑप्टिमम होने चाहिए, अगर आप बढ़ गया तो भी खतरनाक है। कोर्टिसोल कम हो गया आपका ब्लड प्रेशर चला जाएगा।
1: ओके ओके,
2: हाँ, तो इसलिए हर चीज बैलेंस में चलती है, इसलिए एंडोक्राइनोलॉजी को हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन।
1: क्या बात,
2: सब चीज वैसे रहना चाहिए,
1: अनुशासित
2: अनुशासित। जैसे डायबिटीज भी एक ऐसा बीमारी जिसमें अनुशासन रहना चाहिए।
1: हाँ,
2: अगर आप अपना खाना ठीक से नहीं करेंगे, आप अपना एक्सरसाइज ठीक से नहीं करेंगे, दवाई ठीक से नहीं लेंगे, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर आप ये तीन चीजों को प्रॉपर करेंगे तो आप जितना जी सकते हैं उतना जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: और चेहरा देख के कौन कौन सी चीजें समझ में आ जाती हैं?
2: और चेहरा देखने से जैसे कि

0: हार्मोन्स होते हैं, जिन हार्मोन्स को मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स बोलते हैं,
1: जी
0: तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाओं के अंदर फेशियल हेयर नहीं होंगे,
1: जी
0: पर अगर महिलाओं में फेशियल हेयर आना शुरू हो गए तो इसका मतलब उनको ये पर्टिकुलर जो मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है। तो वो मेल हार्मोन्स लेवल बढ़ने के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, वो कितना सीवियरिटी है, जैसे बहुत सारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फेशियल हेयर आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो कोई ट्यूमर हो सकता है जो कि ये हार्मोन ज़्यादा बना रहा है, तो वो पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि कोई पुरुष है उसके चेहरे पे बाल नहीं है, तो वो इसका मतलब उसके अंदर मेल हार्मोन है वो नहीं है, उसकी वजह से चेहरे पे बाल नहीं आ रहे हैं, तो वो हम बीमारी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी। फिर एक हार्मोन होता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, वो आपकी
1: जी
0: ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाए तो बंदा
1: 6 फुट के
0: सवा
1: ऊपर,
0: छः नहीं 7 फीट का हो सकता है, और चेहरा बड़ा हो जाएगा, हाथ बड़े हो जाएंगे। जैसे
1: अच्छा
0: आपने WWF में कुछ लोगों को देखा होगा, मैं नाम नहीं
1: जी
0: लेना चाहता हूँ, बट वो जैसे बहुत बड़े हो
1: हाँ
0: जाते हैं, हेल्थ लंबा चौड़ा, तो वो उनको बेसिकली एक तरह से वो ग्रोथ हार्मोन का एक बीमारी है, वो ज़्यादा है, उसकी वजह से वो ज़्यादा बढ़ गए हैं।
1: क्या बात। मध्य प्रदेश में एक पुलिस के व्यक्ति हुआ करते थे जो
0: हाँ
1: एशिया के सबसे
0: वो
1: लंबे।
0: पंजाब में भी कुछ है,
1: जी
0: वो भी है। और दूसरा उसका उल्टा है, अगर आप उस हार्मोन नहीं बना आपको तो आपका हाइट कम रह जाएगा, तो इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ हार्मोन ऑप्टिमम इज रिक्वायर्ड टू हैव ए नॉर्मल। अगर कम है ग्रोथ हार्मोन तो आपका लंबाई नहीं बढ़ेगा, अगर ज़्यादा हो गया तो आपका बहुत लंबाई बढ़ जाएगा, वो भी ठीक नहीं। तो ये हर हार्मोन जैसे ज़्यादा है तो अलग प्रॉब्लम करता है, कम है तो अलग प्रॉब्लम करता है, और नॉर्मल है तो ठीक रहता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें इसलिए देख के पहचान सकते हैं कि इसको क्या पॉसिबिलिटी है बीमारी होने की।
1: बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है। और यहाँ एक चीज जो हड्डियों से जुड़ी बातें हो रही हैं, हड्डियों और हार्मोन्स के रिलेशन की बातें, तो कुछ केसेस जो आपने देखे हैं जिनके जरिए हमारे सुनने वालों को मदद मिलेगी कि ये क्या सिम्टम्स थे और इनका क्या उपाय हुआ।
0: तो ऐसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और
1: जी
0: उदयपुर मेडिकल कॉलेज से मेरी अपनी पढ़ाई करी, तो जब मैं एक किसी कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे गया तो मेरे टीचर थे डॉक्टर DC शर्मा साहब, तो उन्होंने कोई पेशेंट उनके पास गया तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तो संजय तुम अगर ठीक समझते हो तो इसको वहाँ भेज देता हूँ। वो वहाँ पे आ गए पेशेंट, जब उन पेशेंट का हमने हिस्ट्री लेना शुरू किया तो बोला कि मैं पूरे सब जगह में गया हूँ, दिल्ली बॉम्बे सब जगह पर, कोई बीमारी का ठीक से पता नहीं चला। तो फिर वो पेशेंट हमारे पास आ गया, वो जब आया था स्ट्रेचर पे आया था, हमने उसको एडमिट करा और उसको हम धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन शुरू करें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हम 1-1.5 महीने में उसका बीमारी का हम पता लगाए कि ये बीमारी है, और दुनिया में उस बीमारी केवल उस टाइम में 25 केसेस थे, केवल पूरी दुनिया के अंदर,
1: इतनी दुर्लभ।
0: इतनी दुर्लभ। अब दुर्लभ बीमारी है तो उसका बारे में ज़्यादा पता नहीं है, दुर्लभ बीमारी उसका इलाज भी नहीं है, तो
1: जी
0: इलाज कैसे किया जाए?
1: जी
0: तो हमने उसको स्टडी करके एक प्लान किया कि भाई ये दवाई कोशिश करना चाहिए, और भगवान की दया से गॉड्स ग्रेस वो बीमारी के अंदर वो दवाई लग गई और चल गई, और वो पेशेंट हमारे पास से लेट के आया था और चल के गया। फिर उसका छोटा भाई भी आया, उसको भी यही बीमारी थी, वो भी ऐसे ही चल के गया, और उसके जब हिस्ट्री पूछा तो उसकी मदर, उसकी मामी मामा जी, उनको भी ये बीमारी थी। तो एक तरह से एक काइंड ऑफ जेनेटिक हो सकता है या एक एनवायरनमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो पेशेंट को हमने ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट किया और वो बिल्कुल ठीक होके गए।
1: महिलाओं में इस तरह के कुछ केसेस जिनका जिक्र आप करना चाहें।
0: महिलाओं में इस तरह की बीमारियों में अगेन मैं अगर बोन्स की बात करूंगा तो क्या होता है कि मीनोपोज के टाइम पे बोन्स खराब होना शुरू होता है,
1: जी
0: और अगर उनको पहले से कोई बीमारी अंडरलाइंग चल रही बोन की तो एकदम एग्जेसरबेट हो जाती है।
1: ओ
0: जैसे आपको ऑलरेडी मीनोपोज में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन चला गया, और आपको ऑलरेडी कुछ बीमारी है, जैसे हमारे एक पेशेंट थी सीलिएक डिजीज जिसको हम बोलते हैं वीट एलर्जी, मे बी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कॉमन है जहाँ पे वीट मेन डाइट है, साउथ इंडिया में उतना कॉमन नहीं होगा। तो उसमें उस लेडी को क्या हुआ कि 45 साल की उम्र में जब महीना बंद होना शुरू हुआ तो उसको अचानक बोन्स वीक होना शुरू हो गई, और बोन्स इतनी वीक हो गई कि वो बेड पे आ गई और उसकी मालिश करने से उसकी फ्रैक्चर हो गया हाथ का,
1: ये
0: मालिश
1: मालिश
0: करने
1: करना
0: से,
1: कितना गलत हो गया।
0: हाँ मतलब मालिश करने से ही फ्रैक्चर हो गया, मतलब हल्का ही किया होगा ये तो पता नहीं, बट उससे फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बोन्स इतना वीक हो गया। और
1: ओहो
0: जब उसको हम भर्ती करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें पता चला कि उसको वीट एलर्जी है, और वीट एलर्जी पहले भी होगी लेकिन जब महीना बंद होना तब वीट एलर्जी और महीना बंद होना दोनों साथ जुड़ गए, तो 1 और 1 2 की जगह 1 और 1 11 हो गया, और उसको फ्रैक्चर हो गया। उसको फिर एडमिट करा और उसका इन्वेस्टिगेट किया, उसका कुछ नहीं किया हमने, उसका केवल वीट बंद कर दिया,
1: जी
0: और वो 3 महीने बाद में हमारे

0: पास चलती हुई आई, तो पहले हम उसका वजन कम हो रहा उसके लिए इलाज कर रहे हैं, उसके मोटापे का इलाज करना पड़
1: तो
0: रहा
1: ऐसे दिलचस्प मामले भी आते हैं, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्मोन्स का असर
0: है।
1: हड्डियों पर भी पड़ता है, जो आज के इस कार्यक्रम का फोकस है।
0: बिल्कुल,
1: और डॉक्टर साहब, अब एक गाने पर फोकस किया जाए, आपकी पसंद का अगला गाना बताइएगा।
0: तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था।
1: क्या बात है, ये गाना सुनते हैं, चांद सी महबूबा हो, आनंद बख्शी साहब के ये बोल हैं, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बातें हो रही हैं हार्मोन्स और हड्डियों के कनेक्शन की, और आपने बताया कि किस तरह से बीमारी कुछ और है और उसको समझा कुछ और जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: ये आम आदमी के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती है जितनी डॉक्टर्स के लिए?
1: या एक्चुअली मैं कह सकता हूं कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं पर कुछ हद तक, बिकॉज बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होती है जिसके बारे में लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं होता है
0: जी
1: या उसका प्रॉपर रेफरल समझ में नहीं आता। उसका रीजन ये भी हो सकता है, अगर बीमारी पता नहीं तो कैसे रेफर करें, किसको रेफर करें। तो ऐसा डॉक्टर्स में भी हो सकता है, आम आदमी में तो होता ही है पर डॉक्टर्स में भी हो सकता है। और दूसरा, बोन्स की प्रॉब्लम का एक दूसरा दिक्कत उसमें है कि एक कहावत आपने सुना होगा, राजस्थानी में बोलता हूं मैं, बहुत मामे के भांजे भूखे रह जाते हैं, समझ गए।
0: जी
1: मतलब उसमें ऐसा होता है कि भाई वो भांजा उस मामा जी के यहाँ खाना खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, और अल्टीमेटली भूखा रह जाता है कोई। तो उसी तरह से हड्डी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट देखते हैं इसको। अब
0: जी
1: जैसे आपने बताया मीनोपॉज का जिक्र कर रहे, तो अभी ऑब्वियसली मीनोपॉज पे महिला गायनी वाले के पास जाएंगी।
0: जी
1: फ्रैक्चर की बात करें तो पर्सन ऑर्थोपेडिक्स वाले के पास चला जाएगा, और हो सकता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास आ जाए, या कभी कभी वो रिमेटोलॉजी की बीमारी से कंफ्यूज हो जाता है कि जोड़ में दर्द हो रहा है
0: संधिवात
1: शायद
0: जैसी कुछ
1: संधि है। तो
0: चीजें।
1: उस तरह से बंदा कंफ्यूज रहता है, उसको खुद तो पता नहीं होता कहाँ जाना होता है, तो वो फिर चक्कर लगाता रहता है। तो
0: जी
1: उसमें वो अगर सही डॉक्टर के पास पहली बार ही पहुंच गया तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं पहुंचा घूमते घूमते लास्ट में उस डॉक्टर के पास आया जिसका ये बीमारी है, तो उसमें उसको काफी टाइम लग जाता है और बीमारी काफी बढ़ भी जाती है, तो उसको फिर नियंत्रण करने के लिए भी थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाता है।
0: एक सही मार्गदर्शन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे को लगता है आपका ये जो प्रोग्राम आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हॉर्मोन्स एंड डायबिटीज, इससे हमारे श्रोताओं को काफी समझ में आएगा और वो सही जगह पे सही डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हड्डियों की बातें तो हमने की, अब दो चीजों की बातें मुझे लगता है कि करना चाहिए, एक तो डायबिटीज की बात और दूसरी थायराइड की बात।
1: बिल्कुल,
0: ये बताइए कि किन हार्मोन्स से ये तब्दीली आती है और किसी को थायराइड उभर के आता है, दोनों तरह के थायराइड, और इसको पहचाना कैसे जाए अर्ली स्टेज पर?
1: थायराइड हार्मोन का भी ऐसा होता है, ऑप्टिमम रहना चाहिए।
0: जी
1: अगर कम हो गया लेवल तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म,
0: जी
1: और अगर लेवल ज्यादा हो गया उसको हम बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म।
0: दो तरह के हो
1: दो तरह
0: गए।
1: के हो गए। अब इनमें हाइपोथायरॉयडिज्म काफी कॉमन होता है, ज्यादा कॉमन होता है, और जैसा कि हमने पहले भी बताया महिलाओं में काफी कॉमन

0: होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसका प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि पहले आज के कुछ सालों पहले ज़्यादा उसके बारे में ध्यान नहीं होता था। और उसकी वजह से क्या होता था कि माँ को तो प्रॉब्लम है पर बच्चे को भी प्रॉब्लम होता, होने वाले बच्चे को। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का टेस्टिंग और उसका इलाज बहुत ही ज़रूरी होता
1: ये
0: है,
1: बहुत याद रखने वाली बात
0: बहुत
1: है
0: ही
1: सभी
0: ज़रूरी होता,
1: श्रोताओं के लिए।
0: बिल्कुल। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में होता है, उसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, कि जैसे थकान हो रहा है, सुस्ती हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, किसी को भी कभी भी हो सकते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता कि क्या है। लेकिन इसमें बात ये कि अगर वो सिम्टम लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, कि आपको कब्ज रह रहा है, अभी 3 महीने 6 महीने से चलता जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ बीमारी हो सकती है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म एक बीमारी हो सकती है।
1: जी,
0: जैसे कि आपका चेहरे का एक, भगवान ने बहुत ही फीचर्स हमारे शार्प बनाए, अगर इन पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं लेकिन किसी की शक्ल एक दूसरे से बहुत कम मिलती है, तो ये जो कंप्यूटर भगवान ने जो बनाया चेहरे का कंप्यूटर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक दूसरी शक्ल नहीं मिलती है।
1: जी
0: लेकिन जब थायराइड डिसऑर्डर्स होता है, अगर वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है, मतलब बहुत ही हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सटेंसिव ग्रेड में पहुंच जाए, तो उसमें एक शक्ल एक धुंधली हो जाती है, जैसे आपने फोटो कोई खींचा है, फोटो हिल गया है, तो जो
1: जी
0: धुंधला हो जाता है, तो वो एक चेहरे की जो शार्पनेस है वो चली जाती है,
1: नूर चला जाता है।
0: या नूर चला जाता है, तो वो एक हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में सिम्टम्स कॉमन होते हैं, लेकिन अगर लंबे हो तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है। फिर
1: महिलाओं में भी इस समस्या को
0: महिलाओं
1: लेकर?
0: में दूसरी समस्या, उनका अगर महीने में कुछ गड़बड़ हो रही है,
1: जी
0: तो ये थायराइड की बीमारी की वजह से हो सकती है, तो इसलिए उसको जरूर से टेस्ट करना चाहिए, अगर गड़बड़ है तो, और इलाज होने से बिल्कुल ठीक हो जाता है।
1: क्या थायराइड की दवा जीवन भर खानी पड़ती है?
0: बहुत ही कॉमन सवाल है, सब लोग पूछते हैं। मैं ये बोलूंगा कि यस, 99.9% हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो 99.9% लोगों को, हमने एक ओपीडी में एक सील बनवा की रखी है
1: जी
0: कि लाइफ लॉन्ग फॉलोअप,
1: अच्छा, वो सील ही बना
0: सील लगा दी, क्योंकि अब
1: लिया
0: मरीज को कभी कभी बताना भूल जाते, तो सील लगा दी कि भैया उस पर रेड कलर में उनको पढ़ने को मिल जाता है कि इसमें लिखा हुआ
1: जी
0: लाइफ लॉन्ग फॉलोअप, मतलब बराबर लेना है।
1: बहुत ध्यान
0: कुछ,
1: रखना है।
0: हाँ, कुछ एक पेशेंट्स को रिवर्स हो जाता है, बट जनरली नहीं होता है,
1: ये कौन सा
0: क्योंकि
1: वाला है? हाइपो?
0: हाइपोथायरॉयडिज्म बात
1: जी
0: करें।
1: जी
0: दूसरा, इसका कारण क्या होता है, भगवान ने जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाई, उसकी कैपेसिटी बहुत बनाई है,
1: जी
0: जब तक उस ग्लैंड का 90% हिस्सा खराब नहीं होता है, काम करना बंद नहीं करता, तब तक वो बीमारी नहीं होती है।
1: ओके
0: तो अगर आपका जब बीमारी हो रहा था, इसका मतलब 90% पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर ग्लैंड की सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, तो केवल 10% बची है। अब वो 10% में कितना रिवाइव हो सकता है कुछ भी करने से, उसका कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो
1: जी
0: इसीलिए 90% डैमेज होने में टाइम भी लगता है, और अगर एक बार 90% डैमेज हो गया, आपको सिम्टम्स आ गए, तो फिर आपको ट्रीटमेंट लगभग लाइफ लॉन्ग ही लेना
1: और इस
0: पड़ेगा।
1: 90% डैमेज होने के सिम्टम्स नहीं होते?
0: वो धीरे धीरे होते हैं, कुछ कुछ
1: जी
0: होना शुरू हो जाते हैं, बट पूरा 100% नहीं होते हैं, कुछ कुछ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, आजकल जो एक इंपॉर्टेंस बढ़ गया रेगुलर चेकअप का, ईयरली
1: जी
0: ईयरली चेकअप में आपको उस बीमारी का पता चल जाता है कि आपका ये बीमारी एबनॉर्मल आना शुरू हो गया, और एबनॉर्मल आना शुरू होने के बाद में आप उसके पीछे लग करके इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चल जाएगा ये, तो आपको टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो फिर उसका दवाई का मात्रा भी उतना नहीं लेना पड़ेगा,
1: जी
0: नहीं तो जब 90% डैमेज हो गया तो दवाई का मात्रा भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अब रहा हाइपरथायरॉयडिज्म, जब ग्लैंड ज़्यादा है, तो इसमें उल्टा हो जाता है कि इसमें पसीना कम आता है, उसमें पसीना ज़्यादा आता है, उसमें वजन थोड़ा बढ़ सकता है, उसमें काफ़ी कम हो जाता है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें डायरिया होता है,
1: जी
0: इसमें कलर हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में उसमें कलर गहरा हो जाता है, डार्कनिंग हो जाती है, और इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म में आंखें बाहर आना शुरू हो जाता है, मोटी हो जाती है, उसमें आंखों पे काफ़ी असर होता है, तो वो भी एक उसका सिम्टम है। तो बहुत सारे लोगों का आंखें प्रोमिनेंट होता है, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, थायरॉयड हार्मोन के एक्सेस की वजह से हो सकता है।
1: तो ये सब जो सिम्टम्स हैं उन पर एक तो नजर रखनी चाहिए, और दूसरा आपने
0: बिल्कुल,
1: जोर दिया कि सालाना चेकअप करा लेना सबसे
0: हाँ,
1: अच्छा उपाय
0: मतलब
1: है।
0: जैसे 35 साल की उम्र के बाद में अभी गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई आपको कुछ कुछ टेस्ट कराने चाहिए, तो
1: जी
0: ऐसे ही खास तौर से उनकी पारिवारिक हिस्ट्री है थायराइड की बीमारी की, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान है, या कुछ जो सिम्टम्स हमने आपको बताए वो लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, तो उन लोगों को अपने थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, थायराइड की बात हमने की, डायबिटीज की बात अब कीजिए।
0: बिल्कुल।

0: बिना तो ये टॉक पूरा नहीं होना चाहिए।
1: तो बताइए कि ये जो मामला है।
0: डायबिटीज एक तरह से कभी किसी जमाने में इसको राज रोग बोलते थे। क्या
1: जी,
0: बोलते थे? राज रोग, मतलब ये
1: मतलब
0: राजा
1: बहुत
0: महाराजाओं
1: शाही
0: में
1: लोगों
0: होता
1: को
0: है, शाही लोग।
1: होता
0: अभी ये क्या
1: था।
0: हो गया? आम रोग।
1: जी
0: अब हर
1: हाँ,
0: किसी को डायबिटीज हो रहा है।
1: इंडिया एक तरह से डायबिटीज कैपिटल
0: आप
1: बनता
0: ये
1: जा
0: कह
1: रहा है।
0: सकते हैं कैपिटल बनता जा रहा है। ऑब्वियसली हमारे श्रोताओं के इसके कारण सबको पता है, बट
1: जी
0: मैं जस्ट इसको कोरम को कंप्लीट करने के लिए बोल देता हूं कि किस वजह से डायबिटीज ज्यादा हो रही है।
1: जी
0: तो एक कंसेप्ट होता है कि कुछ बीमारियां होती है जेनेटिक्स की वजह से होती है, कुछ एनवायरनमेंट की वजह से होती है। ये
1: बिल्कुल,
0: नेचर एंड नर्चर।
1: नर्चर
0: तो आपके एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो तो आपके एक्सपोजर से हो रही है, लेकिन आपको जीन्स की वजह से जो प्रॉब्लम हो तो पिताजी माताजी से आपको जो मिले उसकी वजह से होगा। तो इन जनरल हिंदुस्तान में ये जेनेटिकली वी आर डायबिटीज के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं, जेनेटिकली। और उसका बेस्ट आइडिया, जैसे आप दुबला पतला पर्सन है, उसको भी थोड़ा सा तो पेट निकला होगा। वैसे दुबला पतला लेकिन पेट थोड़ा निकला होगा। तो ये जो पेट निकला हुआ होता है ये एक तरह से आपका खराब हेल्थ का निशानी है। मे बी आज के 40 साल पहले लोग बोलते यार बहुत ही हेल्दी बंदा है, मोटा अच्छा खासा हट्टा कट्टा है वो, तो उसको हम हेल्दी बोलते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो गया वो हेल्दी नहीं, वो अनहेल्दी है।
1: जी,
0: तो जब इस तरह का ये जो पेट आगे निकल गया, ये जो प्रॉब्लम है ये एक तरह से प्रीडिस्पोज करता है डायबिटीज को। तो हम सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपका पेट नहीं निकलना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जो वजन बढ़ता है सबसे पहले यहीं बढ़ता है
1: जी
0: और सबसे बाद में यहां से जाता है। जो
1: जी
0: ट्रेन वाला सिस्टम है, जो ट्रेन लेट हो गई उसको लेट होती रहती है। तो ये भी इस तरह से है।
1: जी
0: तो वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अब वजन बढ़ना कॉमन हो गया आजकल, क्यों?
1: जी
0: कि हम खान पीने उधर, जैसे सिस्टर स्विगी और मदर जोमेटो 24 आवर्स खाना सप्लाई करता
1: अरे
0: है ना।
1: गजब। जी,
0: तो रात को 11 बजे भी खाना खा रहे हैं, 12 बजे भी खाना खा रहे हैं हम लोग,
1: ऐप के
0: तो
1: जरिए खाना मंगा रहे
0: ऐप
1: हैं।
0: के जरिए खाना मंगा रहे। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका खाने का टाइमिंग गड़बड़ हो गया, और खाने का टाइमिंग गड़बड़ होने की वजह से आपका वजन बढ़ जाता है।
1: जी
0: इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो अपने माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में ऐसे बोलते हैं कि सूरज के टाइम पे खाना खाना चाहिए, जब सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना। जैसे खास तौर से जैन समाज वगैरह में ऐसा होता है कि वो लोग सूर्यास्त हो गया तो खाना नहीं खाते, और सुबह में टाइम पे। तो उसका मतलब ये होता है कि आप खाना खाने के बाद आपको घूमने फिरने का टाइम रहता है थोड़ा, तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और आपने एक नया शब्द सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग,
1: जी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत
0: वो
1: ज्यादा चल
0: इस
1: रहा
0: पे एक चीज कहना चाहूंगे, हम लोग ना अंग्रेजों से बहुत सीखते हैं, अपने आप से नहीं सीखते हैं,
1: है।
0: ठीक है।
1: जी
0: अब इंटरमिटेंट फास्टिंग हिंदुस्तान में कोई नई चीज नहीं है।
1: जी
0: जैसे रमजान रखते तो हम लोग 12 घंटा खाना खाते, 12 घंटा भूखे रहते हैं,
1: हाँ
0: ठीक है। अब कुछ नवरात्र व्रत रखते हैं तो उसके
1: जी
0: अंदर अब दिन में खाना नहीं खाते हैं, आप फलाहार लेते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: ठीक है। तो पहले से कंसेप्ट है। या हमारी दादी नानी जो व्रत उपवास रखती हैं वो कॉमन है, उनको भी अमावस्या करेंगी, पूर्णिमा करेंगी, या और अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से होता है, मुझे वो दूसरों का उतना शायद पता नहीं। तो ऐसे फास्ट रखते थे तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती थी। पर अब क्या, जब अंग्रेजों ने बोला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो हमने उसको लपक लिया भी, अरे ये इंटरमिटेंट
1: जी
0: फास्टिंग होना चाहिए,
1: जी जी
0: जबकि हमारे कंसेप्ट में पहले से ही
1: ऑलरेडी
0: इंटरमिटेंट
1: है।
0: फास्टिंग है। तो ये एक अच्छा चीज हो सकता है कि हम ये एक हैबिट डेवलप करें कि खाने का हम टाइम फिक्स करें कि हम 7 बजे बाद नहीं खाएंगे। जैसे कुछ कंट्री के अंदर डिनर टाइम होता है, अगर आप उसके बाद डिनर के लिए ऑर्डर करोगे तो डिनर नहीं मिलेगा आपको।
1: जी,
0: तो उसका रीजन ये है कि आपको अच्छा हेल्थ रखने के लिए खाना टाइम पे खाना चाहिए। तो ये एक चीज अच्छा आपके डे टू डे हैबिट में हम कर सकते हैं। और मैं अपने श्रोताओं को एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ कि वो अगर अपना खाना शाम का खाना 7 बजे के पहले खा सकें और सुबह का खाना 8 बजे खाएं ब्रेकफास्ट से, तो आपका पूरा लगभग 12 से 14 घंटे आप भूखे रह गए। तो आप हर रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो
1: क्या बात
0: और उसका
1: है।
0: बहुत अच्छा असर होने वाला आपके हेल्थ के ऊपर में। कोई अगर इस चीज को 15 दिन भी करके देखेगा तो उसका मुरीद हो जाएगा कि मुझे यही सिस्टम करना चाहिए।
1: आपने जो बताया उसमें लंच नहीं है ना, उसमें सुबह
0: उसमें
1: 8 बजे
0: लंच
1: एक
0: आप,
1: ब्रंच जैसा कुछ
0: हाँ
1: है।
0: नहीं, उसमें आप लाइट लंच ले सकते हैं, कि जैसे
1: जी
0: आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में एक फ्रूट ले सकते हैं, एक सिंपल एक चपाती ले सकते हैं, या आधा एक सैंडविच ले सकते हैं, ऐसा लाइट रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर ऑफिस आवर्स में आप
1: कुछ ले लिया
0: कुछ
1: हल्का
0: लाइट ले
1: सा।
0: लिया, तो आपको 7 बजे फिर से भूख लग जाएगी, तो फिर आप खाना टाइम पे खा पाओगे।
1: यही हो गई इंटरमीडिएट फास्टिंग,
0: ये इंटरमीडिएट फास्टिंग
1: 12-13 घंटे की,
0: 12-13 घंटे होगी, आपकी सेहत बिल्कुल फिट रहेगी।
1: बिल्कुल। तो अब यहाँ एक गाना सुनते हैं,
0: हाँ,
1: और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
0: इसका गाना आप सुन, चांद सा रोशन चेहरा।
1: क्या बात है, कश्मीर की।

0: डॉक्टर साहब, आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, मैंने ठीक
1: बिल्कुल
0: बोला ना?
1: बिल्कुल ठीक
0: आप
1: बोला है।
0: मुझे ये बताइए कि आपकी जो शाखा है वो और क्या-क्या चीजें देखती है?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है और मेरे को जवाब देने में बहुत मजा आएगा।
0: अच्छा,
1: एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मल्टीपल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है
0: जी
1: और ये ग्लैंड्स टॉप से लेके बॉटम तक आपकी बॉडी में रहती है।
0: हाँ, ये बात हमें नहीं पता
1: तो
0: थी।
1: सबसे पहले मैं बोलूंगा तो ब्रेन में दो ग्लैंड्स होती है, तीन ग्लैंड्स होती है।
0: अच्छा।
1: एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, और तीसरी ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो आपका स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है
0: अच्छा,
1: कि आप कितने बजे उठ रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, कितने बजे सो रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, ये सब कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस होता है और एक पिट्यूटरी होता है, दोनों
0: जी
1: पेयरिंग
0: चलेंगे।
1: में काम करते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस एक तरह से पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और ये करीब 6 हार्मोन सिक्रीट करती है ब्रेन से,
0: जी
1: और ये 6 हार्मोन्स बाकी की बॉडी की रिमेनिंग ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड आता है, जिसमें आपका एड्रिनल ग्लैंड आता है जो कि किडनी के ऊपर होता है, जिसमें आपका ओवरीज होती है जो महिलाओं के अंदर अंडा
0: प्रजनन
1: बनाती
0: का
1: है,
0: काम है।
1: या और मेल में टेस्टिस होती है जो कि जहाँ से स्पर्म बनते हैं। तो इन सबको ये इसके ऊपर के थ्रू कंट्रोल करती है। तो एक तरह से आपका एक सिस्टम हो गया, एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी और फिर उसके बाद में सारी ग्लैंड्स,
0: तो पूरा शरीर कवर हो गया।
1: पूरा शरीर करोगे। उसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो रह गई है, एक है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो
0: जी
1: थायराइड के पास में होती है और उसका बोन पे बहुत इफेक्ट होता है,
0: जी
1: और एक पेनक्रियाज आपका जिससे डायबिटीज का रिलेशन है। इनका अभी ऊपर से कंट्रोल पता नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना कुछ कंट्रोल होगा, हम रिसर्च करेंगे तो मिल जाएगा, कुछ रिलेशन होना चाहिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्योंकि बाकी सब चीजें कंट्रोल हो रही तो ये कैसे कंट्रोल नहीं हो गया ऊपर से,
0: जी
1: ऐसा
0: जी
1: शायद होगा। तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो सारी की सारी पूरी बॉडी में है। तो अब बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम होगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास हो सकता है। इसलिए कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, जो MD स्टूडेंट्स, उनको एक बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जरूर भेज देना, हो सकता है कि वो बीमारी वहां से पता चल जाए कि इनकी क्या बीमारी है।
0: बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपने पैंक्रियास का जिक्र किया, इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में मैं आजकल यहां वहां काफी पढ़ रहा हूं, क्या ये बढ़ रहा है?
1: तो पेनक्रियाज का बीमारी सीधा सीधा डायबिटीज ही है एक तरह से, आप देखेंगे तो पेनक्रियाज से रिलेटेड डायबिटीज है। पेनक्रियाज का Type 2 डायबिटीज सबसे कॉमन है, तो डायरेक्टली उसमें नहीं होता, पर उसमें एक तरह से वजन बढ़ने से आपका जो इंसुलिन सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से वो इफेक्टिव नहीं रहता है। तो इसी तरह का कि आपके पास ताला लगा हुआ है, चाबियां बहुत सारी है पर कोई चाबी उसमें फिट नहीं हो रही है,
0: जी,
1: तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो आपका इंसुलिन तो बहुत है बॉडी के अंदर, लेकिन वो आपकी सेल में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो सही सिग्नल नहीं दे रहा वहां पे। ठीक है, ऐसे कमरे में जाना आपको, ताला की चाबी खोल के जाना, लेकिन आपके पास सही चाबी नहीं तो ताला नहीं खुलेगा। इसी
0: क्या
1: तरह
0: वजह
1: से
0: होती होगी?

0: ही आ
1: इसका
0: गया।
1: जरूरत है बिल्कुल।
0: डॉक्टर साहब, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस किस किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आता है? एक अधेड़ उम्र में पहुंचने के बाद जिस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उससे महिलाएं कैसे निपटें, खासतौर पर ये बातें बताएं।
1: अधेड़ उम्र में मैं ये बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो रोल प्ले करता है वो मीनोपॉज में जो चेंजेज होते हैं वही महत्वपूर्ण है। और उसमें ऐसा देखा गया कि जैसे मन उदास रहना है या काम में कंसंट्रेशन नहीं करना है या आपको अचानक पसीना आना है, घबराहट होना है, धड़कन बढ़ जाना है, ये सारा कुछ होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन सब चीज़ों का एक तो जानना ज़रूरी है। बहुत बार पेशेंट्स को हम बोल देते हैं कि भाई आपको ये बीमारी है, चिंता करने का जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाओगे। तो 50% पेशेंट ठीक हो जाते हैं कि यार पहले वो सोचें कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं है हमारे को। तो अगर उनको आप एक्सप्लेन कर देते हो कि भाई आपका बीमारी नहीं है, ये आपका जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं मोस्ट लाइकली आपका महीना बंद होने की वजह से हो रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, तो काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा। लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है क्योंकि उनको थोड़ा सीवियरिटी ज़्यादा होता है। तो सीवियरिटी ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को फिर आपको दवाई देना पड़ता है।
0: ये दवाएं हार्मोन्स की होती हैं?
1: हाँ, एक तरह से हार्मोन्स होते हैं। तो अगर बहुत पसीना आ रहा है, घबराहट, उसके लिए हार्मोन्स दे सकते हैं, बट वो भी एक प्रॉपर तरीके से सुपरविजन में होता है। तो इसमें गायनेकोलॉजिस्ट का भी काफ़ी रोल रहता है और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का भी रोल रहता है। तो ये दोनों मिलकर के इस तरह की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लिखते हैं।
0: क्या बालों का झड़ना जो है वो हार्मोन से जुड़ा हुआ है?
1: या फिर मैं आपको बोलूंगा कि ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ हार्मोन्स बहुत जरूरी है बालों के हेल्थ के लिए। क्योंकि बॉडी को क्या लगता है कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है उनका देख रेख करना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि जो बाहर की सुंदरता है। बॉडी को बाहर की सुंदरता से लेना देना नहीं है ज़्यादा। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले हार्मोन्स या बॉडी अपने इंटरनल जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है उनका देख रेख करेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और उसके बाद में बाहर की चीज़ों पर आएगी।
0: हाँ, तो एक पूरा बैलेंस होना
1: बिल्कुल, अगर बैलेंस
0: सही
1: नहीं
0: चलना
1: तो
0: ज्यादा जरूरी
1: है। जैसे थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम है तो बाल गिर सकते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन एक्सिस में तो बाल गिर सकते हैं। तो ये इस तरह के अगर उनका हार्मोन्स का इम्बैलेंस है तो ये प्रॉब्लम होती है।
0: जी डॉक्टर साहब, आप न केवल मरीजों को देखते हैं बल्कि आप एक प्रोफेसर भी हैं एक बहुत बड़ी संस्था, बहुत बड़े हॉस्पिटल में। तो ये दोनों चीजों का जो अनुभव है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इससे जुड़े कुछ दिलचस्प अनुभव हमारे साथ बांटिए।
1: या तो इसमें ऐसा है कि बड़े हॉस्पिटल में काम करने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम बहुत पेशेंट्स देखते हैं जो आम डॉक्टर्स उतने पेशेंट नहीं देखते हैं।
0: अमूमन आप दिन भर में कितने पेशेंट्स देखते हैं?
1: अमूमन पीजीआई चंडीगढ़ का जो मेरा डिपार्टमेंट है, एंडोक्राइन डिपार्टमेंट है, उसमें एक दिन के 1200 पेशेंट्स आते हैं लगभग।
0: अरे बाप, 1200?
1: हाँ, तो ये 3 दिन हमारा ओपीडी होता है, उसमें लगभग 1200 पेशेंट आते हैं।
0: जी,
1: तो ऑब्वियसली आप जितने पेशेंट देखोगे उतना आप सीखोगे,
0: अनुभव बढ़ेगा,
1: उसका आपका एक्सपीरियंस उतना होगा। आप कॉमन डिजीज तो देखोगे, बहुत रेयर से रेयर डिजीज भी देखोगे। आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा फ्यूचर में। आपने एक कोई पेशेंट देख लिया जिसका ये प्रॉब्लम आपने डायग्नोस कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम में जैसे ही वो पेशेंट है आप पहचान जाओगे, यार ये पेशेंट तो इस तरह का हमने देखा। तो हमारा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बहुत कई गुना ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू जो लोग दूसरी जगह काम करते हैं जिनको उतना पेशेंट एक्सपोजर नहीं है।
0: जी जी।
1: तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो रेयर डिजीज आप डायग्नोस करते हो, आप ट्रीट करते हो, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि यार हमने ये काम अच्छा किया है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो आपको इसके साथ साथ फिर उसके अलावा इंस्टीट्यूट में रहने से, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च जुड़ा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो रिसर्च करते हैं, तो हम नया कोई दवाई उसका ट्रायल करते हैं, कोई नया दवाई बनाते हैं, या बहुत बार अभी हम ऐसा भी करते हैं कि हमारी बहुत सारी इंडियन मेडिसिंस हैं उनके बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके हम बताते हैं कि ये दवाई काम करता है, इसको इस तरह से यूज करने से बेटर काम करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा एंगल है और मेरे को लगता है कि इस फील्ड में और ज़्यादा काम करने का ज़रूरत भी है, ताकि हम स्वदेशी चीज़ों का जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली सारी दवाइयाँ आई कहाँ से, नेचर से आई है। कोई भी दवाई आई पहले तो नेचर से आई, फिर उसको केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि हर बीमारी का इलाज
0: नेचर के जरिए
1: कहीं ना कहीं है। तो हमें जो हमारे हिस्ट्री में या जैसे हमारे यजुर्वेद है वो एक तरह से मेडिसिन का वेद है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो हमें वो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए उसमें क्या चीज़ है। तो हम उस तरह से कुछ कुछ फील्ड में काम कर रहे हैं।

0: ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी बताया उसके लिए हमने हड़ जोड़ करके एक प्लांट होता है, वो प्लांट का इफेक्ट हमने देखा है कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस।
1: क्या बात है।
0: हाँ
1: तो रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है
0: हाँ उसमें
1: मेडिकल की
0: एक
1: दुनिया में।
0: एक्साइटिंग है, जैसे वो इस तरह से एक्साइटिंग है जैसे आप सुबह सुबह उठ करके फटाफट ईमेल चेक करते हो, यार रात को क्या ईमेल आया देखते हैं क्या है ना,
1: जी
0: ऐसा
1: जी
0: लगता है ना कि आप उठ करके व्हाट्सएप देखते हैं, अरे कुछ मैसेज तो नहीं आया। तो इसी तरह से रिसर्च में आपको अगर इंक्विजिटिवनेस है, कुछ सीखना नया करना है, कोई बीमारी आपको पता है यार इसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आपको बहुत उसमें यू एन्जॉय दैट, और पेशेंट एक्सपीरियंस तो हाई है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो इस तरह के बड़े हॉस्पिटल जो इंडिया में तो रिनाउंड है पर बाहर भी कभी जाते तो दे वे लॉट ऑफ रेस्पेक्ट वर्किंग इन सच इंस्टीट्यूशंस।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहां कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जोधा अकबर का एक फेमस गाना है वो
1: जी
0: सूफी संगीत जो डांस कर रहे होते हैं उस तरह
1: हाँ
0: का,
1: हाँ
0: या दैट
1: हाँ
0: इज
1: वो
0: कहने
1: ख्वाजा
0: का
1: मेरे ख्वाजा,
0: ख्वाजा मेरे ख्वाजा। हाँ
1: क्या बात है, सुनते
0: या
1: राजस्थान कनेक्शन सामने आ रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बिल्कुल
0: राजस्थान
1: सुनते,
0: मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि सब रहा है तो
1: बिल्कुल
0: रहना ही चाहिए।
1: ये गाना सुनते हैं, राजस्थान से जुड़ा हुआ गाना
0: बिल्कुल
1: है।

0: बैलेंस होने का अगर अंदेशा हो तो महिलाओं को।
1: या तो मैं ये बोलता हूं कि दो कॉमन बीमारी जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, डायबिटीज और थायराइड।
0: जी
1: बाकी डिसऑर्डर्स है वो काफ़ी अनकॉमन है, मतलब उनको रूटीन टेस्ट का ज़रूरत नहीं है, वो आपको अगर डॉक्टर कहे तो कराना, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो दो जो बीमारियां कॉमन है, डायबिटीज़ और थायराइड डिसऑर्डर्स, तो इनके टेस्ट रेगुलर होते रहना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में ऐसा है कि 50% लोगों को डायबिटीज़ होती है पर उनको पता नहीं चलता है।
0: जी तो इसलिए टेस्ट बहुत
1: तो मायने टेस्ट
0: रखता है।
1: से ही पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास, जब डायबिटीज़ पता चलता था, बात है कि वो आंख का ऑपरेशन कराने के, तो आंख के डॉक्टर ने बोला अभी शुगर टेस्ट कराओ और शुगर आ गया, है ना। या कोई हर्निया का ऑपरेशन कराने गया और हर्निया के ऑपरेशन की चेकलिस्ट दी भी, ये टेस्ट कराओ, तो डायबिटीज का टेस्ट कराया तो आ गया। तो इसका मतलब है उनको डायबिटीज चल रहा था, उनको पता नहीं था। तो इसलिए आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कराएंगे तो बीमारी का टाइम पे पता चल जाएगा। तो डायबिटीज के रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, उसमें एक तो शुगर टेस्ट होता है, और एक होता है कि आपका एवरेज शुगर होता है 3 महीने में एक बार, जो 3 महीने का रीडिंग देता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C।
0: जी जी
1: तो ये दो टेस्ट आप डायबिटीज के लिए कर सकते हैं।
0: और सबसे आखिर में ये बात बताइए कि हार्मोनल इम्बैलेंस का पता चलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और इसका मैं जवाब ऐसे देना चाहूंगा कि जब मैं MD मेडिसिन कर रहा था तो मेरा पोस्टिंग CCU में लगा। कभी कभी ऐसा होता था कि मरीज को बचाने की बहुत कोशिश करते पर हार्ट की वजह से हम फिर बचा नहीं पाते, तो रात भर जग रहे पर पेशेंट तो चला गया। तो एंडोक्राइन इसका उल्टा है, अगर आपने बीमारी सही पकड़ ली तो इलाज होगा, बिल्कुल परफेक्ट इलाज होगा और बराबर चलेगा।
0: जी जी,
1: तो ये मतलब कोई ब्रांच खराब और अच्छा नहीं होता है, सबका जरूरत है, सबका वैल्यू उतना ही है। पर मुझे खासतौर से ये पसंद आता है कि इसमें ऑलमोस्ट हर बीमारी का हमारे पास इलाज है, और इसलिए हम बहुत बार मरीज को ये बोलते हैं कि तुम एक बार हमारे चक्कर में पड़ गए तो जिंदगी भर हमारे चक्कर में रहोगे, निकलोगे नहीं। तो उसका वही है कि जिसको एक बार एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो ऑलमोस्ट रहता ही है, तो रेगुलर दिखाना है और रेगुलर चेकअप कराना है। और थायराइड डिसऑर्डर्स को भी आपको रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए, उसमें T3 T4 TSH एक टेस्ट होता है।
0: जी जी,
1: थायराइड का ज़्यादा महंगा नहीं होता है, अगर एक हर साल नहीं तो 2 साल में 3 साल में एक बार करा लेना चाहिए, क्योंकि उसको भी इनिशियल सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने आज के इस कार्यक्रम में की हैं, और पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को बहुत सारी नई जानकारियां मिली होंगी और वो ज्यादा अवेयर हुए होंगे। तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय भदादा। विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और हमें इतना वक्त दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
1: धन्यवाद, और मैंने बहुत एंजॉय किया आपका डिस्कशन, एंड उम्मीद है हमारे श्रोताओं को पसंद आएगा और उनको कुछ को एटलीस्ट जो बोन रिलेटेड इशू है जो कि आपने क्वेश्चन की जरा हाईलाइट किया, उनको फायदा होगा उसे। धन्यवाद,
0: बहुत शुक्रिया। ये थी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदारा से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष वारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है।

0: फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.7 MHz पर। इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

जंगल और जानवर हैं तो कल है, इनके बिना ये जीवन बिल्कुल खलल है। चलो मिलकर ये संकल्प उठाएं, हर वन्य जीव और पेड़ बचाएं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युवाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। वर्ल्ड लोयन डे दोस्तों, हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। इस दिन को मनाने की मुख्य शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी। फ्रेंड्स, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये शेरों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास को बचाने और उनके सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं, जो उनके चैलेंजेज हैं, उनके प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। शेरों की जो घटती संख्या है और उनके संरक्षण के बारे में लोगों को बताना, अवैध शिकार, आवास का नुकसान और मानव वन्य जीव संघर्ष जैसी जो समस्याएं हैं, उन पर किस प्रकार से ध्यान आकर्षित करना है, वो इस दिवस का पर्पज रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र में जो शीर्ष शिकारी के रूप में शेरों की भूमिका है, उसको हम जाया नहीं कह सकते। अपने देश में एशियाई शेर मुख्य रूप से गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। वैसे बहुत से अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान में अलग अलग तादाद में इनकी उपस्थिति दर्ज है, लेकिन विशेष तौर पर हम बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, शेर ऐसा वन्य प्राणी है जिसकी दहाड़ करीब 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। शेर आमतौर पर दिन में करीब 20 घंटे आराम करते हैं और रात में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। बेजुबान है वह, उन्हें दर्द भी होता है। इंसान के स्वार्थ में हर जीव यहाँ रोता है। मत काटो वन, मत छीनो इनका घर, वरना ये सुंदर दुनिया हो जाएगी बंजर। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

दोस्तों, बात करते हैं बालिका शिक्षा की। जितने पॉजिटिव डिस्कस करें उतने उसके लिए कम होंगे, क्योंकि लगभग 1.5 दशक से बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन इसके तहत हमें नज़र आ रहे हैं। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी जो पहल है उसका महत्वपूर्ण योगदान हम मान सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में इस प्रकार की जो इनिशिएटिव थे उनको लेकर वास्तव में जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा परिवर्तन हम आसानी से देख सकते हैं। और निश्चित रूप से एक क्रांति जनमानस की सोच को मूल रूप से बदल सकती है, और बालिका शिक्षा में ये बहुत ही बड़ा पर्याय बनकर हमारे सामने आई है, जिसे हम अपने आसपास देख सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं, होने वाले परिवर्तन को पिछले समय से कंपेयर करके देख सकते हैं। भारत की बदलती तस्वीर बहुत ही बेहतरीन है और परिवर्तनकारी भी, विकसित भारत की दिशा में एक अच्छा कदम भी है फ्रेंड्स, क्योंकि बालिका शिक्षा महिला सशक्तिकरण की सबसे मजबूत नींव है। और जब इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं और उनका परिवर्तन देखने को मिलता है तो वास्तव में एक देश के विकास प्रगति उन्नति के लिए भी बहुत ही अच्छा साबित होते हैं। जब एक लड़की पढ़ती है तो वह न केवल अपने अधिकारों को समझती है बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार और समाज का भी भविष्य बदलती है। शिक्षा महिलाओं में आत्मविश्वास जगाती है और उन्हें हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर भी देती है। शिक्षा मिलने से लड़कियां नौकरी या व्यापार कर सकती है, वह पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती, जिससे कि आत्मनिर्भरता विकसित होती है। पढ़ी लिखी महिलाएं अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती है। आत्म

विश्वास में इस प्रकार से बढ़ोतरी होती है। शिक्षित महिलाएं अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखती हैं, जिससे कि स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार होता है। शिक्षा समाज की पुरानी और बुरी सोच को बदलती है, जिससे कि रूढ़िवादिता का अंत देखने को मिलता है। निश्चित रूप से दोस्तों, आज के समय की हम आवश्यकता कहें या बदलते भारत का एक बहुत अच्छा स्वरूप कहें, ये हमें इस रूप में देखने को मिल सकता है। बहुत सी ऐसी जो हमारे समाज की ज्वलंत समस्याएं थी, उसमें से एक जो बालिका शिक्षा की कमी है वो भी थी, जिसे आज हम लगभग लगभग उन्मूलित कर चुके हैं। भारतीय वायुसेना में बालिका शिक्षा ही महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार है। इसको भी हम बहुत अच्छे रूप से देख सकते हैं। जो समय पिछला बीता है उसमें अलग अलग प्रकार की अपडेट से हम इसे, हम यूँ कहें कि वेरीफाई भी कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ाने से लेकर वायुसेना में कमांडिंग ऑफिसर बनने तक का सफर तय कर रही है। आज वायुसेना रक्षा क्षेत्र के लैंगिक समानता और नारी शक्ति का सबसे बेहतरीन उदाहरण भी बनते हुए हमारे सामने हैं। दोस्तों, उच्च शिक्षा विशेषकर साइंस और मैथ्स के कारण ही अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, मोहना सिंह जैसी महिलाएं भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन सकी। साथ ही बीटेक और इंजीनियरिंग की शिक्षा पाकर लड़कियां वायुसेना की ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में अत्याधुनिक हथियारों और विमानों का जो रखरखाव है वो भी संभाल रही है। शिक्षित और योग्य महिला अधिकारियों को अब वायुसेना में पुरुषों की तरह परमानेंट कमीशन मिल रहा है, जिससे कि वह रिटायरमेंट तक देश की सेवा कर सकती है। और यह बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इस शिक्षा और इस बदलते दौर का। एक लड़की की पढ़ाई को लेकर हम बात करें तो विभिन्न स्तरों पर इंडियन आर्मी फोर्स में वो शामिल हो सकती है। अगर हम बात करें उसके एजुकेशन और इस प्रकार की एंट्रेंस परीक्षाएं या फिर स्कीम्स की, जिसके तहत वह इनमें शामिल हो सकती है, तो 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स के साथ वह NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश पा सकती है, फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर बन सकती हैं। ग्रेजुएशन के लेवल पर वह एयरफोर्स कॉमन एडमिशन जो टेस्ट होता है उसके तहत फ्लाइंग, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच सकती है। बीटेक इंजीनियरिंग के माध्यम से भी एरोनॉटिकल इंजीनियर जैसे पदों पर वह आसानी से पहुंच सकती है। अगर हम बात करें इसकी पात्रता की, तो एज क्राइटेरिया रहता है 16.5 वर्ष से 19.5 वर्ष तक ग्रेजुएशन स्तर पर NDA के द्वारा, और ग्रेजुएशन स्तर पर 20 वर्ष से 26 वर्ष तक, और अलग अलग प्रकार की जो वैकेंसीज है उसके तहत अलग अलग प्रकार से इसका क्राइटेरिया निर्धारित होता है, लेकिन लगभग इसी प्रकार के क्राइटेरिया के साथ इनकी भर्तियां आयोजित होती है। और निश्चित रूप से जो हाइट है वो भी इसमें वैल्यू रखती है, लेकिन वो सारी पात्रताएं कंप्लीट हो जाती है जब व्यक्ति उस ओर बढ़ता है और अपना उसी एक क्षेत्र को अपना टारगेट बनाते हुए आगे चलता है। दोस्तों, बात करें भारतीय नौसेना की, तो इसमें भी बालिका शिक्षा महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा आधार बनते हुए दिखाई दे रही है। उच्च शिक्षा के दम पर ही आज महिलाएं युद्ध पोतों पर तैनात हो रही हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, नौसेना में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नेतृत्व कर रही हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत नाविकों से लेकर अधिकारियों तक के सभी रास्ते महिलाओं के लिए खोल दिए गए हैं। उच्च शिक्षा की बदौलत महिलाएं आज युद्ध पदों पर तैनात होकर समुद्र में देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। नेवल एविएशन के तहत शिक्षित महिला पायलट डोर्नियर और टोही विमान उड़ा रही हैं, साथ ही नौसेना के हेलीकॉप्टरों में एयर टेक्नीशियन के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। नौसेना ने सबसे पहले अग्निवीर SSR और अग्निवीर MR के माध्यम से देश की साधारण पृष्ठभूमि से जो है आने वाली 10वीं और 12वीं पास लड़कियों को भी नाविक बनने का ऐतिहासिक अवसर दिया है। और इसी प्रकार के चेंजेज आने वाले समय में बहुत अच्छे बदलावों के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी, पहले सुनते हैं कार्यक्रम का ये सॉन्ग।

0: और महिला सशक्तिकरण की। भारतीय सेना इंडियन आर्मी में भी बालिका शिक्षा महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी है। शिक्षा और सही मार्गदर्शन के बल पर ही आज महिलाएं सेना में कर्नल और कमांडिंग ऑफिसर बनकर पुरुषों की टुकड़ियों का नेतृत्व कर रही है। सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में तैनात भी हो रही है। कॉम्बैट एविएशन लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी उड़ा रही है। अग्निवीर योजना और एनडीए के दरवाजे खुलने के बाद अब भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सैनिक स्तर पर भी बढ़ती जा रही है। उच्च शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के बाद कर्नल गीता राणा जैसी महिला अधिकारी आज चीन सीमा पर फॉरवर्ड मैकेनाइड वर्कशॉप की कमान संभाल रही है। साथ ही विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के दम पर कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी बन चुकी है। इसके साथ ही कैप्टन शिवा चौहान जैसी उच्च शिक्षित महिला अधिकारी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक भी पहुंच चुकी है, वहां तैनात होकर इतिहास रच रही है। दोस्तों, 10वीं और 12वीं पास ग्रामीण लड़कियों को भी अब अग्निवीर जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस के माध्यम से सेना में सीधे देश सेवा का मौका मिल रहा है, जो सबसे बड़ा बदलाव, सबसे अच्छा बदलाव भी साबित हो रहा है। इसके साथ भी इसके भी अलग अलग एज क्राइटेरिया, हाइट्स के पैरामीटर और शारीरिक परीक्षाओं के बाद इस प्रकार की अलग अलग सर्विसेज में महिलाओं द्वारा ज्वाइन किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए।
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण और युवा पीढ़ी का योगदान जो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है, और हम सब युवाओं की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी। युवा अपनी ऊर्जा नई तकनीकों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से जंगलों और वन्य जीवों को बचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जैसे वैश्विक संगठनों के साथ मिलकर पर्यावरण संतुलन और प्रजातियों की रक्षा के लिए लगातार अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं। निश्चित रूप से अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग इनिशिएटिव और अलग अलग NGOs के माध्यम से इस प्रकार के प्रयास निरंतर चलते आ रहे हैं, और दिन ब दिन इनको अपडेट करना, अद्यतन करना और इनमें बदलाव करते हुए समय के साथ चलना भी बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वन्य जीवों के अवैध शिकार और वनों की कटाई के खिलाफ अभियान चलाया जा सकता है। स्कूलों और कॉलेजों में नुक्कड़ नाटक, डिबेट और चित्रकला प्रतियोगिता के जरिए जागरूकता पैदा की जा सकती है, और उन बच्चों में बचपन से ही इस प्रकार के संस्कार को पुष्पित पल्लवित किया जा सकता है। वन्य जीव सप्ताह जैसे आयोजनों में भी सक्रिय रूप से भाग लेकर उन्हें इसके महत्व को बताते हुए, साथ ही आज के समय के बहुत बड़े चैलेंज के रूप में भी इनको परिभाषित करके आने वाली समस्याओं के प्रति अवेयर करते हुए इसे को रिलेट करके भी काफ़ी हद तक बच्चों में, जो स्टूडेंट हैं कॉलेज स्तर के, उनमें इस प्रकार की जागरूकता के द्वारा उनके मनोमस्तिष्क में इन सारे ज्वलंत मुद्दों के प्रति सक्रियता उत्पन्न की जा सकती है। प्रकृति और जीवन विज्ञान के छात्र कैमरे और नोटबुक्स की मदद से जंगलों की जैव विविधता का डेटा एकत्रित कर सकते हैं, और इस प्रकार के सर्वेक्षण दस्तावेजीकरण के द्वारा काफ़ी हद तक जो शोध हैं, जो अनुसंधान है, उनमें नए नए विकल्प भी खोजे जा सकते हैं इन सारी चीज़ों को बचाने से जुड़े। इसी के साथ जो वृक्षारोपण है और आवास सुधार है, उसके लिए भी कदम उठाए जाने जरूरी है। बंजर जमीन पर पौधे लगाकर वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को दोबारा हरा भरा बनाकर झीलों, तालाबों, आर्द्रभूमि वेटलैंड्स को साफ रखने के अभियानों में श्रमदान करके प्लास्टिक कचरे को

जंगलों के आसपास फैलने से रोककर जिससे कि बेजुबान जानवर सुरक्षित रह सके, इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण व जीव जंतु रक्षा समितियों से जुड़कर भी काफ़ी हद तक अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली संरक्षण पहलों और इंटर्नशिप कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर परिवर्तन को हम इस प्रकार से रूप दे सकते हैं कि ये चैलेंज आने वाले समय में कम हो सके। अब यहाँ सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

दोस्तों, अब बात करते हैं महिला सुरक्षा को लेकर। बहुत से कार्यक्रम, बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि राजकोप सिटीजन ऐप, महिला बीट अधिकारी योजना, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, वरिष्ठ जन संबल योजना, साथ ही साइबर सेफ्टी, महिलाओं से संबंधित कानून जिनके बारे में जानकारी, और अलग अलग प्रकार की महिला सुरक्षा संबंधी सुझाव, नवाचारों की भी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही महिला अपराधों में दी जाने वाली सजाएं भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों, अलग अलग प्रकार की हेल्पलाइन नंबर भी हमें अच्छे से ज्ञात होने चाहिए, जिसके द्वारा कि हम महिलाओं को सुरक्षा पहुंचा सकें।

या स्वयं महिला होने के रूप में सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, समय हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। आपकी दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुआ चाहते हैं। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

मिले जगत सुनने वाली सभी सखियों को रेडियो सखी डॉक्टर सुनीता का प्यार भरा नमस्कार। सखियों हाजिर हैं लेकर आपका अपना मन भावन कार्यक्रम, और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं चर्चा से। सखियों कई बार बड़ी उम्र हो जाती है और उसके बाद ये निर्धारित करना होता है कि गर्भ धारण किया जाए या नहीं, तो आम तौर पर जो है सुरक्षित हम नहीं मान सकते हैं अगर उम्र ज़्यादा हो जाए, परंतु फिर भी अगर डॉक्टर की देखरेख में अगर हम जो है बड़ी उम्र में भी गर्भ धारण करते हैं तो समस्या नहीं होती है। ये बहुत सोच समझ कर जो है किया जाता है बड़ी उम्र होने के बाद, और इस स्तर पर आते आते जो प्रजनन क्षमता है वो घट जाती है, और कई बार जो है गर्भ धारण करने में दिक्कत भी होती है, डायबिटीज़ उसका एक कारण बन जाती है, और जो है बहुत सारी दूसरी और चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। तो ये जो समय आने पर केवल और केवल डॉक्टर की देखरेख में ही जो है गर्भ धारण किया जा सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं होने के साथ साथ जो क्रोमोसोम संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी हो जाती हैं, लेकिन जो इसका पॉजिटिव जो रहता है वो रहता है मानसिक और आर्थिक स्थिरता इस उम्र तक रहती है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट करती है। नियमित जांच की ऐसा करने पर आवश्यकता होती है, और स्वस्थ खान पान की भी आवश्यकता होती है, और जो है IVF इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका रहता है, क्योंकि इसमें जो जांच है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। अगर महिला पूरी तरह से स्वस्थ है तो समस्याएं थोड़ी कम आती हैं, और अगर स्वस्थता का स्तर बहुत कम है तो दिक्कत ज़्यादा आती हैं। तो ये निर्भर करता है हमारी स्वास्थ्य संबंधी जो जांच होती है उसके बाद ही ये निर्धारण हो पाता है कि बड़ी उम्र तक आते आते जो गर्भ धारण करना है वो कितना सही है और कितना गलत है। फोलिक एसिड का जो है हमें डाइट लेते रहना चाहिए अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो, दूसरे मिनरल्स हैं, भोजन जो है खान पान है, पौष्टिक आहार है, वो हमें समय पर लेना ज़रूरी हो जाता है। आइए अब कराते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

सखियों, अब हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के बारे में। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री का अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाला कार्यक्रम है और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, कौशल विकास केंद्र और सामुदायिक भवन जैसी बुनियादी सामाजिक आर्थिक आर्थिक सुविधाओं का विकास करना है। अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2008-09 में इसको शुरू किया गया था, जिसे बाद में पुनर्गठित कर दिया गया और इसका नाम PMJVK जो है नाम दे दिया गया। इसका जो मुख्य फोकस रहता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केंद्रित परियोजनाएं, पेयजल, स्वच्छता कार्यक्रम, खेल और नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि रहता है। ये योजना अल्पसंख्यक बहुल जिलों, ब्लॉकों और शहरों में बुनियादी ढांचे के अंतर को कम करने के लिए काम करती है। बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम MSDP का पुनर्गठन भी किया गया है और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया है। 15वें वित्त आयोग चक्र यानी वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 25-26 तक जारी रखने की मंजूरी भी इसको मिल चुकी है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो है वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य है देश के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों को विकसित करना, बहुत सारी सुविधाएं वहां देना ताकि इन क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास हो सके और देश के बाकी हिस्सों के साथ समानता लाई जा सके। ये योजना 2018 में शुरू हुई और 22-23 में भी ये लागू है और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से परियोजनाएं जो है वो कार्यान्वित की जाती रही हैं। इसकी वेबसाइट की बात करें तो PMJVK.minorityaffairs.government.in जो है ये परियोजना है की वेबसाइट है। तो इस तरह से हमने ये योजना के बारे में जाना। आइए अब कराते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियों, ये तो सुना आपने गीत, और अब हम लेते हैं ब्यूटी टिप्स को। और आज हमने जो टॉपिक रखा है वो है हाई हील्स पहनते वक्त किसे हम ध्यान रखें, क्या हम करें क्या हम ना करें। सखियों, हील का शौक जो रहता है बहनों को कुछ ज़्यादा ही रहता है, और जब हाइट थोड़ी सी कम होती है तो फिर वो ज़रूरत सा लगने लग जाता है। और कई बहनों को शौक भी होता है, हाइट अच्छी है तो भी हील्स को पहनना अच्छा लगता है। कुछ हमारी ड्रेस ही ऐसी होती हैं जिनके साथ हील पहनने से वो जो ड्रेस है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि वो पहनते वक्त हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हाई हील्स पहनते समय हमें जो है सही साइज़ का चुनाव करना चाहिए, पैरों को अच्छे से मॉइस्चराइज हमें कर लेना चाहिए, और हील पैड या कुशन का अगर इस्तेमाल हम कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। चलने के लिए हमेशा पहले एड़ी और फिर पंजे पर जोर दें, क्योंकि पंजे पर जोर अगर हम ज़्यादा देंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है और हमारे पाँव में दर्द हो सकता है। हमें चाहिए कि पेंसिल हील की बजाय हम ब्लॉक हील्स को चुनें, जिससे कि हमारे जो पांव हैं वो ज़्यादा अच्छे से रह सकें। हमेशा अपने पैरों के सही साइज़ और अच्छी क्वालिटी के फुटवियर अगर हम खरीदते हैं तो जो हील है वो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं देती है। शुरुआती अभ्यास के लिए अगर हम पेंसिल हील की जगह आरामदायक ब्लॉक हील्स को चुनेंगे तो हम बेहतर तरीके से चल पाएंगे और हमें हील के साथ चलने की आदत भी हो जाएगी। हील्स पहनने से पहले पैरों पर क्रीम या मॉइस्चराइजर तो हमें लगाना ही पड़ेगा ताकि छाले ना पड़े। सखियों, हमें चाहिए कि पैरों के आगे के हिस्से के दबाव को कम करने के लिए सिलिकॉन इनसोल्स या जेल पैड आते हैं, उनका हम उपयोग करेंगे तो हमें नुकसान कम होगा। हील्स पहनकर हमें एक और छोटी सी सावधानी रखनी है। हमें हमेशा छोटे छोटे और सा जो है कदम रखने हैं और सामान्य गति से हमें चलना है। जैसे हील पहनकर

हम भाग भाग कर नहीं चल सकते हैं। अगर हम हील पहनकर भाग भाग कर चलेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। चाल का संतुलन हमें रखना ही पड़ेगा। चलते समय पहले एड़ी और फिर पंजे को जमीन पर रखना पड़ेगा। इसके लिए हम हील्स को बाहर पहनने से पहले घर में कुछ देर पहनकर चलने की अगर आदत डाल लेते हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमें चाहिए कि हम लगातार कई घंटे हील पहनने से बचें और बीच में पैरों को थोड़ा सा आराम जरूर दें। तो हमें जो सावधानियां रखनी है वो है, छोटे छोटे कदम लेने हैं हमें हील पहनकर, और सामान्य जो है कदम बढ़ाने हैं, और हील से हमें पंजे पर चलना है, और ज़मीन पर पैर रखते वक्त पहले एड़ी को रखना है और फिर पंजों को नीचे करना है। पोस्चर को हमें सीधा रखना है, चलते वक्त अपनी पीठ को सीधा रखना है और शरीर का संतुलन हमें बनाए रखना है। बीच बीच में अगर हम अपने पाँवों को आराम दे पाएँ कुछ देर बैठकर तो जो हील पहनना है वो हमारे लिए सही रह सकता है। सीमित जो है ऊंचाई हमें हील की रखनी है, 2 इंच से कम या अधिकतम 2 से 3 इंच तक की हील को ही हमें पहनना चाहिए। हमें ज़्यादा ऊंची हील नहीं लेनी चाहिए। ब्लॉक हील्स को हमें चुनना चाहिए, नुकीली जो रहती हैं हील वो ज़्यादा नुकसान करती हैं। सीमित समय के लिए हमें पहनना है और हील उतारने के बाद पैरों और पिंडलियों को हमें हल्का स्ट्रेच कर लेना है और हो सके तो थोड़ी मालिश भी कर लेनी है। आइए कराते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियों, अब हम चर्चा को जारी करते हैं। हम बात कर रहे थे कि हाई हील्स जो हैं वो हमें कैसे पहननी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और जो हाई हील्स हैं उनको पहनते वक्त हम क्या कर सकते हैं कि वो हमें नुकसान नहीं करें। तो कई महिलाओं द्वारा ऊंची एड़ी के जूते पहनने से कुछ समस्याएं आ जाती हैं। कई बार कमर दर्द होना शुरू हो जाता है, कई बार पिंडलियों में दर्द हो जाता है। तो ऐसी जब स्थिति हो तो चाहिए कि नुकीली हील्स को ना पहनकर हमें ऐसी हील्स को पहनना चाहिए जो पूरे पाँव में एक समान हो। हालांकि जो ऊंची एड़ी के जूते पहनने से कई बार शारीरिक मुद्रा भी निखरती है। ऊंची एड़ी के जूते पहनने से पैर, टांगे, कुल्ले और पीठ खींचते हैं और हिलते भी हैं, जिससे जो हमारा शरीर है वो ऊपर उठता है और हम अधिक अच्छे दिखते भी हैं और आकर्षक भी लगते हैं। तो हमें पहनना भी चाहिए, लेकिन सीमित समय के लिए पहनना चाहिए और पहनते वक्त हमें सावधानी रखनी चाहिए। हाई हील्स हमारी एड़ियों को शानदार उभार देती है, लेकिन इसकी कीमत हमारे पैरों की उंगलियों पर जो दबाव बढ़ता है वो हमें कई बार नुकसान करता है। इसलिए हमें इन सब बातों को ध्यान में जरूर रखना है और उसके बाद ही हमें हाई हील्स का उपयोग करना है। सखियों, घड़ी की सुइयां कार्यक्रम समाप्ति के समय की ओर इशारा कर रही हैं, तो रेडियो सखी डॉक्टर सुनीता को दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: संसद ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बहिस्साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा तब तक होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से नहीं खोला जाएगा। श्री बघाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।
4: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
3: आइए सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे। प्रोग्राम का पहला नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में है, फिल्म का नाम नील कमल।

मुकेश के गाए इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए विमला सांखला का गाया ये लोकगीत।

0: और इस गीत के साथ ही लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर का समय समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मेरी गुड़िया के नाम
2: पर दादी आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में जारी गतिरोध पर चिंता जताई, कहा सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा आवश्यक। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा सरकार का पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई विचार नहीं। प्रदेश में अब तक 87 लाख से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता बरकरार, हालांकि 19 जिलों में अब तक सामान्य से कम पानी बरसा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की है। श्री बिरला ने आज संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन में जारी गतिरोध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों पर सदन में चर्चा होना आवश्यक है, इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। आज संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री सदन में इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखेंगे। श्री रिजिजू ने विपक्ष से इस दौरान किसी तरह का शोर शराबा नहीं करने की अपील की।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गोपी ने बताया कि इस बारे में भविष्य में कोई भी निर्णय वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों तथा ऑटोमोबाइल निर्माताओं और तेल विपणन कंपनियों से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। 16वीं विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू होने वाले छठे सत्र के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने सत्र संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए आज बैठक की। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में विधानसभा परिसर में आगंतुकों के प्रवेश, सुरक्षा जांच तथा निर्धारित पार्किंग स्थलों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा है कि एक राज्य एक चुनाव से आर्थिक बचत और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इससे राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता तथा चुनाव के दौरान पारदर्शिता रखने में सहायता मिलेगी। श्री सिंह ने प्रदेश में होने वाले आगामी नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि समय पर चुनाव कराने के लिए व्यापक प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा ने बताया कि 39 जिलों में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में तथा फलौदी और सलुम्बर में 1 चरण में करवाए जाएंगे। इसी तरह पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 36 जिलों में 4 चरणों, 4 जिलों में 2 चरणों और जैसलमेर जिले में 1 चरण में होंगे। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति, जिला परिषद और

0: नगर निकाय सदस्यों के लिए ईवीएम से मतदान होगा, वहीं पंच और सरपंच का चुनाव मत पत्रों से होगा। विभिन्न देशों के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का दल इन दिनों उदयपुर में है। इस दल के सदस्य 16 अगस्त तक राजस्थान के विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर यहां की सांस्कृतिक विरासत को सोशल मीडिया पर दिखाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय के विशेष कार्यक्रम के तहत 18 देशों के 32 क्रिएटर्स कल राजस्थान पहुंचे। सबसे पहले ये झीलों की नगरी उदयपुर के विभिन्न स्थलों पर रील्स, ब्लॉग्स और वीडियो बना रहे हैं। ये पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प को करीब से जानेंगे, साथ ही स्थानीय कारीगरों से भी बातचीत करेंगे। इनका चित्तौड़गढ़ और गुलाबी नगर जयपुर भ्रमण का भी कार्यक्रम है। ये दल जयपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल होगा। इस प्रयास से राजस्थान की संस्कृति को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान मिलेगी। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 87 लाख से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 97% है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में एग्री स्टेक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एग्रीस्टेक संबंधी काम पूरे करने पर राजस्थान को अब तक 737 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मंजूर की गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि एग्रीस्टेक का उद्देश्य डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। इससे किसानों को उनकी जमीन, फसल और कृषि सेवाओं की जानकारी एकीकृत और आसान तरीके से मिल सकेगी। बैठक में कृषि विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि राजसमंद और सिरोही में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल लागू किया जा चुका है। उर्वरक खरीद में सुगमता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि राजकीय विभागों की खरीद प्रक्रिया में राजीविका उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने इन उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए मार्केट रिसर्च, गुणवत्ता, लॉजिस्टिक और तकनीकी सहयोग पर जोर दिया है। आज सचिवालय में एक बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों को रोजाना काम में ली जाने वाली वस्तुओं, थैले, स्टेशनरी, उपहार सामग्री और खाद्य उत्पादों की खरीद में स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजीविका उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाए। और अब मौसम। राज्य के अधिकतर स्थानों पर मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने कल बांसवाड़ा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ सहित 12 जिलों में बरसात का ऑरेंज अलर्ट बताया है। वहीं अजमेर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू और जोधपुर सहित 27 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। अगले 2-3 दिन मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। आज कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। इस बीच आज सलूम्बर जिले के कई इलाकों में रुक रुक कर रिमझिम बारिश हुई। बारह में सुबह से ही हल्की बारिश का सिलसिला बना रहा। दोपहर बाद करीब 1.25 घंटे जोरदार बरसात हुई। जल संसाधन विभाग के अनुसार 1 जून से अब तक प्रदेश में हुई बारिश सामान्य से लगभग 10 से 12% कम है। 8 जिलों में अत्यधिक, 14 में सामान्य और 19 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। प्रदेश के छोटे बड़े 693 बांधों में से 454 बांध आंशिक रूप से भरे हैं, 223 खाली हैं और सिर्फ 16 बांध ही लबालब हैं। झालावाड़ में कालीसिंध नदी उफान पर है, इससे नौनेरा बांध में तेजी से पानी की आवक बढ़ रही है। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आमजन से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। सावन के पवित्र महीने का आज दूसरा सोमवार है। महादेव की आराधना के लिए शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हुई है। साथ ही जल, दूध, बिल्व पत्र से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। शिव मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम बोले की गूंज है। पाली के सोजत में महिलाओं ने आज कावड़ यात्रा निकाली। सवाई माधोपुर के शिवाड़ में सहस्त्र घट और रुद्राभिषेक आयोजित किया गया, साथ ही भजन संध्या भी रखी गई है। घुश्मेश्वर महादेव, अर्णेश्वर, अम्बरेश्वर और सोलेश्वर सहित छोटे बड़े शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर के जगतपुरा स्थित गुप्त वृंदावन धाम में पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह मंदिर भक्ति और आध्यात्मिक चेतना तथा संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन का केंद्र बनकर उभरेगा। आज विश्व शेर दिवस है। शेरों की घटती आबादी और उनके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शेर संरक्षण की दिशा में मिली सफलता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश में साल 2015 में शेरों की संख्या 523 थी, जो बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। इस मौके पर उन्होंने वन्य जीवों और जैव विविधता की सुरक्षा का सरकार का संकल्प दोहराया। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो साझा किया। श्री मोदी ने शेरों के प्राकृतिक आवास को बचाने और शिकार तथा इंसानी दखल से उनकी रक्षा की प्रतिबद्धता दर्शाई है।
2: लायन है, हम हैं, हम हैं, तो लायन है कि भावना को निरंतर मजबूत किया। हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते, हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए।
0: हर घर तिरंगा अभियान से समूचे प्रदेश में देशभक्ति के रंग नजर आ रहे हैं। देशभक्ति के नारों और लहलहाते तिरंगों से वातावरण राष्ट्र प्रेम से सराबोर है। अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर लोग हाथों में तिरंगा लिए राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत कर रहे हैं। 12 में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं ने उत्साह के साथ तिरंगा रैली में भाग लिया। उधर चित्तौड़गढ़ में निकाली गई तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट्स और शहरवासी शामिल हुए। सलूम्बर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, पाली, करौली, बांसवाड़ा सहित अन्य स्थानों पर प्रभात फेरी और तिरंगा वाहन रैली का आयोजन रखा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में जारी गतिरोध पर चिंता जताई। कहा, सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा आवश्यक। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा, सरकार का पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई विचार नहीं। प्रदेश में अब तक 87 लाख से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता बरकरार, हालांकि 19 जिलों में अब तक सामान्य से कम पानी बरसा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जितेंद्र शर्मा। श्रीगंगानगर जिले में स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, स्वच्छता और महिला सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के काम जारी है। पदमपुर में आयुष चिकित्सालय का पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस चिकित्सालय से पदमपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को आयुष चिकित्सा सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी। जिला चिकित्सालय में कैथ लैब को मंजूरी मिल गई है। इसके शुरू होने से हृदय रोगियों को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी और दूसरे शहरों में रेफर करने की जरूरत कम होगी। इससे मरीजों और उनके परिजनों का समय और अतिरिक्त खर्च बचेगा। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 66,46,00,000 रुपए की लागत से 102 सड़कें बनाई जाएंगी। इनकी कुल लंबाई 211 किलोमीटर से अधिक है। अनूपगढ़, रायसिंहनगर, सादुलशहर, श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर और सूरतगढ़ क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों में मिसिंग लिंक और नॉन पेचेबल सड़कें शामिल है। इनके बनने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन बेहतर होने के साथ ही कृषि और व्यापार गतिविधियां भी आसान हो जाएंगी। श्रीगंगानगर शहर में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के पांचवें चरण में करीब 40 करोड़ 20 लाख रुपए के काम प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि इनमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन और जल निकासी, विरासत संरक्षण और पर्यटन तथा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े काम शामिल है। अधिकारियों

0: सम्मान मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरधर बेनीवाल ने ग्रहण किया। जिले को कचरा संग्रहण, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और व्यक्तिगत शौचालयों से जुड़े उल्लेखनीय कार्यों के लिए ये उपलब्धि मिली है। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने पिछले दिनों नई धान मंडी में किसानों के साथ संवाद किया। किसानों ने सिंचाई जल, फसल बीमा, डिग्गी, तारबंदी, उर्वरक और कृषि ऋण से जुड़े मुद्दे रखे। गंग नहर में सिंचाई पानी बढ़ाने और डिग्गी तथा फार्म पौंड के अनुदान में वृद्धि की मांग भी रखी गई। श्री चौधरी ने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। सप्त शक्ति कमांड की जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने श्रीगंगानगर, लालगढ़ जाटान और सूरतगढ़ सैन्य स्टेशनों का दौरा किया। उन्होंने नग्गी वॉर मेमोरियल पर 1971 के युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान सैन्य तैयारियों और प्रशिक्षण की समीक्षा की गई। जिले की गंग नहर की प्रमुख नहरों के आधुनिकीकरण और इनकी मजबूती पर 137 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करीब 154 किलोमीटर लंबी नहरों की रीलाइनिंग की जाएगी। इससे पानी की बर्बादी कम करने और नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में मदद मिलने की संभावना है। कर्णीजी नहर की रीलाइनिंग के लिए कार्यादेश जारी हो चुके हैं। और अब बात जिले की खेल उपलब्धि की। अनूपगढ़ के गांव 12 एबी के बसंत कुमार मेघवाल ने अमेरिका के ओरेगॉन में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.21 मीटर की ऊंचाई पार की। वे इस प्रतियोगिता की हाई जंप स्पर्धा में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद रा कामकाज माय अड़चन माथा चिंता जताई, कहो सदन माय जनता रा मुद्दा माथा चर्चा जरूरी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी कहो सरकार रो पेट्रोल माय इथेनॉल री मात्रा 20% बत्ती बधावन रो कोई विचार नहीं है। प्रदेश माय हाल ताई 87 लाखों बत्ता किसाना री फार्मर आईडी बनाई ची। और राज्य रा घनखर हल्का माय चौमासा री बिरखा, हालांकि 19 जिला माय हाल ताई सामान्य कम पानी बरसियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सगली सियासी पार्टियां रा नेताओं सदन री कार्रवाई ठीक ढंग चलावण माय मदद करण री अरज कीनी है। श्री बिरला सदन माय विपक्ष कान्यू करया जा रहा हंगामा माथे आज संसद भवन माय भी कार्य मंत्रणा समिति री मीटिंग माय चिंता जताई। वे कहो कि जनताओं जुड़िया मुद्दा माथे चर्चा जरूरी है, इंसारू सगना री मदद री जरूरत है। दूजिकानी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो कि सरकार विद्यार्थियों रा विरोध प्रदर्शन और इनू जुड़िया मुद्दा रा बारा माय संसद माय विगतवार चर्चा सारू तैयार है। वे गृह मंत्री अमित शाह कान्यू हर मुद्दा रो जवाब देवन रो भरोसो दिरायो। रिजिजू कहो कि जनता ने तथ्यां री जानकारी रो हक है। वह विपक्ष हूँ सदन माय अनुशासन बनायो राखण सागे सदन री कार्रवाई माय अड़चन पैदा नी करण री अरज कीनी। कार्य सलाहकार समिति री मीटिंग पाछे संसद भवन परिसर माय खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका रिजिजू विपक्ष हूँ सदन री कार्रवाई ठीक ढंग चालती रहवण माय मदद करण री अरज कीनी, ताकि गृह मंत्री अमित शाह विद्यार्थियों का नियम करीचिया विरोध प्रदर्शन रे बारा माय बयान दे सके।
2: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
1: इनु पहले राज्यसभा माय विपक्षरा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे विद्यार्थियों रा खिलाफ लाड़ला दिना करीची कार्रवाई माथे संसद माय गृह मंत्री रा बयान री मांग कीनी।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही

0: माइंड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी कहो है कि सरकार पेट्रोल माय इथेनॉल री तादाद 20% उम्बत्तीकरण रो कोई फैसलो नहीं लीनो है। राज्यसभा माय एक सवाल रा लिखित जवाब माय श्री गोपी बतायो के इंबारा माय आवता भगत माय कोई फैसलो वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन पाछे और मोटर गाड़ियां बनावन वाला और तेल बेचण वाली कंपनियां सागे बातचीत पाछे ही करो जावेला। राज्य री 16वीं विधानसभा रा 20 अगस्त नु शुरू होवण वाला छठा सत्र री तैयारियां रो जायजो लेवण सारू विधानसभा रा प्रमुख सचिव आज अहलकारां सागे मीटिंग कीनी। इस दौरान विधानसभा भवन परिसर माय आवण वाला रे दाखिल होवण री व्यवस्था, हिफाजती जांच और गाड़ियां उबी करण री ठौड़ समेत न्यारी न्यारी व्यवस्थावां रे बारे माय चर्चा करी छी। राज्य रा निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह कहो है कि एक राज्य एक चुनाव री सोचूं माली बचत सागे साधना ने बेहतर तरीकों काम लिया जा सकेला। वे प्रदेश माए आवता दिना फेवन वाला नगर निकाय और पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू अहलकारां सागे राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त कहो कि टेम सर चुनाव करावन सारू सगली जरूरी तैयारियां करी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग रा सचिव राजेश वर्मा बतायो कि 39 जिला माए नगर निकाय चुनाव 2 दौर माए जबकि फलौदी और सलूम्बर माए 1 दौर माए कराया जावेला। वे बतायो कि पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव 36 जिला माए 4 दौर माए, 4 जिला माए 2 दौर माए और जैसलमेर जिला माए 1 दिन माए कराया जावेला। राज्य निर्वाचन आयोग रा सचिव बतायो कि पंचायत समिति जिला परिषद और नगर निकाय रा सदस्यां रो चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रे जरिए जदके पंच और सरपंच रो चुनाव कागज माथा छप्योड़ा मतपत्रां रे जरिए करायो जावेला। न्यारा न्यारा देशां रा डिजिटल कंटेंट बनावण वाला और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आजकल उदयपुर माए है। 16 अगस्त ताई प्रदेश माए न्यारी न्यारी ठोणा रो दौरो कर और वठेरी सांस्कृतिक विरासत ने सोशल मीडिया रे जरिए बतावेला। पेश है एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय रा खास कार्यक्रम रा तहत 18 देशा रा 32 क्रिएटर काल राजस्थान पधारिया। सबु पहले आ झीला री नगरी उदयपुर री न्यारी नरी ठोड़ा रीला ब्लॉग और वीडियो बना रहा है। ये पारंपरिक कला और हाथरी कारीगरी ने करीबू समझेला। इस आगे ही वे वठेरा कारीगरा सागे ही बातचीत करेला। वारो चित्तौड़गढ़ और गुलाबी शहर जयपुर माए सैर सपाटा रोई कार्यक्रम है। ओदल जयपुर माए वेवण वाला स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम माए भी शिरकत करेला। ये कोशिश हूँ राजस्थान री संस्कृति ने न्यारा न्यारा प्लेटफॉर्म रे जरिए आखिर दुनिया माए नूवी ओलखाण मिलेला। समाचार कक्षों सलेहा गाजी।
1: ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। राज्य माए हाल ताए 87 लाख बत्ता काश्तकारा रा किसान पहचान पत्र फार्मर आईडी बना दिया गया है। आ तादाद तय करीजी तादाद रो करीब 97% है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए राखी जी एग्री स्टेक स्टीयरिंग कमेटी री मीटिंग माए आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि एग्री स्टेक उन जुड़िया काम पूरा करण पर राज्य ने हाल ताई 737 करोड़ रुपये री प्रोत्साहन राशि मंजूर करी जी है। मीटिंग माए कृषि विभाग री प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल बतायो कि राजसमंद और सिरोही जिला माए फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल लागू करियो जा चुको है। वे बतायो कि खाद री खरीदी माए आसानी और साफ कोई बधावण सारू इन्होंने बेगोई आखा राज्य माए लागू करियो जावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो है कि सरकारी महकमा री खरीदी रा काम माए राजीविकारी सदस्यां कानियों बनाई जिया सामान ने बधावो दियो जावणो चाहिए। वे आ सामान री बिक्री बधावण सारू मार्केट रिसर्च गुणवत्ता लॉजिस्टिक्स और तकनीकी मदद माथे जोर दीनो। आज जयपुर माए राखी जी एक मीटिंग माए मुख्य सचिव न्यारा न्यारा महकमा माए थैला स्टेशनरी उपहार सामग्री और खान पीन री चीजा सरीखा रोजिना काम आवन वाला सामान स्वयं सहायता समूह कानियों लेवण माथे जोर दीनो। रबे मौसम प्रदेश में एक घनखर ठोणा चौमासारी बिरखा वह रही है। मौसम विभाग काल बांसवाड़ा बारा भीलवाड़ा बूंदी और चित्तौड़गढ़ समेत 12 जिला में बरसात रो ऑरेंज अलर्ट बतायो है। अजमेर अलवर जयपुर झुंझुनू और जोधपुर समेत 27 जिला सारो येलो अलर्ट जारी करी चियो है। आवता 2-3 दिन मझलाऊ तेज दर्जारी बिरखा रा आसार है। आज कोटा उदयपुर और अजमेर संभाग में कठे कठे भारियों घनी भारी बारिश री संभावना है। इन बीच आज सलूम्बर जिला रा कई हलका माए रुक रुक कर बरसात रो सिलसिलो चलियो। बारा माए सवारे हल्की बारिश शुरू हुई। दोपहर पाछे करीब पौन घंटा ताई झमाझम में बरसियो। झालावाड़ माए काली सिंध नदी उफन रही है जिणु नौनेरा बंधा माए तेज यूं पानी आ रियो है। प्रशासन एहतियात राखता थका जनताओं सुरक्षित ठोणा जावण री अपील कीनी है। ए बीच जल संसाधन महकमा रे मुजब 1 जून उ हाल ताई राज्य माए हुई बिरखा सामान्य करीब 10-12 फीसदी कम है। 8 जिला माए घनी जोरदार 14 माए सामान्य और 19 जिला माए सामान्य कम बिरखा भी। राज्य रा छोटा मोटा 693 बंधा मायू 454 थोड़ा घना भर गया है। 223 रीता है जबकि केवल 16 बंधा पूरा भरिया है। सावन रो आज दूजो सोमवार है। इ मौके महादेव री भक्ति सारू शिव मिंद्रा माए संवारे हुई मोटी तादाद माए जात रूप उगण लाग गया। मिंद्रा माए जल दूध और बील रा पत्ताऊ भोलेनाथ रो अभिषेक करियो चार्यो है। पाली जिला रा सोजत माए आज महिलावां कावड़ यात्रा निकाली। सवाई माधोपुर जिला रा शिवाड़ माए सहस्त्र घट और रुद्राभिषेक रा कार्यक्रम राखी जिया और भजन संध्या राखी जा रही है। घुष्मेश्वर महादेव अरणेश्वर अमरेश्वर और सोलेश्वर समेत न्यारा न्यारा मिंद्रा माए जात्रुआ रो तांतो लागियोड़ो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा जगतपुरा माए गुप्त वृंदावन धाम माए पूजन कीनो। ई मौके वे कहो के ओ मिंदर भक्ति आध्यात्मिक चेतना और संस्कृति ने बचावन और बधावो देवन रो केंद्र बनेला। आज विश्व शेर दिवस है। शेरानी घटती आबादी ने ध्यान रखता थका वन बचावन सारू जाग जगावन बाबत ओ दिन मनायो जावे है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव देश माए शेरा ने बचावन रा काम माए मिली कामयाबी री सराहना कीनी है। वे कहो के देश माए साल 2015 माए शेरा री तादाद 523 ही जो 2025 माए 891 वेगी। श्री यादव सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो वीडियो साझा कीनो जिन माए श्री मोदी शेरा रा कुदरती रहवास ने बचावन और शिकार और इंसानी दखल और हिफाजत रो संकल्प रो दर्शाव कीनो।
3: सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते, हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए।
1: आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहा हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद रा कामकाज माए अड़चन माथे चिंता जताई। कहो सदन माए जनता रा मुद्दा माथे चर्चा जरूरी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी कहो सरकार रो पेट्रोल माए इथेनॉल री मात्रा 20% उम्बत्ती बधावन रो कोई विचार नहीं है। प्रदेश माए हाल ताए 87 लाख उम्बत्ता किसान री फार्मर आईडी बनाई जी। और राज्य रा घनखर हल्का माए चौमासा री बिरखा। हालांकि 19 जिला माए हाल ताई सामान्य कम पानी बरसियो। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
4: पापा लाइए 3,000।
5: क्यों भाई?
4: मेरी पॉकेट मनी।
5: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
4: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
5: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
4: अपना मोबाइल लाओ,
5: ले ले।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
7: हर लेन देन अब है आसान।
6: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?

0: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हम
4: अब आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतीबाड़ी।

खेती बाड़ी प्रोग्राम सुना सेंग भाई ने बया ने और आपने सुरेश भैया घना और हेत कोडू राम राम और भैया आज देख चारू मेर के भाई बादल हुए यार कटी कटी छाटा छिड़को हुए तो उम्मीद आया कि भाई नागौर के जगह आसे पैसे कसा गाँव माइन है जो 20 किलोमीटर के दायरे में देखा कि बरसात है जो बहुत ही कम है तो जगह एहलकार है जानकार है मौसम का आई के आने वाला 4-5 दिन नाम उम्मीद है कि जटे जटे मैं नहीं हुई पहली तो उम्मीद आ करा कि बटे हु जाए और ये तो भैया बातें होगी कि भाई मौसम की जानकारी और सब भाई आले मौसम की जानकारी रख ही है बात करा कि आप कहीं यान को व्यवसाय कर सका कि भाई आप खेती पर ही निर्भर नहीं रहवा खेती में जुड़ा और कई भी व्यवसाय है जगह आप धंधा है कर सका जगह मगर एक आप सब मोटी बात करा तो एक है डेयरी उद्योग डेयरी व्यवसाय कई भाई देखा गाँव में करे भी है आले चालू करियो भी है तो वो एक व्यवसाय है कि आप जरूरी कोनी कि आप मोटो खर्चो कर भी ने चालू करा आप कम खर्चे के मायन भी व्यवसाय ने आप शुरू कर सका जी हाँ भाई शुरुआत आप कर ली कि भाई 4-5 कोई भैंसिया या गया दूध आड़ी या जकी ले या बीहू धीरे धीरे आप जिया जिया मुनाफो बढ़े भी अपनी जकी पशुओं के रहने की व्यवस्था भी बत्ती कर सका और जगह पशुओं का संख्या बल भी आप बढ़ा सका आपके खुद की ब्यावी है तो बीहू भी आपने धन बढ़ जावे तो ओ जरूर ध्यान रखा और इम अगर आप बात करें कि कहीं कहीं मुख्य आप कदम है या अपन सही जो चीजा तो सब पहले तो आप ध्यान रखा कि नस्लां जबकि पशुओं की नस्लां हैं भाई आप छोकी चूज करा कि भाई यहाँ की चूणा नस्लां जबकि सब ज्यादा आपने क्यों आप व्यवसाय दूध ही बेचनू अपन तो ये वास्ते आप यहाँ की नस्लों को प्रयोग लेवा जबकि सब ज्यादा दूध देवे जबकि मैं आप बात करा तो सब अच्छी नस्ल की जगह गाया है बात करा जहाँ गिर हुए सहीवाल हुए एचएफ हुए ये सब ज्यादा दूध दिया करे और भैंसिया में करा तो भैंसिया मायन मूरा नस्ल की भैंस हुए जबकि सब ज्यादा दूध देवे तो यहाँ की नस्ल आप चूज करा जबकि आपने दूध ज्यादा हुए अब बात करा कि जगह तो चाहिए और जगह चाहिए तो आप एक तो यहाँ की जगह चुना जबकि अपनी हवादार हो एक साइड हवा भी आनी चाहिए बिंग माइन और साफ बी के आसे पासे आवेगा शेड अगर आप पत्थर लगा दिया तो ज़्यादा गर्मी पड़े तो आप जहाँ छपरा की व्यवस्था कर सका पन्नी वाला सर आवेगा छपरा भी बना सका और पेड़दार हुए कटिए आपने के भी कन्ने बनावा जहाँ मोटो पेड़ है नीमड़ो है कोई खेल दिए बी कन्ने शेड लगावा तो बी की भी पत्थर बच्चियाँ रहे तो पत्थर भी ठंडा रहे और आप बारे बांध नहीं चाहवा तो बारे भी बांध सका तो ये चीज़ा आप काम में ले सका और बी के बाद में चारे की व्यवस्था तो चाहिए थी तो अगर आपने ट्यूबवेल है जना अपन टेंशन है कोनी के भाई अपन चावा जान को चारो उगा सका आप खुद कोई सूखो चारो है जो को आप इकट्ठो करा बी की भी भंडारण की भी व्यवस्था अपन पूरी रखनी पड़ी क्योंकि अगर अपन 20 भैंसा है तो अपन चारों भी साल को नरोई चाहिए और आप क्योंकि इस टाइम सीजन में एक बार भी सारो मिले बाद में कई जगह देखा भाई प्रॉब्लम भी आ जाए मिले भी कोनी तो अपा पहले ही स्टोर कर लिया और बी के भंडारण वास्ते भी अपन शेड या कोई होल बनानु पड़ी जगह अपन सारो सुरक्षित रहे भिजे कोनी आंधी में खराब गुण हुआ और बी के बाद में पशुओं खान पान

0: खान पान में यह है कि भाई आप चारों वगैरह तो दे दियो भी के बाद में आप संतुलित एक आहार यान गोरा कहाँ जी हमें खड़े है चूरी है या दूध ज्यादा होने वास्ते फैट ज्यादा आने वास्ते कहीं करा के भाई नारियल देखा गाँव में नारियल का गट गट देवे खोपरा देवे जके भी कैल्शियम की आप मात्रा देवा जकी पशु आप कहीं दूध भी बढ़े और पानी जो पानी की व्यवस्था यहाँ की रखा पशु एनी टाइम भाई जना भी बिन प्यास लगी पानी पिलाओ कई बयान देखा कि भाई सुबह पादी हो भाई भूल का शाम तई तो कई जानवर यहाँ का सुबह पानी पिए भी कोनी भाई शाम का दोपहर पी लिए कई क्या का हुए तो अलग अलग हुए तो आप जरूर देखा पानी की व्यवस्था है जी प्रॉपर आप रखा कि भाई बिन दिन में तीन चार बार आप जरूर है ना चार बार तो पानी दिखावा दिखावा तो पशु पानी पी लिया और उसके बाद बात करें आप कि भाई लाइसेंस लाइसेंस अपन बहुत मुख्य जरूरी है तो अपना लाइसेंस है जो स्थानीय निकाय से ट्रेड लाइसेंस जो मतलब खाद्य सुरक्षा और FSSAI रजिस्ट्रेशन वो कराण अपन जरूरी है तो लाइसेंस आप जरूर लेवा नहीं तो आप की डेयरी है जी अवैध गिनी चली बीकी कोई गुणवत्ता कौन वेली क्योंकि न गुणवत्ता लाइसेंस भी गुणवत्ता मानेला कोई दूध की न कोई बात मानेला न कोई अपन प्रोडक्ट बीकी कोई वेल्युएशन रहेली तो बातें बयां गणी होगी पहले सुना एक काम की बात।
1: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेती बाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं तो नोट कीजिए हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
0: तो भया यही आ ही भाई सूचना और अब बात करें आप पाछा डेयरी उद्योग पर आवा कि भाई आप मुनाफो है और क्या बढ़ा सकें खाली दूध दूध की हुए को नहीं तो आप बी के दूध तो बेचा ही बेचा बी के साथ अगर आप पनीर घी दही ए जगह भी मक्खन बढ़े आप दूध दूँ बैंको भी अलग अलग आप व्यवसाय कर सका तो बैंको भी आप प्रोडक्ट अगर बढ़ाए आप अपने बाजार में बेचा तो भी आप फायदो है और बी के बजाय आप जकी बाजार घर हुए कोई जगह जरूरत हुए दूध की या डेयरी कोई भी डेयरी को आइटम सही जाए तो आप खुद सप्लाई कर सका खुद जार जगह जकी बीचली कमीशन खोरी है भाई उठे बच जाओ थाने वो डायरेक्ट मुनाफो है जो थाने मिल जाए तो आप सीधो ही सप्लाई देवा और पशुपालन विभाग जकी मिलने वाली सब्सिडी अभी को आप विशेष ध्यान रखा भी सब्सिडी को भी आप लाभ जरूर लेवा तो ए भैया बता ही कि भाई आप चावानी तो डेयरी उद्योग आप बहुत बढ़िया है जो आप आर्थिक विकास है जो कर सका एक खाली एक धंधो की खेती बाड़ी तो आप करा भी हाँ और साथ साथ अगर आप डेयरी उद्योग को भी करा तो भी आपने फायदो ही फायदो है। और अब भैया बातें करा तो एक में किसान भाई कन गियो आज धानो मन जल्लड़ गाँव कन तो बट में गोपाल जी मिलिया बे जकी मैंने हतावड़ी बताई कि भाई आप जो बारिश को पानी है वो इकट्ठो करना चाहिए जैसे आने वाले दिन में अपने जगह पानी कमी थोड़ी सी बची तो सुनो भया बंतल
3: भया जी अपन टाइम मिले अपन किसान भया जया करा और बेन दी हतावड़ी है थाते करिया करा पूगती आज मैं आयो हूं अटेनो देख लो नहीं तरनो गनो उत्तरादोर बने गांव है जलालड़ तो बटे किसान भैया करा ते राम राम सा
4: राम राम सा राम राम सा
3: काय नाम है सा
4: नाम गोपाल है सा
3: गोपाल जी अबार मैं निकली हुई मारे गए जना बार देखूं थे कि भाई निनान चाल रही है, बाजरी है, मूंग बैठा है, तो आ डिग्गी
4: हाँ
3: बनाई है साइड में खूने मैं अकद बनाई
4: डिगी अबार ही बने साये से
3: ऐसी बनाई कत्ता भाई कत्ता की
4: 120 भाई 120 है।
3: 120 बाई 120 की। तो अडिगी क्या वास्ते बने थे?
4: डिग्गी थी वास्ते बनाई के अटिने खेत की पूरे की ढाल है, तो बरसात ज्यादा हुए जो ज्यादा पानी हुए जो खेत में बेड़ो काई काम को पानी आपने इकट हो जाए
3: ठीक
4: वो
3: है हाँ
4: पानी
3: भाई पानी।
4: जमा कर लिया पाचो उन्याड़ा में कोई फसल बन जाए उन्याली
3: मतलब हियाले मायन उन्याले फाची उन्याली फसल हो जी।
4: फसल कर लिया जी सब गोल है जीरो है कोई पेड़ पौधा लगा हुआ तो बन पानी दी जाए
3: तो अटे ट्यूबवेलर एक होनी,
4: टूबेला को नहीं पानी खारो ऐसा।
3: ट्यूबवेलर तो हो जी लेकिन पानी खारो जहर है।
4: हाँ खारो जहर है जान हुए कौन
3: ओ मार जेकी एस बनाई हो जानते एसी सब गोल जिया जीरे के और आगे थाने तो ये अनुभव थोड़ी है कि सब गोल जीरो बायड हो कटे।
4: नहीं अनुभव तो भैया कौन नहीं बने आपने जिया तरनो सिलाई यार रिश्तेदार है बन पूछ लिया बाकी श्याम बटू बीज लिया वहां कहीं श्याम भाई अगर भी बाहर बीज लिया तैयारी कर ली।
3: तो जो मेरा जगह थे वो बरसात वालों पानी बच्चों तो उगी था गए एक तो भाई वो बच्चा लियो थे पूरा पानी बेड़ो कर लियो एक तो फूट रखे तू बाहर निकल तो
4: खेत तो बारे नहीं निकलते तो ये फसल खराब होती जी गुहार है इन पानी 24 घंटा पीड़ियो रही खेत में जाना वो मतलब खराब हुई
3: ज्यादा मतलब जद्दो ज्यादा पानी पड़ो ज्यादा पानी धान ही गल जिए।
4: बढ़ जी है।
3: तो ई
4: और
3: वास्ते के
4: पानी
3: भाई तो डिग्गी बना ली जगह आगे अपनी फसल भी उजीर पानी भी जगह अपन खेत में नुकसान हुए भेड़ो रहनो वो भी नुकसान कौन हुआ।
4: हाँ वेस्टेज कौन है खराब कौन हुआ पाचो आपने फसल उजी
3: तो ये खुदा ही थे किया कर भाई ट्रैक्टर हूँ जेसी पे हूँ ट्रैक्टर
4: ट्रैक्टर हूँ करे
3: हूँ खुदा ही कर भाई। तो पर ओ मीनू बिचानो पड़े ही मैं।
4: हाँ मीनू जया लाडनू मीनू यार मीनू बेचा दी
3: मीनू बिचा लियो तो ई पर अनुदान भी दिया करे सरकार थे फाइल ही लगे।
4: फाइल लगाई डी है अब देखो प्रोसेस चालू है तो साहब लोग आए जना आपको चौको कर
3: हाँ भाई दे अगर कत्तो अनुदान मिले जो को
4: हाँ बस सब्सिडी
3: वो दे जी। हाँ भाई भी ऐसा ही है। तो अब ऐसे अब इको जिया चालो आदिगी था बरीज की बार देखो काशा पानी भी आयो है हाल बरसात आगे घनी पानी बरीज भी जाए है। तो
4: हाँ
3: इन जकी थे खेती करो तो भी खेती के मायन अब यू लाइट की व्यवस्था किया करो पानी काटो किया पानी में सिंचाई की
4: देखो
3: व्यवस्था।
4: सिंचाई की व्यवस्था ट्रैक्टर भी कर दिया वाटर पंप को लगा और नीर कोई सिंगल फेस कनेक्शन ले जा
3: हाँ
4: सिस्टम तो हगलो ही है तो ट्रैक्टर भी पा सका आपनो खेतो।
3: हाँ मतलब ट्रैक्टर वाटर पंप।
4: हाँ वाटर पंप
3: हाँ। तो ये
4: ट्रैक्टर
3: वास्ते अगर आप कम पानी लगानी चाहोगे भाई आपने तो ही सीमित साधन है कोई ट्यूबवेल पर लोगों देखा डिग्गी वे देना कन्ने ट्यूबवेल पास डिग्गी भरिए या मिक्स करिए
4: हाँ हाँ
3: पानी थागन जिया अतो ही सोर्स है वो पानी को आ डिग्गी में। तो ये वास्ते से बूंद बूंद ट्राई कौन करो।
4: बूंद बूंद को विचार तो करा भी पर भी अनुदान है जो को देखा करा
3: हाँ
4: कोशिश बूंद बूंद की फायदा तो रहे बूंद बूंद तो कम पानी लागे हाँ
3: बूंद बूंद देखो पानी कम लागी बीज की लागत भी कम आई
4: बचत
3: और
4: है
3: खाद
4: हाँ
3: जो ना वह भी कम लागी। तो अबार ऐ जकी बाजरी गुआर थांगे देसी बीज एक शंकर बड़ा है
4: देखो बाजरी तो शंकर ही है
3: ठीक है।
4: और मूंग ग्वार है जो को माँ को घर कोई बीज है अभी बोई बीज हाँ
3: देखो घर कोई बाजरी शंकर भी जुड़ी है
4: बाजरी शंकर
3: तो निनान पानी चालू है कि कर लिया कहीं। हाँ
4: पानी हड़िया कर ली कचरा काटा
3: हाँ
4: बरसात
3: हाँ
4: बाहर
3: हाँ
4: चालू है 4-5 दिनों बढ़िया बरसात साल रही है
3: बढ़िया बरसात हुए बार देखा नहीं कि भाई कई बार बड़े रखे अगर एक में लास्ट में लांची भी पड़े एक में की
4: बहुत तो
3: तो अगर
4: हड़िया
3: लांची पड़ी तो डिग्गी मुंह पा सको इन धान ने। हाँ
4: पास काम का ही आपने पानी आयोडो है पास काम का ही तकलीफ है
3: हाँ भाई बाजरी के मायने या गुआर में तो केमी पानी खुलो डोल सको
4: तो
3: पास
4: पानी
3: सको।
4: है आराम पास काई ने मूंगा ने बाजरी ने गुआर ने किनी पवन
3: तो कोई भाई आपने बार हते उणी के भाई ओ पानी तो जगो आपने वर्षा जल संरक्षण करनो बहुत जरूरी है कि भाई घरा तो आपा गांव में देखा हो तो घर घर में बिंजड़ा है आपा बच्चा
4: हाँ
3: हुई
4: घर
3: है
4: में हो दे आपने
3: घर घर में हो दे। अब
4: हाँ
3: आ डिग्या लो जो एक है ना ओ भाई सरकार भी कहे हगड़े भी कहे कि पानी वो भेड़ो करो बचाओ खेती करो या कहीं भी आगे काम में लेवा तो
4: हाँ
3: बढ़िया फायदा वालो काम है।
4: वो तो एक नंबर काम है साहब इन
0: हाँ
4: काई निशान आपनों काई लागे आ दिगी बना दी गवर्नमेंट सब्सिडी जेवे।

0: पर
1: हाँ
0: और पानी भेड़ो उजिए, पाची फसल उजिए, इनमें फायदो ही फायदो है, नुकसान का है।
1: नुकसान की कोनी, फायदो फायदो है।
0: हाँ
1: वासा गोपाल जी, आप बहुत बढ़िया जानकारी दी, आपको घणो घणो धन्यवाद। राम राम सा।
0: राम राम सर।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: तो भैया गोपाल जी, एक बात बताइए कि भाई डिग्गी बनाई तो आप जरूर इम ज्यादा ज्यादा है जो बारिश वालो पानी है भी आप बच्चावा, देखा घर में गाँव में हो तो है ही सब गई, लेकिन खेता में भी आप व्यवस्था कर लिया, डिग्गी बना लिया जखो गए कि दो फायदा हो जाओ अपन। एक तो ये जगह ज्यादा पानी हुए जगह अपनी फसल खराब हुए बी को नुआ करे, कई बार देख लिया धोरा भी टूट जाए पानी दूसरे खेत में भी जाता रहे तो कत्ती फसल और कत्तो नुकसान हुआ है। तो डिगी बना लिया भी पानी आप चाहो जब आप जखी अगल उन्याली फसल आप काम में ले सका, और ये आनगी नहीं उजा कि लास्ट में एक मेन नहीं हुए तो आप भी पानी पिला सका तो वो पानी काम में ले सकता, तो आप ज्यादा ज्यादा वो काम करा। और अब बात करें आप मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, एक योजना है भैया जगह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अपन 6,000 तो मिले ही मिले। अब कई राज्य सरकार यहाँ को लिया डूगी इनके साथ साथ आपकी तरफ भी क्या राशि है जगह जोड़ दी, तो कई राज्य में अलग अलग राशियां कई में 6 है कई में 3 है, तो आपा है जो इस योजना को लाभ जरूर उठावा। इनमें साथ साथ आपनों मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में भी नाव है जो कि आपनी जमीन जुड़ावा जगह आपने जो कि अतिरिक्त लाभ है जो को और मिल बोरे। तो भाई कई अब आपकी आपकी धुन डेकोरी की गीत बदन को ना तो मैं भया आ थाने सुनो बुंदू खान एंड पार्टी रो घेड़ो पणिहारी।

तो भैया अब बात करा बाजार भाव की, तो आज नागौर मंडी मूंग बिक्या है 5500 लेर 7400 तई, और गुवार बिक्यो 5000 लेर 5831 रुपया। बात करा जीरे की तो 17000 लेर 20800 रुपया ऊंचो ऊंचो बिक्यो है। सूप है जिकी 7000 लेर 12500, इसबगोल की बात करा तो 9000 लेर 11500, और असाड़ी है जो को 5600 लेर 6000 तई। और बात करा दाना मेथी की तो 5700 लेर 6200, और सिंध सू है जो को 6000 लेर 7500। तारमीरो भैया बिक्यो है 5500 लेर 6250, और जवार है जगह 4500 लेर 5000, और काला तिल है जगह 9000 10800, और सफेद तिल की बात करा तो 9000 नहीं 10000 लेर 11500। चना की बात करा तो 5000 लेर 5700 रुपये बिक्या है। सरसों की बात करा तो 40% फेट आवे वो बिक्यो है 8000 रुपया। तो अगर पहन लगे कि जींस अपने भाव सही है दाना का तो यार बेच सको। और इसके साथ ही अब घड़ी में देखा तो खेतीबाड़ी को टाइम हो रही हो पूरा, तो आपके सुरेश बीरेंद्र सीख करा राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं
2: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही

0: नम्र होकर झुक जाता है। और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं, लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है,
0: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई।
1: जी,
0: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिख रहा हो। बहुत अच्छी कहानी थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की। कोई नाराजगी है तो माफ करें।
1: तो राजेश जी आपको कहना चाहते हैं, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया।
0: जी, कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर,
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है।
0: अजीत जी, विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक, पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों।
1: जी,
0: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का, और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
0: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
0: ये नारा दिया था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। AI के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
1: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गाँव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
0: इसका उत्तर है, मावलीनोंग गांव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
1: तो श्रोताओ, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
1: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम,
1: वीर कुंवर सिंह।
0: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहाबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
2: हमका सिपाहियों के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जरा डालो।
3: '1857 भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था।

0: और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
1: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड?
0: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
2: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सत्रह सौ सतहत्तर ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
3: सुना तुमने?
4: क्या?
3: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
4: हैं?
3: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
4: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
3: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
4: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
0: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपते सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
5: बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह, अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो, अब हमार कुंवर सिंह का करी?
6: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ,
7: ऐसा चाहिए कि जिसके बारे में जान सब से
3: बात। हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है। अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या आदेश है?
8: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबा

0: आज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
1: भैया, सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है। अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
0: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
2: जी हुजूर,
0: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिले।
2: जी हुजूर।
0: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
3: July 26, 1857 आरा में कुंवर सिंह की कोठी। चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
0: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सबने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए, सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है। शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
4: अमर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हरकिशन सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
3: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
5: साथियों, आप सबने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं रहे। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं। अब जंग शुरू होती है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, भारत माता की जय।
3: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
6: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर

0: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
1: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।

ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में, दाया हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ आज, तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जानवी को मानो नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
1: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
2: ओह माय गॉड, देखाओ शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
3: यस सर।
1: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोक गीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह, और आइए अब सुनते हैं ओज और वीर रस से परिपूर्ण सुंदर कविता वीर तुम बढ़े चलो।
1: हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों और युवाओं को साहस, संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हों।
0: जी,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर तुम बढ़े चलो। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.7 MHz पर। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संसद समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध व्यक्त करते हुए सदन से वॉकआउट किया। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्षी सदस्यों के बीच हंगामे के बीच इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में

बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र की इस जरूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेन देन के सिलसिले में कागजी रिकॉर्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और इसमें डिजिटल रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं था। अब डिजिटल रिकॉर्ड मान्य होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। चर्चा में बीजेपी के मानस रंजन मंगराज, भाजपा के अरुण सिंह और शंभू शरण पटेल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबीदुरई और डॉ एम धनपाल, रंकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेदेपा के भाष्यम रामकृष्ण, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, द्रमुक सदस्य एल के सुधीश और शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित कानून में बैंकर्स बुक्स या बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉक्टर कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादिक, बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजेपी के सुभाषीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंता कायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कल पुर्जे ऐसे हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनियों को कर छूट देने का प्रस्ताव है। यह छूट वर्तमान में 5 साल के लिए उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक करने का प्रस्ताव है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्व में भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में UPI लेन देन करने वाले पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। UPI पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांवैधानिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, डॉ मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुजीत कुमार, बाबू भाई जयसंग भाई देसाई, दर्शना सिंह, डॉ धर्मशीला गुप्ता, डॉ दिनेश शर्मा, अधिकारी मायूम शारदा देवी, केसरी देव सिंह झाला, डॉ कल्पना सैनी और रेखा शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। बाद में उच्च सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक राजधानी दिल्ली में
पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर

0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण तीन बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद
1: स्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की। सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉक्टर के लक्ष्मण और बाबू भाई जयसंग भाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधाकृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर होता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में 3 अन्य विधेयक खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृहमंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने आसन के समीप आकर

0: कर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार हैं तो सदन की कार्यवाही चलनी देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एन के प्रेमचंद्रन थे जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी दो मिनट अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी सदन में पेश किया गया जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: This is आकाशवाणी
2: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। पेश है प्रोग्राम दिल से, सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत। इस गीत की फरमाइश की है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डोली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। आप सब ने सुनना चाहा है एक फूल दो माली फिल्म का गीत, आवाज मन्ना डे की। तो पेश है आपकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, आप हैं रिंगणी छत्तीसगढ़ से। आपने मौसम फिल्म का गीत सुनना चाहा है। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आप हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। तो सुनवाते हैं आप सभी को मौसम फिल्म का ये नगमा।

प्रोग्राम की अगली पेशकश पसंद किया इस गीत को वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा बागपत उत्तर प्रदेश से आप हैं संजय ढींगिया नमन ढींगिया और अपार ढींगिया आप सभी की फरमाइश पर निगाहें फिल्म का गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं आपने व्हाट्सएप किया है इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत

0: अभी आप सुन रहे थे सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। विविधा के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं एक झलकी, जिसका शीर्षक है ये तेरा घर से मेरा घर।
1: चम्मो की अम्मा, अरे भाई कहाँ हो तुम?
2: कब से चिल्ला रहा हूँ और तुम्हारा कुछ भी पता नहीं?
3: ओफो, क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? कहाँ जाऊंगी तुम्हारा ये घर छोड़कर? और देखो जी, ये मुझे चम्मो की अम्मा कहकर मत पुकारा करो।
2: चम्मो की अम्मा न कहूँ तो क्या कहूँ? अब अम्मा तो चम्मो की तुम ही हो, कोई और तो नहीं? तो फिर चम्मो की अम्मा तुम्हें ही तो कहूंगा ना।
3: देखो जी, मेरे माता पिता ने मेरा कितना प्यारा नाम रखा था, गुलाब, और मैंने अपनी बिटिया का नाम रखा चंपा, तो तुम मुझे गुलाब कहकर नहीं पुकार सकते क्या?
2: देखो भगवान, अब इस उम्र में मैं गुलाबो गुलाबो चिल्लाता अच्छा लगूंगा क्या? जरा तुम ही सोचो, अड़ोसी पड़ोसी क्या सोचेंगे कि मेरा दिमाग चल निकला? यही चाहती हो ना तुम?
3: मैं क्यों चाहूंगी, कोई दुश्मन ना हो जी तुम्हारी। और गुलाबो क्यों पुकारोगे, सीधे सीधे गुलाब नहीं कह सकते क्या?
2: अब क्या कहूँ।

0: गुलाब कहलवाने की उम्र गई तुम्हारी।
1: अच्छा जी, गुलाब कहलाने की तो मेरी उम्र गई और गुलाबों कहलाने की तुम्हारे हिसाब से बाकी है।
0: वही तो, अब बड़ी समझदार हो तुम जो झट समझ गई। अब कहना तो नहीं चाहता था, पर अब तुम सुनना ही चाहती हो तो भाई सच तो यही है कि गुलाबों कहलाने वाली उम्र भी गई तुम्हारी।
1: हाँ, मेरी तो कहलाने की उम्र गई, पर तुम्हारी तो पुकारने की बाकी है ना भी।
0: अरे भाई, शेर तो शेर ही रहता है।
1: वाह रे शेर, बिना पंजों और दांतों वाले, शीशे में कब से मुंह नहीं देखा।
0: रहने दो रहने दो, अभी तो मूछें तराशते वक्त देखा था। अब मान भी लो कि अब भी मैं अच्छा खासा बांका जवान दिखाई देता हूँ।
1: हाय रे बांके जवान, चश्मे का नंबर सुधरवा लो वरना किसी दिन बुरी बीतेगी।
0: जब देखो कांटे चुभाती ही रहती हो।
1: चलो, मुझे गुलाब तो माना तुमने,
0: अब मैंने कब माना?
1: अभी तो कहा कि मेरे कांटे तुम्हें चुभते हैं, अब गुलाब के संग कांटे तो होंगे ही।
0: अरे बाहरी खुशफहमी की मारी है। वैसे कांटे तो बबूल और कैक्टस में भी होते हैं।
1: तो तुम्हें मैं बबूल और कैक्टस नजर आती हूँ?
0: अरे भगवान, मैंने मैंने ये कब कहा?
1: कहते भी जाते हो और फिर मुकरते हो। ये तो मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ निभा करती आई हूँ, कोई और होती तो कब की छोड़ जाती।
0: कोई और का तो पता नहीं, पर तुम तो नहीं जा सकती।
1: क्यों भला?
0: अरे भगवान, कितने प्यार से तुम्हारे नाजो नखरे उठाते आया हूं, फिर कैसे छोड़कर चली जाती तुम मेरी चम्मो की अम्मा।
1: कैसे नाज नखरे उठाए तुमने मैं जानती हूँ। कहा पान ला देना तो बान ला कर धर दी, सब्जी की जगह सज्जी, फल की जगह नल, साड़ी की जगह कढ़ाई, चूड़ियों की जगह पिंजरे में चिड़िया उठा लाए। कहाँ तक गिनाऊं?
0: तो रहने दो ना, क्यों कष्ट उठाती हो? मैंने जो भुगता है ना तुम्हारे राज में, सो मेरा दिल ही जानता है।
1: अच्छा जी, जरा मैं भी तो सुनूं तुम्हारे दुखड़े।
0: हाँ, कपड़े प्रेस करने को कहा तो मोजे जला दी, पानी जल्दी गर्म करने को कहा तो हल्दी गर्म कर लाई, दर्जी की दुकान से शेरवानी मंगवाने को कहा तो शहनाई वाले को बुला भेजा।
1: हाँ, बस रहने दो जी, ऐसी फुहड़ होती तो इतने साल तुम्हारी गृहस्थी नहीं चल पाती, समझे।
0: हाँ, समझा। अब इतनी कृपा करो कि मुझे एक कप चाय तो बना दो, इसीलिए तो तुम्हें पुकार रहा था चंपा की अम्मा।
1: अच्छा चलो, चंपा की अम्मा भी चलेगा, पर चम्मो की अम्मा नहीं, साफ कह देती हूँ।
0: पर मुझे तो चम्मो की अम्मा ही अच्छा लगता है।
1: तो फिर पुकारते रहना, मैं ना आऊंगी। हाँ
0: अरे रे, नाराज क्यों होती हो? चंपा की अम्मा ही सही, पर पुरानी आदत जाने में समय तो लगेगा ना। तब तक चम्मो की अम्मा ही चलने दो ना।
1: ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, आज और अभी से चंपा की अम्मा, वरना
0: वरना वरना क्या?
1: वरना संभालो तुम्हारा घर, मैं चली।
0: कहाँ जाओगी? मायके की धौंस अब क्या दोगी, वहाँ है कौन?
1: ये न सोचना कि अम्मा बाबूजी न रहे और चूंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ तो मेरा इस दुनिया में अब तुम्हारे अलावा और कोई नहीं।
0: ओहो, इतना गुमान, कौन है भला, जरा सुनू तो।
1: मैं क्यों बताऊं, बहुत है अभी भी।
0: हाँ, क्यों ना होंगे, वे वे वे सभी होंगे जो बारात के स्वागत में थप खड़े थे।
1: देखो जी, कह देती हूँ, मायके के उन तमाम पड़ोसियों को बीच में मत लाओ, वे सब तो इतने भले थे कि उनके रहते मुझे कभी अपने भाई बहनों के न होने का एहसास ही नहीं हुआ। अब भी जब कभी यहाँ आते हैं ना
0: तो यहाँ अपना ही घर समझकर रुकते हैं, यही ना?
1: रुकते हैं तो क्या, क्या घर के दामाद की तरह तुम्हें नहीं मानते? कपड़े मिठाई से लेकर सब नेगाचार तो करते हैं, इससे ज्यादा आज के जमाने में और क्या चाहिए।
0: अरे चम्मो की अम्मा, मुझे तो वो भी नहीं चाहिए।
1: फिर चम्मो की अम्मा, बस बहुत हो गया, मैं अब तुमसे नहीं बोलूंगी, बस।

0: वो।
1: अरे ये तो सच ही नहीं बोलती, अब क्या करूं?
0: चलो जी मत बोलो, यहां हम ही कौन तरसे बैठे हैं तुम्हारी आवाज सुनने को। मैं चला अपने दोस्तों के पास, बैठी रहो मौन व्रत लिए अपने घर में।
2: अरे ये तो सच ही चले गए, अपने आप बोर होकर वापस लौट आएंगे। रिटायरमेंट के बाद कितने यार दोस्त बचे हैं इनके।

0: ज्यादातर तो अपने बच्चों के पास रहने चले गए। जो बचे भी हैं वो नाती पोते वाले हो गए, उन्हें भी कितनी फुर्सत है। मैं भी घर के काम निपटा लेती हूँ, अब मुझसे भी जल्दी नहीं होती। हाँ, सब काम तो निपट गए, जरा देखूं तो समय क्या हुआ। अरे 9 बज गए हैं और ये अब तक नहीं आए, न जाने कहाँ जाकर बैठ गए हैं। इन्हें तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि अगले का भी घर द्वार है। समय का तो ध्यान रखें, अपना नहीं तो अगलों का। पुरानी आदत ठहरी इनकी, मेरा ही इनको क्या ध्यान रहता है जो किसी और का रखेंगे। पर अब तक नहीं आए, मुझे फिक्र हो रही है। इतनी रात हो गई, बाहर सड़कों पे लाइट भी नहीं होती और फिर जगह जगह खड्डे। ऊपर से इनको उम्र की वजह से रात को ढंग से दिखाई भी नहीं देता। क्या करूं, किससे कहूं कि इनको जाकर ढूंढे। बाहर जाकर खड़ी हो जाती हूँ, शायद आते दिख जाए।
1: अरे चाची जी, आप इतनी रात को बाहर क्यों खड़ी हैं? सब ठीक तो है ना?
0: अरे रवि बेटा, पूछ मत, तेरे चाचा जी अभी तक घर नहीं लौटे।
1: अरे तो परेशान क्यों होती हो चाची जी, कहाँ गए बताओ, मैं पता करके आता हूँ।
0: पता कहाँ करेगा बेटा, यही तो मालूम नहीं कि वो कहाँ गए हैं।
1: पर चाचा जी ऐसे तो नहीं है, वे तो हमेशा आपको बता कर ही जाते हैं और शाम ढले तक लौट भी आते हैं। आज ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए?
0: पूछ मत बेटा, आज जरा नाराज होकर घर से गए हैं।
1: नाराज होकर? किससे? आपसे? नहीं नहीं, मैं मान ही नहीं सकता।
0: अब मान या न मान, पर आज वो सच ही मुझसे नाराज होकर गए हैं।
1: अच्छा बताओ, बात क्या हुई चाची जी?
0: बात तो कुछ खास नहीं थी, बस कब से कह रही हूँ कि मुझे चम्मो की अम्मा कहकर मत पुकारा करो, पर सुनते ही नहीं। सो आज मैंने भी कह दिया कि अब मैं न बोलूंगी, तो नाराज होकर चले गए। मैंने सोचा कि आ जाएंगे शाम तक, पर अब तक इनका कुछ पता नहीं है।
1: अरे चाची जी, आप रो मत, मैं चाचा जी के दो ठिकाने जानता हूँ, वही होंगे, मैं ले आऊंगा उन्हें। आप शांत होकर अंदर बैठो, जाओ।
0: हाँ बेटा, जरा ढूंढ ला, मेरा दिल कैसा तो हो रहा है। मैं यही तेरा इंतजार करती हूँ।
1: अच्छा चाची जी, मैं यूं गया और यूं आया।
0: अरे रवि, तू अकेला है? वो कहाँ है? क्या गुस्से के कारण आने से इनकार कर दिया?
1: नहीं चाची जी, दरअसल चाचा जी मुझे मिले ही नहीं। मैंने वे दो ठिकाने भी देखे और वहां से पता करके उनके 3-4 दोस्तों के यहाँ भी गया, पर वे आज वहां भी नहीं गए।
0: हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं?
1: चाची जी आप रो मत, अरे अभी तो रात के 11 ही बजे हैं, थोड़ा और देखते हैं फिर पुलिस में।
0: पुलिस?
1: आप रो मत। अरे
2: क्या बात हुई चाची जी?
3: रवि, चाची जी क्यों रो रही है?
1: वो चाचा जी अब तक घर नहीं लौटे हैं, पता नहीं किधर गए नाराज होकर।
3: नाराज होकर?
4: ये रात बन गई है, पुलिस में खबर करनी चाहिए।
5: ये क्या हो रहा है, ये कैसी भीड़ है यहाँ पर, क्या बात है?
1: अरे इंस्पेक्टर साहब, आप हम तो आप ही के पास आ रहे थे।
5: क्यों, क्या हुआ? मैं तो गश्त पर निकला था, भीड़ देख कर रुक गया।
1: आइए आपको सब कुछ बताता हूँ।
5: जी
1: वो चाचा जी है हमारे, सुबह से पहुँच रहे थे।
5: अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, मैं अपने सिपाही भेज देता हूँ। फतेह सिंह
6: जी सर,
5: अपने सिपाहियों के साथ ये एरिया छान मारो, फिर आगे देखेंगे, तब तक मैं यहीं पर हूँ।
6: जी सर।
5: आप सब अपने घर जाइए, चलिए हम इन्हें संभाल लेंगे। चलिए चलिए रवि जी, आप रुकिए।
1: जरूर जरूर, मैं चाय मंगवाता हूँ। युक्ति
7: हाँ?
1: तुम जरा चाय तो बना दो।
7: अच्छा।
1: और सुनो, चाची जी को भी साथ ले आओ, हम दोनों यहीं बाहर बैठे हैं।
5: भाई वाह रवि जी, आप बातें काफी दिलचस्प करते हैं।
1: आप भी कुछ कम नहीं है।
5: आओ फतेह सिंह, कहो क्या रिपोर्ट।
8: सर ये लीजिए, इनके चाचा जी वहाँ पार्क की बेंच पर गहरी नींद में सोए पड़े थे।
9: अरे अरे अरे, ये सबका क्या मतलब है?
5: अरे अरे, मतलब सिर्फ इतना है कि आप लापता थे और आपकी पत्नी आपके लिए परेशान थी, समझे?
9: कौन, चम्मो की अम्मा?
0: फिर कहा चम्मो की अम्मा,
6: मैं
9: देखा आपने?

0: ये मुझसे हर वक्त लड़ती है, इसलिए ये रहे अपने घर में, मैं चला यहाँ से। हाँ।
1: कहाँ चले चम्मो के बापू, ये मेरा घर, ये तेरा घर।

अभी आप विविधा के अंतर्गत सुन रहे थे झलकी, ये तेरा घर ये मेरा घर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: का नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान।

0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
5: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
6: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: भारतीय जनता पार्टी

0: ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
1: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खिंगांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
3: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है, जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और harghartiranga.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान

0: केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नेते निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत दर्द भरे गीत।
3: बिखर गए,
2: यह आवाज है मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई।

अभी आप फिल्म संगीत में दर्द भरे गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर।

FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:15 में हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है।

0: है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है अजनबी।

कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार है कैफी आजमी, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है छोटी बहू।

विविध भारती के चाहने वालों के लिए कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं नीरज, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है शर्मिली।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिल्म संगीत के चाहने वालों में बिरला ही कोई होगा जिसने महल फिल्म का ये गीत ना सुना होगा। हम बात कर रहे हैं 40 के दशक के मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश की। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें समुचित सम्मान और प्रसिद्धि मृत्यु उपरांत मिली है। खेमचंद प्रकाश उन्हीं में से एक थे।

चंद प्रकाश का जन्म 12 दिसंबर 1907 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था। न केवल संगीत बल्कि नृत्य की भी आरंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली, जो राज दरबार में ध्रुपद गायक और कथक नर्तक थे। किशोरावस्था में ही खेमचंद प्रकाश को पहले बीकानेर और उसके बाद में नेपाल के राज दरबार में गायक कलाकार के रूप में नियुक्ति मिल गई थी। आगे किस्मत उन्हें कोलकाता ले आई, जहां वे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर्स में नियुक्त हुए। 1935 में बनी फिल्म देवदास के संगीतकार तिमिर बरन के सहायक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। 1938 की फिल्म स्ट्रीट सिंगर के लिए खेमचंद प्रकाश ने एक मजाहिया गीत भी गाया।

लेने गया था मिठाई, रास्ते में ठोकर खाई। मैं लेने गया था मिठाई, रास्ते में ठोकर खाई, और चोट देखो आई, और चोट

0: अभी फिर जाओ, तुम ठहरो अभी ले आओ।
1: क्या भूख से मैं मर जाऊं, या कच्चा तुझे जमाऊं, ना माबूल कथे की झूल हुए चंडूल।
0: अब देर न होगी बच्चों, तुम बच्चो बच्चो।
2: उसके बाद खेमचंद प्रकाश मुंबई आ गए। शुरुआत हुई 1939 में। सुप्रीम पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्में मेरी आंखें और गाजी सलाउद्दीन के लिए उन्होंने संगीत निर्देशन किया।

और फिर बहुत जल्द रणजीत मूवीटोन फिल्म स्टूडियो के नियमित संगीतकार के रूप में खेमचंद प्रकाश नियुक्त हुए। उस शुरुआती दौर में रणजीत मूवीटोन की फिल्में थीं दिवाली, होली, परदेसी, फरियाद इत्यादि। उन दिनों खेमचंद प्रकाश के गीतों में ज्यादातर स्वर होता था खुर्शीद का। इस जोड़ी ने 40 के दशक के आरंभ में बहुत से मशहूर गीत दिए। 1943 में बनी रणजीत स्टूडियो की फिल्म तानसेन जबरदस्त हिट हुई।

1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जिद्दी। इस फिल्म में एक गायक के रूप में किशोर कुमार को सबसे पहला अवसर दिया संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने। जिद्दी का ही एक और गीत जो लता जी ने गाया था, संगीत प्रेमियों द्वारा खूब पसंद किया गया।

और फिर 1949 में आई फिल्म महल। महल के पहले बाजार में फिल्मी गीतों के जो रिकॉर्ड्स मिलते थे, उन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर फिल्म की कहानी के उस गीत को पर्दे पर गाने वाले पात्र का नाम हुआ करता था। महल फिल्म का ये गीत आएगा आने वाला रिकॉर्ड पर इन बोलों के आगे नाम लिखा था कामिनी। ऑल इंडिया रेडियो से ये गीत प्रसारित हुआ। बहुत से सुनने वालों ने रेडियो के दफ्तर में फोन करके जानना चाहा कि ये आवाज किसकी है, और फिर रेडियो से गायिका का नाम प्रसारित हुआ लता मंगेशकर, संगीतकार खेमचंद प्रकाश। इस गीत को और लता जी को बेशुमार शोहरत हासिल हुई, मगर अफसोस महल के रिलीज होने से 2 माह पूर्व 10 अगस्त 1950 को संगीतकार खेमचंद प्रकाश 42 वर्ष की अल्पायु में इस संसार से विदा हो चुके थे।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार खेमचंद प्रकाश पर, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब जयंत पात्रीकर को दीजिए इजाजत।
1: आज के फनकार।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: This is the Delhi station of Akashwani. Please stand by for our next broadcast.
1: राज्यसभा इस पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत।
2: विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या है। इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 2400 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है, और ग इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
3: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण
4: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ Beloved Prime Minister Narendra Modi ji, India's power sector has undergone a historic transformation with a strong focus on ensuring affordable, reliable and sustained electricity for every year. And due to Modi ji government's policies, states like Telangana has witnessed rapid growth in industries, data centers, urban infrastructure leading to increasing electricity demand, sir. Which has significant potential for solar energy, including decentralized and agricultural solarization. So through you, I request the Honorable Minister to explain how the proposed reforms will encourage greater adoption of distributed renewable energy, battery energy storage, and smart distribution system in states like Telangana, while ensuring the financial sustainability of DISCOMs. Thank you, sir.
2: श्री मनोहर लाल विद्युत मंत्री।
5: सभापति महोदय, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 इसको तैयार करने में डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम

को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफ टॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान, रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस, इसमें भी सेल्फ सेल करने का प्रावधान रखा गया है। को लोकेटेड स्टोरेज अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हो अथवा पंप स्टोरेज के हो, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरनमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है। अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके, इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने, ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही, यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस प्रोत्साहन को इसको बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है जिसको सर्कुलेट किया गया था और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है, ये फाइनलाइज करने के राह पर है। और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया। डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है। डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे। और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है, स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है, चाहे डाटा सेंटर हो अथवा ईवी चार्जिंग हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है। इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ, यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय उसका यूज ज्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड इसकी शिफ्ट की जाए, तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया जा सके। माननीय डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी एक कंसर्न है। सभी डिस्कॉम्स ये लगभग घाटे में जा रहे हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम्स का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम्स घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तक टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए, इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी उसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर इसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज

एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देशभर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट, ये कैसे